ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तिथि 18, तदनुसार 9 सितंबर सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 37 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। हम सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं।

0: रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय हो गया है कार्यक्रम वंदन वार का, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, विदुर नीति शतकम के अनुसार, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चान्रतम। अर्थात प्रेम से क्रोध को जीतें, उत्तम व्यवहार से दुष्ट मनुष्य को जीतें, दान से कृपण को जीतें और सत्य से झूठ को जीतें। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

श्रोताओं, झरोखा के अंतर्गत आपको बता दें कि आज कौन कौन से कार्यक्रम आप किस समय पर सुन सकते हैं। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का आनंद आप उठाएंगे 7:00। 7:30 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। ठीक 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे समाचार हिंदी में। 8:15 पर आप आनंद उठाएंगे त्रिवेणी कार्यक्रम का, और चित्रलोक का समय रहेगा 8:30। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से करवाएंगे आपको अपडेट आज का अखबार कार्यक्रम में 9:30 पर। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनना ना भूलिएगा 10:00। 10:05 ये समय रहता है हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम का। आपसे बातें होंगी, आज विषय है जिंदगी खूबसूरत है इसे खुशी और संयम से भरपूर जियो, हमारी बेड़ियां। ये प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा ठीक 11:00। 11:15 पर आप आनंद उठाएंगे गैर फिल्मी संगीत का सुरबहार कार्यक्रम में। 11:30 समय होगा संजीवनी कार्यक्रम का।

12 बजे इंडियन समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे और उसके बाद यादों की महफिल कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा 12:05 पर। प्रादेशिक हिंदी समाचार 1:05 पर आप सुनेंगे और आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रादेशिक पंजाबी समाचारों का समय रहेगा 1:10। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं 1:15 पर। सुरीला सफर ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा 1:30 पर। एक बार फिर त्रिवेणी कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 2 बजे और सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं जिसमें गोल्डन हिट्स आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे 2:30 पर। सखियों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम सखी सहेली प्रस्तुत होगा 3 बजे। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के मेहमान। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 5:30 प्रस्तुत किए जाएंगे। 5:05 पर फिल्म संगीत प्रस्तुत होगा। लम्हे कार्यक्रम 5:20 पर आप सुन

सकते हैं और 5:30 समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत होंगे 6:00। प्रादेशिक हिंदी समाचार 6:10 पर, 6:20 पर आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रादेशिक पंजाबी समाचार आप सुन सकते हैं। पंजाबी गीतों का आनंद उठाएंगे 6:30 पर। 7:00 जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे। रेडियो डायरी कार्यक्रम 7:47 पर आप सुन सकते हैं। 8:00 हवा महल कार्यक्रम, 8:15 ये समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम फॉर्म टू सिटी। आपके लिए कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 9:00। 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार। 10:00 छाया गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे और 10:32 ये समय होगा सुर सांझ कार्यक्रम का। तो ये हैं आज मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय जो आप सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

रावण को चुनौती देने के लिए श्रीराम ने एक ऐसे वाण का संधान किया जो उसके छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूलों को काटता गिराता तरकस में वापस आ गया। उपस्थित असुर समुदाय आतंकित हो गया। सबको भयभीत देख रावण ने अपने पराक्रम और निर्भयता का उद्घोष किया।

0: श्रोताओं नमस्कार, इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: नमस्कार, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में सभी सुधी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, किराना घराने की गायकी की बात हो रही है, हमने इसकी आलाप की कुछ जो खासियत है उसके बारे में सुना है।
2: जयंत जी, वैसे भी देखा जाए तो कौन सा भी राग होने दो, आलाप ये राग का एक प्राण है।
1: जी जी,
2: राग की पहचान होती है तो आलाप से होती है। तो आलाप का जो विस्तार है वो हमारे घराने में बहुत, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है
1: जी।
2: आलाप से राग का विस्तार करना किराने घराने में गायन की शुरुआत एक शांत, धीमे और विस्तृत आलाप से होती है।
1: अच्छा,
2: इससे राग का स्वरूप धीरे धीरे श्रोता के सामने प्रकट हो जाता है। यानी विलंबित लय होने के कारण वो आलाप प्रधानता, यानी एक एक आलाप, एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक एक एक स्वर पर जाके, यानी विलंबित आलाप लय भी विलंबित।
1: जी जी जी,
2: आलाप तो आराम से होते हैं, आलाप को हम तान का ये नहीं दे सकते। तो जिससे प्रत्येक स्वर को पूरा समय और महत्व मिल सके, ऐसा ही विलंबित लय लेकर ये आलाप आगे जाता है। इस घराने में तानों की अपेक्षा स्वरों की शुद्धता, मधुरता और सौंदर्य पर अधिक बल दिया जाता है
1: जी।
2: और अगर तान भी अच्छी होनी है तो आलाप अच्छा होना है। आलाप अच्छा होना है तो सुर को पक्का करना है
1: जी।
2: सुर

0: पक्का है, एक स्वर पक्का हुआ तो दूसरे स्वर जब हम जाते हैं, दूसरा स्वर अगर पक्का हुआ तो ही उसके आगे का स्वर पक्का लगेगा, नहीं तो आगे का स्वर नहीं लगेगा।
1: अच्छा,
0: मींड और सूक्ष्म श्रुति का प्रयोग जो हम करते हैं एक स्वर से दूसरे स्वर तक, अत्यंत कोमल और प्रवाहपूर्ण मींड हमारे गायकी में ली जाती है। तथा श्रुतियों का सूक्ष्म प्रयोग करके राग का भाव उभारा जाता है। इसीलिए इसकी जो कलात्मक तरह है ना, ये तो किराना घराना में एक विशेषता है। एक एक स्वर का विस्तार करना, प्रत्येक स्वर का ठहर ठहर कर उसकी पूरी मधुरता गहराई के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही स्वर विस्तार की विशेषता हम मानते हैं और उसे माना जाता है। आलाप का उद्देश्य केवल स्वर दिखाना नहीं, बल्कि राग के भाव, रस और वातावरण को श्रोता तक पहुंचाना होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: हम कहते हैं कि स्वर जो है उसको अर्थ हम नहीं दे सकते, लेकिन राग में जो वादी संवादी रहते हैं, राग का जो रस रहता है, राग का जो हम करुण रस, भक्ति रस रहता है, इसके ऊपर राग का स्वभाव होता है
1: जी, जी, जी।
0: वही स्वभाव के द्वारा हर एक स्वर में राग के वो प्रकट होता है।
1: अच्छा।
0: इसीलिए मीनिंगफुलनेस जो है ना राग में, शब्द का है ही लेकिन स्वर का भी मीनिंग होता है। धीरे धीरे विकास करके राग का विकास क्रमबद्ध हम करते हैं, मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक और फिर तार सप्तक की ओर बढ़ते हुए राग का विस्तार किया जाता है
1: जी।
0: तो फिर संयमित तानों का भी प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। आलाप के बाद जब तान आती है ना, परंतु राग की गरिमा और स्वर सौंदर्य को बनाए रखते हुए ये तान हम प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए आप ये आलाप प्रधान शैली
1: जी,
0: और आलाप प्रधान शैली और उसमें जो शांत रहने के एक तरीका है
1: जी,
0: वो सुन के ही उसके महसूस कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: हमारे किराना घराने के और भी बहुत अच्छा कलाकार है कैवल्य कुमार गुरव। कैवल्य कुमार गुरव जी का गाना जो है
1: जी,
0: उसमें ये आलाप प्रधानता बहुत ही अच्छी तरह से वो करते हैं। उनका अभोगी थोड़ा सुनेंगे
1: अवश्य।

0: अभोगी राग है तो स्वर भी बहुत प्यारे हैं अभोगी के, और एक बहुत अच्छा गाना है, तू फिक्र को धुएं में उड़ा,
1: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
2: मैं जिंदगी

0: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में आन फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायूनी है गीतकार और संगीतकार है नौशाद।

ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ों में आन फिल्म से, और आपको पता चल ही गया होगा कि आज इस फिल्म के निर्देशक कौन है, याद आ गया होगा। जी हाँ श्रोताओं, आज है सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक महबूब खान साहब का जन्मदिवस, इसलिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको महबूब खान साहब की फिल्मों के कुछ चुनिंदा गीत। इतने प्यारे प्यारे फिल्म बनाए महबूब खान साहब ने कि दिल कह उठता है हम आज कहीं दिल खो बैठे। अंदाज फिल्म से ये गाना मुकेश की आवाज़ में, मजनू सुल्तानपुरी के बोल और नौशाद की है तर्ज।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।
4: हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए सुरैया की आवाज में अनमोल घड़ी फिल्म का गाना। तनवीर नकवी हैं गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मदर इंडिया फिल्म का गाना। शकील बदायूनी हैं गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: से ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीत बद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है सन ऑफ इंडिया।

0: एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा भूले बिसे गीत। आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में। शब्द हैं शकील बदायनी के और तर्ज बनाई है नौशाद ने। फिल्म का नाम अनोखी अदा।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फकीरा फिल्म के गाने के साथ। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती राष्ट्रीय

विवाह देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए मुकेश और कंचन की आवाजों में धर्मात्मा फिल्म का गाना। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और सपन चक्रवर्ती का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम जमीर।

0: हमारी अगली पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में दीवार फिल्म से। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: क्या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में चुपके चुपके इस फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। समाचार प्रभात के लिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और

0: आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज दोगुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाब अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
6: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश

0: किया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमरीकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारणीय स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75 से 80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इसे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
3: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगराज्य की 6ठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आतंक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है।

0: हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में आरना सबालेंका और फ्रांसिस डियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

नमस्कार श्रोताओं, आज हम जिस शब्द को लेकर जीवन के कुछ बातें करेंगे वो है मुसाफिर। जी हाँ, यानी चलने वाला, आगे बढ़ने वाला। लेकिन अगर गौर करें तो हम सब मुसाफिर ही हैं, है ना? जन्म से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक हमारा सफर चलता रहता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल। कभी कोई हमारे साथ कदम मिलाकर चलता है और कभी भीड़ में भी हम अकेले रह जाते हैं। लेकिन हर रास्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जिंदगी की खूबसूरती शायद इसी में है कि हमें केवल मंजिल नहीं, सफर भी जीना है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस मुसाफिर से जिसे न घर की चिंता है न ठिकाने की, बस चलते जाने का जुनून है। जी हाँ साथियों, एक मुसाफिर के पास शायद कोई स्थायी ठिकाना ना हो, लेकिन उसके पास रास्तों के अनुभव और यादें जरूर होती है। हम सभी जिंदगी में एक निश्चित मंजिल चाहते हैं। सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक हो जाएगा तभी खुश होंगे। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी रास्ते बदलते हैं, कभी रिश्ते बदलते हैं, और कभी हमारे सपने ही बदल जाते हैं। हाँ, इसलिए हमें अपने सफर की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। किसी की मंजिल जल्दी आ जाती है तो किसी को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हर मुसाफिर का रास्ता अलग होता है।

सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। जी हाँ दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि सुख और दुख दोनों इस यात्रा के पड़ाव हैं। सुख आए तो अहंकार ना करें और दुख आए तो निराश ना हो, क्योंकि चलते रहने वाला ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता ही है। हम अपनी पूरी जिंदगी धन संपत्ति और नाम कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार उन चीजों को भूल जाते हैं जो जीवन को सच में खूबसूरत बनाती है। वो क्या है? अपनों का साथ, रिश्तों की गर्माहट और किसी के चेहरे पर लाई गई एक मुस्कान। एक मुसाफिर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रास्ते की लंबाई नहीं, रास्ते में मिले लोग और उनके साथ बिताए पल याद आते हैं। इसलिए जिंदगी को केवल कल के लिए न टालते हुए आज किसी को अपने से प्यार से बात करके मना लीजिए। किसी से नाराज हैं तो संभव हो तो मन की दूरी मिटा दीजिए, और जहाँ किसी की मदद कर सकते हैं वह ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र कितना लंबा है ये हम नहीं जानते, लेकिन इसे खूबसूरत बनाना हमारे हाथ

सकती है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी असली मंजिल क्या है और इस सफर में मेरे साथ वास्तव में कौन है। हम सारी जिंदगी मंजिलें तलाशते रहते हैं लेकिन कभी खुद से पूछते नहीं कि हम आखिर किस मंजिल की ओर जा रहे हैं। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ के बीच कभी कभी रुकिए और खुद से पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। क्योंकि आखिर में हमारी पहचान हमारे धन या पद से ज्यादा हमारे व्यवहार और हमारे कर्मों से होती है। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं, कोई थोड़ा पहले आया, कोई बाद में। किसी का सफर लंबा है, किसी का छोटा, लेकिन मंजिल सबकी एक है। तो क्यों ना इस सफर को प्रेम अपनापन से बना के आगे बढ़ते चले। हाँ, मंजिलें दूर हो तो घबराइए नहीं, और अगर किसी का रास्ता हमारे रास्ते से अलग है तो उसकी यात्रा का सम्मान हमें करना चाहिए। क्योंकि मुसाफिर की पहचान उसकी मंजिल से नहीं, उसके कदमों से होती है। तो साथियों, चलते रहिए, सीखते रहिए और जहाँ तक संभव हो इस सफर में किसी के लिए रोशनी बनते रहिए।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग।

0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। चित्रलोक इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: चमड़ी पर फीका, लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आज चित्रलोक कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी अरिजीत सिंह की आवाज़ में पैडमैन फिल्म के गाने के साथ, और आप समझ ही गए होंगे आज है हरदिल अजीज अभिनेता अक्षय कुमार जी का जन्मदिवस। हम अक्षय कुमार जी को समस्त विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं जीवित शरदः शतम। और उनकी ही फिल्म बेवफा का गाना आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में, समीर के बोल और नदीम श्रवण की है तर्ज़।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तिमका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, 5-25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: श्रोताओं, क्या थैलेसीमिया, लुकीमिया या दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक उम्मीद की किरण बन सकता है? BMT की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सामान्य जीवन जिया जा सकता है? या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई राय लेना चाहते हैं, तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अलका खटवाल, प्रोफेसर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रकीब आलम का लिखा और देवी श्री प्रसाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ है जावेद अली की, फिल्म का नाम पुष्पा।

दोस्तों लीजिए अब सुनिए दिव्या कुमार और प्रगति जोशी की आवाज़ों में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है भवेश जोशी सुपर हीरो।

0: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए समीर का लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं शान और सुनिधि चौहान की, फिल्म का नाम मैं ऐसा ही हूँ।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए गुलजार का लिखा हुआ और विशाल भारद्वाज का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की। फिल्म का नाम ओ रोमियो।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब

0: भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
4: श्रोताओ, क्या थैलेसीमिया, लुकीमिया या दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक उम्मीद की किरण बन सकता है? बीएमटी की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सामान्य जीवन जिया जा सकता है? या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई राय लेना चाहते हैं, तो इस बार एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अलका खटवाल, प्रोफेसर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमाटोलॉजी एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए पालोमी की आवाज में हेलीकॉप्टर ईला फिल्म का गाना। स्वानंद किरकिरे हैं गीतकार और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मंज म्यूजिक हरबी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज फिल्म से। गीतकार हैं तनिष्क बागची और हरबी सहारा, और संगीत दिया है तनिष्क बागची, मंज म्यूजिक और हरबी सहारा ने।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: लीजिए पेश है कार्यक्रम आज का अखबार।
1: आज का अखबार।
0: श्रोताओ, आज का अखबार कार्यक्रम में मोनिका ठाकुर करती है आप सभी का तहे दिल से स्वागत। कहते हैं हिमालय की खूबसूरती देखने के लिए बस आंखें चाहिए, लेकिन हिमालय को समझने के लिए थोड़ा सा दिल भी चाहिए।

0: आज बात होगी उस हिमालय की जो सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियों का नाम नहीं बल्कि हमारी नदियों का स्रोत, मौसम का संतुलन और करोड़ों लोगों की जिंदगी का सहारा है। जी हाँ, आज है हिमालय दिवस। दोस्तों, हिमालय की कहानी सिर्फ खूबसूरत बर्फीली चोटियों और पहाड़ों तक सीमित नहीं है। हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियाँ नेपाल से लेकर भारत के मैदानों तक लाखों लोगों के जीवन से जुड़ी है।
1: मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें।
0: जब बारिश अपना रौद्र रूप दिखाती है, नदियां उफान पर आती हैं और नेपाल में आई बाढ़ की बात करें तो हमें प्रकृति के उस रूप की भी याद दिलाती है जिसके सामने इंसान की बनाई हुई बड़ी बड़ी इमारतें भी छोटी पड़ जाती हैं। हम अपने घर में बैठे मौसम की खबर सुनकर कहते हैं, भाई आज तो बारिश हो रही है, छाता ले जाना पड़ेगा। लेकिन किसी पहाड़ी या नदी किनारे बसे परिवार के लिए वही बारिश कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। इसलिए हिमालय दिवस हमें सिर्फ हिमालय की सुंदरता देखने का दिन ही नहीं देता है बल्कि ये सोचने का अवसर भी देता है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कैसा है।
1: तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा।
0: हम हिमालय से पानी लेते हैं, नदियों से जीवन लेते हैं, जंगलों से हवा लेते हैं, तो बदले में प्रकृति को क्या दे रहे हैं? जब जंगल कटते हैं, ग्लेशियर प्रभावित होते हैं, पानी के स्रोत कमजोर होते हैं, पहाड़ों पर कचरा बढ़ता है, तो उसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। इसलिए हिमालय को बचाने की शुरुआत आप अपने घर से करें। पानी बेवजह न बहाएं, प्लास्टिक कम करें, पेड़ लगाएं, कचरा सही जगह डालें और जब पहाड़ों की सैर पर जाएं तो वहां अपनी जिम्मेदारी भी साथ लेकर जाएं, क्योंकि हिमालय सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ नहीं है, वो हमारी नदियों में बहता है, हमारे खेतों में हरियाली बनकर आता है, हमारे गिलास में पानी बनकर आता है और हमारी सांसों में प्रकृति की ताजगी बनकर उभरता है।

0: आप सुन रहे हैं आज का अखबार कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में अब बात करते हैं जेम्स ऑफ इंडिया की। काफी लंबे समय से ये सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब इसकी तारीख भी बढ़ चुकी है, तो आप जान लें अपने जिले की कहानी अपनी जुबानी जेम्स ऑफ इंडिया में। देश के हर जिले की अपनी एक खास पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी है। इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। इस पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इस अभियान के पायलट चरण में चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया है। अब आपको बता दें कि आप इसमें पंजीकरण कैसे करें। माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर यानी कि लॉग इन करें, मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें और फिर सबमिट कर दें। और खास बात, चंडीगढ़ भी इस चैलेंज के पायलट चरण में शामिल है। हमने ये पहले भी आपको बताया। ध्यान दीजिए कि प्रविष्टियां अब 30 सितंबर 2026 तक स्वीकार की जाएंगी, तो देर मत कीजिए। अपने शहर, गांव या जिले की किसी खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी को कैमरे में कैद कीजिए और बनिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का हिस्सा, क्योंकि भारत की असली खूबसूरती उसके हर जिले में छिपे उन अनमोल जेम्स में है जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो निभाइए अपनी जिम्मेदारी। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों की। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार के तहत सहारा रिफंड पोर्टल किया बहाल। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का 58 दिन का दूसरा चरण 15 सितंबर से होगा शुरू, टूट सकता है यात्रियों का रिकॉर्ड। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच शुक्रवार को होगी बैठक, सुखोई 57 पर होगी चर्चा, नए परमाणु संयंत्रों पर भी हो सकती है बात। रूस के वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे पलवल के हरीश। राजनाथ सिंह श्रीलंका पहुंचे, उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना। 38 साल बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री का ये दौरा है। ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी, 600 उड़ानें रद्द, अकेले गैटविक एयरपोर्ट पर 31% विमान सेवाएं प्रभावित। अमेरिका व यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने आर्कटिक इलाके में अपना मेगा वोत्सोक ऑयल प्रोजेक्ट किया शुरू, 3 करोड़ टन सालाना आपूर्ति लक्ष्य, खाड़ी का विकल्प संभव। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज स्टेज 3 में मंगलवार को भारत ने जीते 2 गोल्ड। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खास खबरें। अब मिलते हैं आपसे इस संदेश के बाद।
1: आज फिर लेट हो गए?
2: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे

0: सकता है। HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है। इसीलिए तो कह रही हूँ, बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, क्या थैलेसीमिया, लुकीमिया या दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक उम्मीद की किरण बन सकता है? BMT की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सामान्य जीवन जिया जा सकता है? या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई राय लेना चाहते हैं, तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अलका खटवाल, प्रोफेसर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
2: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आज का अखबार कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में अब बारी है क्षेत्रीय खबरों की। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों पर बढ़ी सख्ती, हाजिरी लगाकर ड्यूटी से गायब रहने वाले मुलाजिमों को नहीं मिलेगा वेतन। पंजाब सरकार ने बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ प्रोजेक्ट जीवन ज्योत के तहत अभियान किया तेज। 82 जगह छापेमारी में 39 बच्चे रेस्क्यू, 6 बच्चों को स्कूल और 6 को आंगनबाड़ी से जोड़ा। पंजाब में नहरों, नदियों, रिवर साइड्स और वाटर रिसोर्सेज विभाग से जुड़े स्थानों पर फिल्म, गाने, वीडियो, प्री वेडिंग और फोटोशूट कराने वालों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 7 दिन में मिलेगी ऑनलाइन मंजूरी। तय वक्त में फैसला न होने पर पात्र मामले स्वतः अप्रूव होंगे। लंपी स्किन वैक्सीन पशुओं में 7 से 14 दिन में बनाती है एंटीबॉडी। यूपी, तेलंगाना, राजस्थान में लगना शुरू। हिसार में तैयार वैक्सीन 3 राज्यों ने खरीदी, हरियाणा में इस्तेमाल नहीं। मधुबन में 23 सितंबर से 1800 पुलिस खिलाड़ी दिखाएंगे दम। 75वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2026-27 का होगा आगाज। पंजाब में खुले में कचरा फेंका तो लगेगा 2000 का जुर्माना। तो रखिए अपने शहर को साफ। सुनते रहिए 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र।

आप इंजॉय कर रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। और अब बात करते हैं स्थानीय खबरों की। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में, इससे दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर 45 मिनट होगा कम। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रीमॉडलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए उत्तर रेलवे ने आज से 36 दिनों तक ट्रैफिक ब्लॉक किया, 5 ट्रेनें रद्द। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन का एक्शन, सुखना कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, 15 एकड़ जमीन से हटाए कब्जे। चंडीगढ़ शहर की 4 अंडरग्राउंड पार्किंग को आधुनिक और ऑटोमेटेड बनाने की तैयारी, कम जगह में पार्क होंगी ज्यादा कारें। 25 साल के लिए निजी कंपनी को सौंपी जाएंगी पार्किंग, कमाई का 20% निगम को मिलेगा। हुगली नदी की मिट्टी से बन रहे गणपति चंडीगढ़ से लद्दाख तक जाएंगे बप्पा। सत्ताईस देशों के 50 वरिष्ठ हेल्थ एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर 9 से 14 सितंबर तक पीजीआई में हेल्थ पॉलिसी और मैनेजमेंट की लेंगे ट्रेनिंग। चंडीगढ़ ने पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2026 में हिस्सा लेकर सिटी ब्यूटीफुल को फिल्म शूटिंग और सिनेमैटिक टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में किया प्रेजेंट। ट्राई सिटी बना स्टैंड अप एक्ट का हब, महीने में हो रहे 15 से 25 शो। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी स्थानीय खबरें।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा, ये गीत ना जाने हम में से कितने ही लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। हम सब ने इसे गुनगुनाया है। ये पानी जो जीवनदायी है, लेकिन इस साफ दिखने वाले पानी में भी आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे हानिकारक तत्व हो सकते हैं। IIT गुवाहाटी ने दोनों को एक साथ हटाने का कम लागत वाला तरीका विकसित कर लिया है। ये तकनीक ग्रामीण और सामुदायिक इलाकों में उपयोगी है। शुरुआत में इस तकनीक ने कुछ ही मिनटों में पानी से 98.2% तक आर्सेनिक और 91.8% तक फ्लोराइड हटाया। और अगर बात करें इसकी अनुमानित लागत की, तो वो है 1000 लीटर पानी को साफ करने में 18 से 58 रुपए। अब टीम की कोशिश है बड़े स्तर पर लगातार पानी साफ करने वाला मॉडल तैयार करना। हम तो यही कहेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप इसी तरह से बढ़िया बढ़िया काम करते रहिए अपने देश के लिए, अपनी इस प्रकृति के लिए, जो कभी मांगती नहीं है, सिर्फ उसने देना सीखा है।

0: आज का अखबार कार्यक्रम में आज मोनिका ठाकुर थी आपके साथ। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीक नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफ़ी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। उधर कनाडा ने अमरीका की 600 से अधिक चीज़ों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर यह शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताज़ा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व और जवाबदेही, पोषण और प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता से दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भारतेंदु ने भाव, भाषा और शैली में नवीनता का समावेश कर हिंदी को आधुनिक स्वरूप दिया। इसके अलावा श्री शाह ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर भी आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि करगिल युद्ध में कैप्टन बत्रा ने न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा किया बल्कि अपने उत्कृष्ट नेतृत्व और वीरता के जरिए सहयोगी सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा का अनुमान है। मौसम के मॉडलों के ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें।

0: या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800-444 पर। धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान? तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800-444 पर।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 5-25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
4: लीजिए पेश है कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़।
5: हेलो
6: हेलो,
5: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
6: हेलो चंडीगढ़।

हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में मोनिका ठाकुर करती है आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जिंदगी कभी गरम चाय जैसी लगती है, कभी बिना चाय की जैसी, और बिना चाय यानी कि बिना चीनी वाली चाय जैसी। कभी लगता है वाह क्या बात है, जिंदगी जीने का मजा ही आ गया, तो कभी लगता है भाई ये क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी में भगवान इतने रुष्ट क्यों है हमसे। लेकिन याद रखिए, मुश्किल दिन पूरी जिंदगी नहीं होते हैं। कल 10 सितंबर को है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि किसी परेशान इंसान को समाधान देने से पहले उसे सुनना बेहद जरूरी है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ना जाने कितनी ही छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती हैं। इनमें से कुछ परेशानियां सचमुच डरावनी होती है, लेकिन

0: कई बार हम किसी बड़े परेशानी को अकेले झेलते झेलते ही भीतर से बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, थक जाते हैं। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरी है चुप्पी को तोड़ना। अगर आपका दोस्त, परिवार का सदस्य चुप रहने लगा है, बहुत उदास है, लोगों से दूर रह रहा है या ये कह रहा है कि अब कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो उसे ये मत कहिए कि इतना क्यों सोचते हो, छोड़ो, बल्कि ये कहिए, मैं हूं ना, बताओ क्या बात है। कभी कभी किसी की जिंदगी को बदलने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस एक इंसान का थोड़ा सा साथ ही काफी होता है। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, मदद मांगना अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी भी है। कभी भी आपको लगे कि हालात बहुत भारी हो गए हैं, तो अकेले मत इस चीज को झेलिए। आप किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य, शिक्षक या डॉक्टर या फिर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आप बात जरूर कीजिए। जिंदगी में कितने भी लो बैटरी वाले दिन आए आपके, अपने जीवन का स्विच ऑफ बिल्कुल मत होने दीजिए, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं चार्ज होने का इससे आप मौका जरूर दीजिए। तो आज किसी ऐसे इंसान को आप फोन कीजिए जिससे काफी दिनों से बात नहीं हुई है और पूछिए, भाई कैसे हैं आप? हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो कैसे हैं। हो सकता है आपकी ये छोटी सी आवाज किसी के लिए आज की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए। जिंदगी पर भरोसा रखिए, क्योंकि कहानी का अगला पन्ना अभी बाकी है और भगवान ने उस पर क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता है। ये है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, जिसमें हम आपसे करते हैं बात। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कल दिन है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और जिंदगी खूबसूरत है, इसे खुशी और संयम से भरपूर जिएं, ये विषय इस मौके पर हमने रखा है। तो आपके दिल में क्या क्या ख्वाब हैं, क्या क्या तमन्नाएं हैं, कौन सी भावनाएं हैं जिन्हें आपने दबा के रखा है, किसी से शेयर नहीं किया है, आज मौका है एफएम चंडीगढ़ पर उसे खुल के कहने का। हमारे फोन नंबर्स आप जानते ही हैं, जो न्यू लिसनर्स हैं उन्हें हम बता दें, फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619, एसटीडी कोड है 0172। हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार। और एक और बात हम कहना चाहेंगे, जब भी आप कॉल में मिलाएं तो रेडियो सेट की वॉल्यूम आप अपनी कम कर दें और ऐसी जगह पे आप खड़े हो जाएं जहां पे प्रॉपर सिग्नल हो, ताकि आपकी आवाज ना कटे। तो चलिए लेते हैं कार्यक्रम की पहली कॉल और करते हैं बात। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: सत श्री अकाल जी,
0: कौन?
1: मैं बंसीलाल अही अम्बाला से।
0: बंसीलाल जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
1: गांव तेजा मोड़ी जी।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह। तो आज आपके चेहरे की खुशी आपकी आवाज में छलक रही है।
1: आदमी को क्या कितनी परेशानी हो।
0: हाँ,
1: परेशानी का हाल है, परेशानी खुशी से किसी के नजदीक बैठो, आपस में बात करो। आप कह रही जी भी साथ देना चाहिए, कोई आदमी चुप है, क्यों है चुप?
0: हाँ,
1: तुम्हें क्या परेशानी, उसकी जीवन को बदल देता है इंसान दोस्त बन के।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बेहद जरूरी है कि अगर अपने दिल की बात कोई कहता है तो उसे अपने पेट में पचाने की भी हमारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, किसी और को जाके उसकी वो वीकनेस या उसकी वो कमजोरी हम ना बताएं, है ना?
1: हाँ जी, हाँ
0: बिल्कुल। बंसीलाल जी, तो कभी ऐसा किस्सा आपके साथ, कोई घटना ऐसी घटी है?
1: नहीं, वैसे तो हम तो भाई हमको सबको कहते हैं खुश रहो, ऐश करो, जो मालिक ने कहीं कमी भी आ जाती है, कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाता है, कोई घबराना नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: हाँ। और सब... ये तो पैसा आता जाता रहता है।
0: जी जी जी जी, बच्चों को पढ़ाई
1: मिलेगी दोबारा।
0: बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है।
1: जिंदगी तो दोबारा नहीं मिलेगी, पैसा आ जाएगा।
0: हाँ, और सबसे ज्यादा जरूरी कि आपकी अगर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य अच्छा है,
1: मनी मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हाँ, जो ये करेक्टर इज लॉस्ट, आर इज लॉस्ट,
0: एवरीथिंग इज लॉस्ट, है ना?
1: हाँ जी, देखो बहन जी, आपने ये बहुत बढ़िया आज ये कहा, ये रखा है आपने मुद्दा, जो टॉपिक है बहुत अच्छा रखा है।
0: हाँ, तो बंसीलाल जी, मेन बात तो ये है कि हमारी जो यूथ है वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई है, जो पेशेंस है उनमें कम हो चुके हैं थोड़ी सी भी, क्योंकि माँ बाप बड़े प्यार से रखते हैं आजकल बच्चों को।
1: और ये हो गया ना, फोन में चिड़चिड़े बना गया बच्चों में। ये फोन देखते रहते हैं, इसको डिस्टर्ब करते हैं, माँ बाप कहते हैं भाई बच्चा काम कर ले, नहीं दो मिनट का रहेगा, ये दो मिनट का नाटक करेगा।
0: हाँ, तो हमको यही सीख मिलती है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें,
1: फोन से दूर रखो।
0: हाँ, फोन से दूर रखें और अपने साथ बैठने का, बातचीत करने की उनको आदत डालें,
1: काम करो। हाँ, नजदीक रखो।

0: बात है। बहुत मजा आया बंसीलाल जी, आपसे बात करके शुक्रिया।
1: ठीक है जी, बहन जी ठीक है, बहुत धन्यवाद है
0: जी। नमस्कार, हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार,
0: आपका नाम?
1: धीरज लबारी बात कर रहा हूँ।
0: धीरज जी, कौन सी जगह से कॉल किया है?
1: मोनिका जी, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। कार्यक्रम सुनता हूँ और आप जो सटीक विषयों पर जो फोनिंग करते हैं,
0: हाँ।
1: इसके लिए आपको और आकाशवाणी चंडीगढ़ को धन्यवाद।
0: और हमारा भी अपने सभी लिसनर्स के लिए हम यही कहेंगे कि उनका धन्यवाद, वो इतने प्यार से सुनते हैं और अपनी भागीदारी भी निभाते हैं कार्यक्रमों में।
1: जी, जिंदगी में हमें जीना है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा और हमारी सुबह की मुस्कान दूसरे के लिए टॉनिक बन जाती है।
0: वो तो है ही,
1: अगर सुबह में हमारा यानी हमारी मुस्कान नहीं रहेगी, हम गमगीन रहेंगे तो हमारा तो दिन खराब होता है, लेकिन सामने वाला का भी होता है। हमारा दुख कब दूर होता है? जब हमारी मुस्कान आती है। फिर हम हमारा दुख है उसको दूर करने के लिए कई टॉनिक होते हैं, कई दूसरे के साथ मिलजुल के बैठ सकते हैं, एक दूसरे से एक यानी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, यानी जोक भी बोल सकते हैं, यानी सुन सकते हैं, तो उसमें से हमारी जिंदगी है वो अच्छी तरह यानी गुजर सकती है। दीदी,
0: कई बार धीरज जी आपसे मेरे ख्याल से मेरी पहली बार बात हो रही है। हम ऑफिस में वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाता है कि हम बड़े परेशान हो जाते हैं और घर में हमारा जो मूड है वो स्विंग करने शुरू हो जाते हैं। हम कई बार बच्चों पे गुस्सा उतार देते हैं, कई बार अपने हम सफर पर गुस्सा उतार देते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जिंदगी को और खूबसूरत बना सकते हैं? संयम कितना अहम रोल अदा करता है इस चीज में?
1: बिल्कुल, हर जगह के यानी किसान से लेकर यानी जो उद्योगपति है, सभी यह क्षेत्र के लोग होते हैं, वो सब चिंता तनाव में रहते हैं। तो उसके तनाव और यानी तनाव की अगर हल निकालना है तो पहला संयम रखना पड़ेगा
0: जी।
1: और संयम एक ही एक टॉनिक है जिससे हम ये तनाव और चिंता से बाहर निकाल सकता है। और दूसरी बात, हमें अगर तनाव है ज्यादा तो हम ऐसी जगह पर चुनना चाहिए जहां हम अकेले हो, जहां पेड़ पौधा पक्षी हो, या ऐसी जगह हो जहां हमें कोई अच्छा सुनने को मिले। अगर किसी को रेडियो के प्रति इच्छुक है यानी रुचि, तो रेडियो सुनना चाहिए। कोई भी ऐसा हम हमारे जीवन में ऐसा पहलू होना चाहिए जिसे हमें आराम और हमारा मगर मन को सुकून मिले। दीदी,
0: घूमने चले जाएं, आप राइटिंग का शौक रखते हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए अपनी फीलिंग्स को, वो भी एक बहुत अच्छी टॉनिक रहती है और आपके माइंड को फ्रेश कर देती है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए धीरज जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके।
1: मुझे भी अच्छा लगा और आपका दिन मंगल मिले, सभी श्रोताओं का दिन मंगल मिले
0: जी। शुक्रिया। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि दिल में हो आपके कोई भी बात तो अपने दोस्त की, अपने साथी की बात जरूर सुनिए और उसे ये जरूर कहिए कि ऑल इज

0: श्रोताओं, क्या थैलेसीमिया, लुकीमिया या दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक उम्मीद की किरण बन सकता है? बीएमटी की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सामान्य जीवन जिया जा सकता है? या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई राय लेना चाहते हैं, तो इस बार एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अलका खडवाल, प्रोफेसर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
1: राकेश जी, क्या बात है, हर बार बाजी मार लेते हैं आप हिमाचल से, है ना?
2: जी जी, क्योंकि आज टॉपिक ऐसा है क्योंकि कल जो है विश्व जो है आत्महत्या दिवस भी है।
1: आत्महत्या को रोकने पर, है ना?
2: रोकने पर। हाँ
1: जी
2: जी, तो मैं इस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम कभी भी हैं, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है उदास हो जाता है या कोई हो जाता है, तो हमें इसको ये नहीं बोलता, हम क्या करते हैं, हाँ भाई जैसे कि जैसे कोई व्यक्ति उदास हो रहा है, हम बोलते हैं भाई क्या कमी आपको, क्या समय पे आपको खाना नहीं मिलता, हमें आपको खर्चा नहीं करता। देखो बात खाने की नहीं है, बात खर्चे की नहीं है, लेकिन कोई ना कोई उसके मन में कोई ना कोई बात तो जरूर है।
1: जी जी, जी।
2: हमें उसको हमें सहानुभूति नहीं देनी चाहिए। हम ये मतलब कई बार हम कई बार जो अपने फैमिली में जो है अपनी बात शेयर नहीं करता, क्यों करेगा? तो वो फट बोलते हैं भाई आप हमें सब कुछ दिया, हम आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, हम आपके लिए इतनी इमारत खड़ी कर रखी, तो आपको क्या टेंशन है, आपको क्या परेशानी है? अगर तुम फालतू की टेंशन करिए तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो वो सोचता कि भाई मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि वो मेरी तकलीफ को नहीं समझ रहा, लेकिन उसको लगता है कि हमें पैसे की कमी है। देखो कई ऐसे व्यक्ति हर जरूरत नहीं की उसकी उसको पैसे की जरूरत है, या उसको कोई दौलत की जरूरत है, या उसको समय पे कुछ नहीं मिल रहा उसकी जरूरत है, लेकिन कोई ना कोई बात है। लेकिन हमें उसको जो है सावधानी देनी चाहिए, हिम्मत उसका देनी चाहिए कि मैं आपके साथ हूँ, आप कोई भी परेशानी आप मुझे बताओ।
1: राकेश जी,
2: हो सकता कि मैं आपकी समस्या का हल ढूंढ लूँ, ऐसा करके हम बोलेंगे तो फिर वो बता सकता है।
1: हम कई बार देखते हैं राकेश जी कि जनरेशन गैप जो है, कई बार पेरेंट्स खुल के बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, कई बार बच्चे खुल के अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, या ये भी रहता है कि स्ट्रेस इतना होता है, हम सोचते हैं कि घर में वो चीज़ क्यों बताएं, या घर में जिस जो भी पर्सन रह रहा है वो सोचते हैं कि बाहर से आए हैं क्यों और परेशान करना है इसको। तो वो गैप हमें ख़त्म करना है, ज़रूरी है कि एक दूसरे की बात सुने।
2: जी, एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि देखो पहले जब मैं 15-16 साल का था
1: जी,

0: क्योंकि मुझे टेंशन हो गई थी। तो फिर जब से मैं आकाशवाणी से जुड़ा, देखो मुझे टेंशन किस बात की हो गई थी
1: जी,
0: क्योंकि मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ। तो मैं मुझे ब्लाइंड की टेंशन ऐसी हो गई थी कि अरे मेरे को ऐसा भगवान ने क्यों बनाया, काश मैं भी इनकी तरह कमा लेता, मैं भी कुछ कर लेता, मैं भी दुनिया देख लेता, मैं भी पहचान लेता, और टेंशन पड़ गई थी। तो फिर एक बार मेरे को मम्मी ने नहाने के लिए पानी, तो फिर वो बोल रही थी देखो क्या, उन्होंने देखा कि मेरा शरीर बिल्कुल पतला गया था, पर मैं क्या करता था, मैं पता था नहीं था
1: जी
0: घर पे की भी क्या टेंशन है, मैं थोड़ा हो गया था। तो फिर मैं धीरे धीरे मैं टेंशन से बाहर आया, तो फिर मैंने अपने मन में ही सोचा कि वे देखो टेंशन नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं, देखो जो भी है भगवान ने हमारे को इस तरह से बनाया। जब 2021 से मैं आकाशवाणी से जुड़ा, तो आज मुझे आकाशवाणी की माध्यम से इतनी श्रोता मिले कि जो आधे से ज्यादा ब्लाइंड लोग हैं।
1: जी जी जी।
0: तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को साबुन देता हूँ। एक अभी मैं हमारे को नई श्रोता मिली बेचारी एक महाराष्ट्र से, वो भी ब्लाइंड है, तो उसको भी हौसला की, और लेट ब्लाइंड हुई, तो मैं उसको बोलता कि हम भी ब्लाइंड है, तब जाके उसको टेंशन, आज को खुश होगी देखो हमारी वजह से, देखो हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं, पहचाना
1: नहीं। बहुत बहुत खुशी की बात है राकेश जी, आज आपने खुद बताया तो हमें पता चला कि ऐसी चीज भी है, अदरवाइज कोई ये जज ही नहीं कर सकता है कि आपको ये भी प्रॉब्लम है, और लेकिन आपकी जो मन की आंखें हैं वो बहुत खूबसूरत है, आपका दिल बेहद खूबसूरत है।
0: आकाशवाणी के बार बार देखो कई श्रोता से आकाशवाणी पे बताते रहते कि मैं हम ब्लाइंड है, हम घर पे पड़े रहते, लेकिन ये कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, आप बताओ और इस तरीके से बताओ कि हम ब्लाइंड हो कि हम कुछ कर सकते हैं
1: जी,
0: जिससे आदमी हमारे ऊपर गर्व कर सके कि क्योंकि ब्लाइंड हो कि हम कर सकते। अगर हम ऐसा बताते हैं कोई सोता, कई बार मुझे बुरा लगता है जब आकाशवाणी की ये बात आते कि मैं घर पे रहता हूँ, मुझे आप दोनों को दिखाई देता है, लेकिन ये कमजोरी अगर आप बताएंगे तो इससे आप खुद टूट जाएंगे और बाकी जो ब्लाइंड लोग हैं उनका
1: राकेश जी एक बात हम बताएं आपको, अगर भगवान आपकी एक क्षमता को छीन लेता है या कम कर लेता है तो दूसरी क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है, और हमारे बहुत से ऐसे खोजकर्ता ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो इस स्थिति में रहने के बावजूद उन्होंने देश के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया है, तो हम उनको नहीं भूल सकते हैं। आप किसी तरह से कमजोर नहीं है, आप अपने स्तर पे बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना
0: जी, जी, जी, जी, जी।
1: पर यह है कि पॉजिटिविटी आपके अंदर रहनी चाहिए, और आपके अंदर पॉजिटिविटी है ये जान के बहुत मजा आया, है ना
0: जी जी जी जी।
1: शुक्रिया राकेश जी।
0: जी जी धन्यवाद
1: जी। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: हेलो मैडम, नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: मैडम, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, संकट मोचन शिमला से।
1: अरे वाह प्रदीप जी, बहुत क्लियर और खुशी वाले अंदाज में आपने कॉल किया है, क्लियर आवाज आ रही है।
2: मैडम बस ये सारा क्या बोलते बजरंग बली जी की कृपा है और आकाशवाणी चंडीगढ़ परिवार का आशीर्वाद है।
1: अरे वाह, इतने प्यार के लिए बेहद शुक्रिया। बताइए कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसके लिए संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्यों हम ऐसा कहते हैं?
2: मैडम मैं तो आज के विषय में ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं
1: जी,
2: और परेशानियां भी जीवन का एक भाग है। कभी भी परेशानियों से नहीं घबराना चाहिए क्योंकि यह थोड़े समय तक ही रहती है।
1: बिल्कुल,
2: यदि परेशानी में हमारे साथ मैडम कोई खड़ा होता है ना तो आधी परेशानियां तो वैसे ही समाप्त हो जाती है।
1: बिल्कुल,
2: एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है परेशानी में, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए
1: जी।
2: परेशानी में जो हमारा साथ दे मैडम वही एक सच्चा मित्र है, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: और जो हमारे जीवन में मैडम ये घटित होना है वो तो निश्चित है, और ऐसे समय में हमें बहुत ही संयम से काम लेना चाहिए और हौसला नहीं हारना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो कभी ऐसा किस्सा कोई घटना या किसी को आपने देखा है जो बाद में इतनी परेशानियों के बाद भी इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि उनको लगता है कि गम कभी छूके ही नहीं गया?
2: हाँ मैडम, ऐसा हमने कई बार देखा कि मतलब ऐसी भी नौबत आ गई है लोगों में कि वो मतलब जान देने को भी मतलब तैयार हो गए वो, कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया हुआ है और जिंदगी में कुछ नहीं रह गया है। लेकिन मतलब जब ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जाए ना तो फिर वो जो है मतलब इस चीज को सारा छोड़ छाड़ के ना मैडम, और फिर थोड़ा सा संयम बरतते हैं वो, और फिर थोड़े समय के बाद उनका जीवन वैसे ही हो जाता है नॉर्मल
1: जी। तो जरूरी है अपने दिल की बात साझा जरूर करें, है ना?
2: बिल्कुल मैडम, अगर हम अपने अंदर ही उस चीज को रखेंगे ना तो फिर हम ज्यादा परेशान होंगे। अगर हम उसको अगर क्या बोलते एक दूसरे के साथ बांटते तो वो हमारा दुख जो है वो आधा हो जाता है और खत्म भी।

0: है मैडम।
1: बिल्कुल, तो प्रदीप जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आप सबसे अब हम मिलेंगे इस संदेश के बाद।
0: ठीक है मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
2: अरोड़ा प्लाईवुड,
3: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: श्रोताओ, क्या थैलेसीमिया, लुकीमिया या दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक उम्मीद की किरण बन सकता है? BMT की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सामान्य जीवन जिया जा सकता है? या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई राय लेना चाहते हैं, तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अलका खडवाल, प्रोफेसर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमाटोलॉजी एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।
1: श्रोताओ, जिंदगी में खुशी और गम ठीक उस तरह से हैं जैसे वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का मजा ही नहीं है। तो खुशियां और गम इसी तरह से जिंदगी में आती रहती हैं और आती भी रहेंगी। तो आपने कभी भी गमों से डर के कभी रुकना नहीं है। ये गीत आप सबके लिए।

0: बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर के साथ। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी मैं रामवीर बोल रहे जी, गांव कीरमत से, जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से।
0: आपका पूरा नाम हम सही तरीके से नहीं सुन पाए।
1: रामवीर जी। हाँ जी, गांव कीरमत से जी।
0: जी हरियाणा से।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे रामवीर जी आप?
1: हाँ जी दीदी, देखिए मैं सबसे पहले ये दो लाइन कहना चाहता हूँ कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो दीदी जब हम परेशानियों से निकल कर जाएंगे तो हमें सफलता ही मिलेगी, और हमें घबराना नहीं चाहिए कभी भी छोटी छोटी मुसीबतों से। इनका डटकर सामना करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी।
0: तभी तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: हाँ जी दीदी बिल्कुल जी।
0: अच्छा,
1: और जैसे हम देखते हैं कि कुदरत ने जो बनाई है, जैसे दिन के साथ रात और रात के बाद फिर सुबह आती है, तो ऐसे परेशानियां तो थोड़ी चलो आती जाती रहती हैं, लेकिन परेशानियों के बाद फिर हमें सफलता ही मिलती है, तो वो हमारे लिए बहुत खुशी का विषय होती है दीदी।
0: बिल्कुल, खुशी आती ही है, और तब असली खुशी आती है जब हमने पूरे प्रयास किए होते हैं अपने। पता है हमें कि हम इतनी बार गिरे यहाँ पे, इतनी बार लोगों की बातें सुनी हमने, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या कुछ और दिक्कत थी, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे और इन द एंड जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त कर ही लिया है ना।
1: हाँ जी, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि गिर पड़कर ही सवार होते हैं जी। जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसको चलने से पहले पता नहीं कितनी बार गिरेगा, और वो फिर धीरे धीरे चलना सीखता है दीदी।
0: जी जी जी, तो जरूरी है कि जिंदगी में हम संयम बनाकर रखें, अपना आपा ना खोएं। जो लोगों की जिसको हम कहते हैं कि जीवन कथा है, अगर उसको हम पढ़ें कि उन्होंने जीवन में किन किन मुश्किलों का सामना किया, तो वैसे ही हम मोटिवेट हो जाते हैं, प्रेरणा हमें मिल जाती है ना।
1: जी बिल्कुल जी, उनके आदर्श जीवन से हमें कथाओं से, उनके जीवनी से बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैंने तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं ये अक्सर जीवनियां ही पढ़ता था, सुभाष चंद्र की, जो मेरे पास जीवनी की किताब भी रखी है दीदी। और उन्होंने जितना लिखा है अगर उसको हम पढ़ें तो बहुत, सभी जिंदगी के कोई सा विषय ऐसा नहीं छूटा कि दीदी सुभाष चंद्र बोस ने जो ना कहा हो और उसको किताब में ना लिखा गया।
0: जी, तो किताबें हमारी सच्ची साथी हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है, सोच परिवर्तित कर देती हैं वो सामने वाले की। अगर कहीं आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप खुल के किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकते हैं, तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं इन्हीं किताबों में हमें।
1: हाँ जी दीदी,
0: तो रामवीर जी शुक्रिया, आगे भी यूं ही कॉल करते रहिए।
1: हाँ जी दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: गुड मॉर्निंग, स्मृता डोगरा बोल रही मैम।
0: वेरी गुड मॉर्निंग स्मृता जी,
2: हमीरपुर। मैं दो लाइन गाऊं?
0: बिल्कुल गाइए।
2: समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे मैं आगे जाऊं निकल। मुझे गाना नहीं आता।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह, आपकी मन की भावनाओं को हम समझ गए स्मृता।
2: हाँ जी मैम, ऐसे है कि किसी शायर ने लिखा है कि समय तू धीरे चल मेरे लिए कि मैं सारी दुनिया से आगे निकल जाऊं, ऐसी स्पीड भी नहीं चाहिए
0: जी।
2: मतलब धरती के साथ जुड़ के रहो, समय तो अपने समय के साथ चलेगा, और समय ही सबसे बड़ा हीलर होता है मैम।
0: बहुत खूब बहुत खूब, सही लाइन पकड़ी है आपने स्मृता।
2: समय से पहले कुछ नहीं मिलता, बाद में अगर आप बोले मान ली तीन से सौ गड़ा ऋतु आए फल हो, वो कहते हैं ना कि बीज बोने के बाद जल्दी कुछ नहीं है जीवन में। पर मुझे लगता है कि जिसको ये डिप्रेशन हो जाता है ना, वो ऐसे चीज में चला जाता है।
0: और कई बार स्मृता पता भी नहीं होता है कि हम डिप्रेशन में हैं।
2: बिल्कुल, मेरे साथ हो चुका है
0: जी।
2: सेम चीज हो चुकी है, मुझे शुगर हो गई थी, तो मैं बल्कि दो बार मैं प्रॉब्लम में आई
0: जी।
2: तो मैंने खुद को डॉक्टर ने तो डिप्रेशन की दवाई दे दी। मैं वेल तो जाऊं ना, मैं दोनों बेटे बोले आप जाओ, आप ठीक नहीं होंगे, अभी बड़े बेटे की शादी भी नहीं थी
0: जी,
2: भाई लेके चले गए, हटे ही नहीं मुझे। तो जब लेके चले गए डॉक्टर ने दवाई दी, फिर मैम मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, फिर दवाई तो मैंने खानी नहीं थी
0: जी,
2: अब ले ली क्योंकि मेरे पीछे पड़े रहे,

0: जी
1: मैम, मैंने उसके सॉल्ट पड़ा,
0: हाँ
1: मतलब डिप्रेशन में बैठी हुई स्टेज में सॉल्ट पड़ा, क्या है वो सेरोटोनिन जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स है वो सूरज की लाइट से भी मिलते हैं
0: जी।
1: तो मैंने गमलों में अपने काम करने शुरू कर दिए, गमले तो रखे थे, मैं तो लेटी रहती थी, एनर्जी नहीं थी, तो मैंने उसमें काम करने शुरू कर दिया। मैं कहती हफ्ता भी नहीं लगा,
0: हाँ,
1: और मैं नॉर्मल पे आ गई।
0: तो अच्छी बात ये है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा अच्छा रूप दिया। आपके अंदर कुकिंग का टैलेंट है, पेंटिंग का है, गार्डनिंग का है, बहुत सारे टैलेंट हैं।
1: ये सारे हैं मैम मेरे अंदर।
0: तो आप किसी और चीज़ को निखार के अपने आप को बिजी रखते हैं तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता है।
1: हाँ जी मैम, आईज भी बचती हैं, दूसरी तरफ से बात कर रही हूँ। जब मैं शुरू से अगर टीवी में कोई सीरियल देखती थी, पिक्चर देखती थी, मुंह मेरा नीचे होता था, मैम मीटिंग कर रही है फिर कुछ, बट वो टीवी स्क्रीन भी देखती थी।
0: हाँ।
1: अभी तक गॉगल स्पेक्स नहीं लाके मैंने नौकरी नहीं करी है, फाइन अपने बिना स्पेक्स के करी है 58 एज तक।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो
1: मैम मैं बोलूंगी थोड़ी सी लाइन, क्योंकि जो डिप्रेशन में है ना उनके लिए ये आसान नहीं है कि वो निकल पाए। हम बोल रहे हैं ना मैम
0: जी जी जी,
1: जब तक उसके मन में इच्छा ना हो कि मैं मतलब ये नेगेटिविटी से हटूं, तो उनको जो परिवार वाले हैं पहले तो उनको जाने ना दें डिप्रेशन में
0: जी।
1: अगर बाय चांस वो लोनली रहने लग पड़ता है तो वो पहली स्टेज होती है कि वो सबसे मिलता नहीं है, फोन नहीं करेगा,
0: बिल्कुल
1: घर में मेंबर हमसे बात नहीं करेगा, अपने रूम में रहेगा, है ना मैम,
0: बिल्कुल,
1: तो किस चीज को एंजॉय नहीं करेगा। तो उसको पहले प्लीज उसको सपोर्ट करें परिवार वाले।
0: हाँ
1: जी
0: जरूरी है, साथ की प्यार की। वो अकेला भी रहना चाहता है, कैसे कोई अकेले रह सकता है जो हमारा परिवार का सदस्य है, है ना
1: मैम। एक्चुअली ऐसा था कि वो बच्चे, वो जो आपने अभी बोला, मैंने सुना था कि बच्चे जो है गैप रहता है पेरेंट्स और बच्चों का, तो बच्चा जो है पेरेंट्स को नहीं बता सकता कि मैं बताने का मतलब सोचता नहीं कि आज परिवार में इतनी परेशानियां हैं
0: जी।
1: बट मैं कहूंगी पेरेंट्स को सबसे पहले यही बोलना है कि आप जो अपन पढ़ के आए हो या जॉब से आए हो, पहले आके स्कूल टाइम से आज डालो कि शेयर करो स्कूल में क्या क्या हुआ
0: जी,
1: सुनो,
0: बिल्कुल
1: सुनो। और जब अडल्ट हो जाता तो डांटने की बजाय उसका शोल्डर के साथ शोल्डर जब मैच हो जाता है, इतना बड़ा बच्चा बन जाता है
0: जी,
1: तो उसको एज अ फ्रेंड जो बोलते हैं वो करो भी, वैसा ट्रीट करो पेरेंट्स काइंडली, अपने बच्चों को बचाओ।
0: सही कहा, सही कहा। अब आपके साथ साथ तमाम लिसनर्स को स्मृता हम एक चीज कहना चाहेंगे, और वो भी गुनगुना के, कि दिल में हो आपके कोई भी बात तो कौन है, मैं हूं ना, कहने की हो दिल।

0: सच में बहुत सारा प्यार मिलने वाला है आकाशवाणी परिवार की ओर से हमारे सभी लिसनर्स को। और आज हम बात कर रहे हैं, हमारा विषय है जिंदगी खूबसूरत है, इसे खुशी और संयम से भरपूर जिए। कैसे जी सकते हैं आप और निराशा को अपने आसपास बिल्कुल भी ना फटकने दें, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ होता है। बच्चों को पढ़ाई की टेंशन होती है, कभी आप ग्रुप से अकेला महसूस करते हैं, किसी एक को ज्यादा टेंशन दे गई तो आप लगते हैं कि हाँ हम अकेले रह गए। बहुत सी बातें रहती ये दिन में दिल में आपके। और अगर महिलाओं की बात की जाए तो वो घर में सोचते हैं कि हम कभी ये काम कर लें, कभी वो काम कर लें, लेकिन अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता है, अपने दिल की बात किससे कहें। तो बहुत सारी चीजें रहती है दिमाग में। फिलहाल हमारे लिसनर्स के दिमाग में क्या कुछ है जानते हैं उनसे। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: जी, आपका नाम?
1: मैं भगवान सिंह बोल रहा हूँ।
0: भगवान सिंह जी, कौन सी जगह से?
1: रोपड़ से बोल रहा हूँ, नोला गाँव
0: जी। आज क्या कहना चाहेंगे विषय पर?
1: मैं तो मैडम यही कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई परेशानी आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, डट के उसका मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ तो बीत चुका है ना
0: जी,
1: आज से 14-15 साल पहले तो परेशानी आ गई थी घर में। तो दिल तो बहुत करता है ऐसे कर दे वैसे कर दे
0: जी,
1: तो मैंने घर से निकलना ही सही समझा।
0: हाँ।
1: बच्चे भी थे दो छोटे छोटे
0: जी जी,
1: लेकिन 6 महीने घर से बाहर रहा।
0: हाँ हाँ।
1: किसी प्रकार से कोई उनके साथ ताल्लुक नहीं था। 6 महीने बाद अचानक ही मुझे दोबारा आना पड़ा, वही जिम्मेवारियां जो छोड़ के गया था वही फिर उठाई मैंने आके। आज बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि थोड़े टाइम के लिए आप साइड हो जाएं, कहीं चले जाएं, तो यही सबसे बेहतर रहेगा, कहीं कोई गलत स्टेप उठाने से पहले 100 बारी सोचें।
0: हाँ, उसके अच्छे

0: और बुरे परिणाम जरूर सोचें, और अगर आपके साथ एक नहीं कई जिंदगियां जुड़ी हैं तो बिल्कुल, अपने बिल्कुल। बारे में ना सोचें, औरों के बारे में भी सोचें जो इतना लगाव रखते हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे।
1: हाँ जी हाँ, तो पता क्या बात है, बंदा जो समझदार होता है उसको तो यही करना चाहिए कि अगर कोई ज्यादा परेशानी है भी है तो थोड़ा सैड हो जाए दो चार दिन मिलने के लिए।
0: जी
1: जब हल हो जाएगा तो बंदा आ जाएगा तो अपने आप सही हो जाएगा।
0: बिल्कुल, पीठ दिखा के नहीं
1: भागना है। कितनी भी परेशानी हो तो घबराना नहीं चाहिए कभी।
0: जी
1: एक रास्ता बंद होता है तो एक खुलता भी है साथ में।
0: बहुत खूब कहा, बहुत खूब कहा भगवान सिंह जी आपने।
1: मेरे साथ तो बीतता हुआ है ना
0: जी, तो आपसे बाकी लोग भी प्रेरणा लेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि अपनों का साथ बिल्कुल ना छोड़िए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो जिम्मेवारी निभाने के लिए द्वारा आया ना।
0: हाँ, ये बढ़िया बात की
1: आपने। लोगों ने पता क्या कहना था कि जी, चलो वो तो है थी, जैसी है थी, जो बच्चे थे छोटे छोटे, लेकिन उनकी जिम्मेवारी किसी ने उठानी थी, वो तो चली गया। तो ये चीजें दिमाग में थी तभी द्वारा आना पड़ा, लेकिन मैंने आना नहीं था। फिर जब आया तो दिल पर पत्थर रख के आया भी नहीं, जो मर्जी हो भी अभी तो निभानी है बस।
0: जी, आप किसी का हाथ पकड़ के लाए हैं और आपके ऊपर जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी भी है, तो खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, और जब वो पैरों पर खड़े हो जाएं तो वो अपने काम खुद कर सकते हैं। तो सलाम है आपके जज्बे को कि आप पीठ दिखा के नहीं भागे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
1: थैंक यू मैडम
0: जी। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: मोनिका जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
0: जी हमारी भी प्यार भरी नमस्कार आपको।
2: मैं सतीश कुमार सेटकर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी।
0: सतीश जी कैसे हैं आप?
2: मैडम जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ
0: जी। और आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं पहले एक दो लाइन बोल दूं जी।
0: इरशाद,
2: जिंदगी खूबसूरत है, कुछ तुम भी चलो कुछ हम भी चले। हाँ। चलती रहे जिंदगी।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: सबका साथ देने से ही जिंदगी चलती है
0: जी।
2: अगर कोई साथ छोड़ देगा तो हमने घबराना नहीं, अपना साथ बना के रखना है। जिंदगी में हार नहीं माननी जी।
0: जी
2: आशा ही जीवन है, जीवन ही आशा है।
0: क्या बात है,
2: हमें आशा रख के आशा की किरण कभी नहीं छोड़नी। अगर हम आशा की किरण छोड़ देंगे तो हमारी जिंदगी नरक हो जाएगी जी।
0: बिल्कुल,
2: रोज कुछ ना कुछ करते रहे, अपने अंदर शौक रखे। शौक जो है आपको आगे ले जाता है।
0: क्या बात,
2: शौक होगा आप में आप आगे चलते जाओगे जी।
0: जी
2: बाकी रेस जरूर लगाए।
0: हाँ।
2: जिंदगी में रेस होती है, कंपटीशन होता है, एक दूसरे से कंपटीशन जरूर लड़े जी।
0: जी जी जी,
2: अगर कोई दूसरा निकल गया तो आपने हार नहीं माननी, आपने लगे रहना जी।
0: बिल्कुल,
2: कंपटीशन ही जिंदगी का नाम है
0: जी। और
2: हालात में आपने कंपटीशन लड़ना ही लड़ना है
0: जी।
2: बाकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रोज का काम टाइम टू टाइम जरूर करे। अगर हमारा काम पेंडिंग होगा तो हमें निराशा हाथ लगेगी जी।
0: जी
2: एक और लाइन बोलता जी।
0: जी जी कहिए।
2: छोटी सी है जिंदगी, पल दो पल का साथ है, ऐसे में हंसी खुशी जिया जाए, हम सबका साथ साथ है।
0: अरे वाह अरे वाह, बड़े शायराना अंदाज में अपने सारे दिल की बात आपने कह डाली सतीश जी, और बहुत अच्छा लगता है जब कम शब्दों में बहुत सारी बातें हमारे लिसनर्स कह जाते हैं।
2: मैडम जी लगे रहो, बाकी संतोष की तो सीमा ही नहीं होती
0: जी।
2: अगर आज हमने साइकिल सीखा है तो कल हमने स्कूटर सीखना है, फिर कार सीखनी है
0: जी।
2: मतलब लगे रहना जी, आधुनिक युग आ गया है
0: जी,
2: आधुनिक युग में घबराना नहीं। अगर मोबाइल खराब हो गया खो गया तो हमें घबराना नहीं चाहिए, दूसरा मोबाइल ले लो
0: जी। जी
2: ठीक है, दिल पे ना लगाओ जी।
0: जी और
2: अगर
0: सही
2: आप दिल पे लगा लोगे ना फिर आपको बहुत डिप्रेशन में चले जाओगे।
0: हाँ, और ये भी जरूरी है कि संयम रखें और प्राणायाम योग वगैरह अगर आप करते हैं तो मेंटली आप काफी फिट रहते हैं, है ना
2: जी। थोड़ा संयम रखें, इंतजार करें, थोड़े से इंतजार के बाद फिर अच्छा हो जाएगा। अगर सुबह कोई गुस्सा गासा हो गया तो दोपहर को अच्छा हो जाएगा जी। इंतजार जरूर करें जी।
0: अब हम कुछ कहें,
2: एक और बात कहूं जी।
0: हाँ हाँ बोलिए।
2: आप व्रत जरूर रखें फास्ट
0: जी।
2: अगर हम चार डंग खाना खाएंगे ना उससे हमारी जिंदगी फैटअप हो जाएगी, निराश हो जाएगी। हमें कभी कभी व्रत भी रख लेना चाहिए जी।
0: बिल्कुल, और आपके लिए हमने एक गीत रखा है।
2: ठीक है मैडम जी।
0: कौन सा गीत है? गीत है जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई

0: श्रोताओं, हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आज हमने बात की जिंदगी खूबसूरत है इसे खुशी और संयम से भरपूर जियो इस विषय पर। और जितने भी हमारे लिसनर्स थे उन्होंने अपने जीवन के अनुभव हमसे साझा किए और निचोड़ यही निकला कि मुसीबत में गमों से हमें नहीं घबराना है, डट के मुकाबला करना है और जो हमारे साथी हैं वो उस समय हमारा साथ ज़रूर दें। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मोनिका ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़।
2: दस साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 5-25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होवेगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

रकम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। प्रिय श्रोताओं, दहेज का अर्थ उस राशि वस्तुओं से लगाया जाता है जिसे कन्या पक्ष की ओर से विवाह के अवसर पर वर पक्ष को दिया जाता है, लेकिन अपनी पुत्री के विवाह अवसर पर अपनी इच्छा से खुशी खुशी दामाद को कोई उपहार देना दहेज नहीं है, लेकिन वर पक्ष के दबाव में या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा वर पक्ष को उपहार देना दहेज है। दहेज एक प्रथा नहीं है, लेकिन भीख लेने का एक सामाजिक तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है, देने वाले की गर्दन झुकी होती है और लेने वाले की अकड़ बढ़ जाती है। तो आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।

0: अरे सुनती हो?
1: हाँ जी, रुको अभी आती हूँ।
0: अरे कल किरण को देखने वाले आएंगे और तुम बाजार से बढ़िया सी साड़ी खरीद लेना। और सुनो, पंकज को पैसे दे देना और वो मिठाई ले आएगा।
1: ठीक है जी।
0: आइए आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। भाई साहब, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना?
2: अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका मकान सही जगह पर बना हुआ है, फिर पता पक्का हो तो कौन भटकता है।
0: सही कहा आपने। लीजिए भाई साहब मिठाई खाइए। लो बेटा आप भी ले लो ना।
2: जी भाई साहब, ये है हमारा लाडला बेटा जो कि इंजीनियर है, दिल्ली में नौकरी करता है और 50,000 महीने की तनख्वाह है इसकी।
0: अच्छा बेटा, प्रमोद कौन सी कंपनी में हो?
3: जी मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ।
0: हमारी बिटिया किरण भी बीए कर रही थी, लेकिन उस दौरान वायरल बुखार के कारण अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाई।
4: अरे कोई बात नहीं भाई साहब, परीक्षा ही तो नहीं दे पाई, हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो घर परिवार को संभाल ले और बड़ों की इज्जत करे। पर भाई साहब बिटिया नजर नहीं आ रही।
0: जी अंदर ही है बिटिया, अभी बुलाते हैं।
4: आओ बिटिया यहाँ बैठो। भाई साहब आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। बेटी तुम क्या क्या काम कर लेती हो?
5: जी मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है।
4: अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, अब तो खूब निभेगी हमारी, हमें तो भा गई हो आप। क्यों बेटा प्रमोद?
3: माँ आप लोग देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है।
2: अरे बेटा शादी तो तुम्हें करनी है, तुम आपस में बात कर लो। शादी से पहले लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को जान ले तो अच्छा रहता है।
1: हाँ क्यों नहीं भाई साहब, अब तो जमाना बदल गया है। किरण जाओ बेटा अंदर और दोनों आपस में बात कर लो।
4: बहन जी अभी कुछ दिनों पहले मेरे चाचा जी ने अपनी बेटी की शादी की थी। उन्होंने अपनी बिटिया को खूब सोने से लाद कर भेजा था और दान दहेज भी खूब सारा दिया था।
2: भाई साहब सुनिए, दहेज तो आशीर्वाद होता है जो बिटिया अपने साथ लाती है, और सभी माँ बाप ये सब तो करते ही हैं।
0: जितना हमसे हो सकेगा उतना तो कर ही देंगे, भला कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए कमी थोड़ी करता है।
4: हम तो साफ कहते हैं कि लेन देन की बात पहले ही हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में जिक जिक सही नहीं लगती।
0: बहन जी हमसे जितना बनेगा हम जरूर करेंगे।
2: भाई साहब वैसे तो हमारे लड़के के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, एक तो 5 लाख रुपए और साथ में गाड़ी भी दे रहे थे, लेकिन मेरे मित्र लालू ने तुम्हारी बिटिया के बारे में बताया, और लालू हमारे बहुत पुराने मित्र हैं।
0: जी वो मेरे साथ ही काम करते हैं, लेकिन भाई साहब हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, पर 3 लाख तक का इंतजाम तो हो ही जाएगा।
2: अरे भाई साहब लड़की गाड़ी तो लाएगी ना साथ में।
0: भाई साहब अभी हमारा एक बेटा भी है,

0: उसके बारे में भी तो सोचना है ना।
1: अरे भाई साहब, आप अपने लड़के की चिंता मत करो, आपके लड़के को भी तो दहेज मिलेगा और अभी तो वो बहुत छोटा है।
0: भाई साहब ऐसा करते हैं, 1,00,000 रुपए नगद और गाड़ी कर देंगे।
2: अरे ऐसी कोई चिंता नहीं है, 2,00,000 रुपए बाद में दे देना, अब तो हम समधी बनने ही वाले हैं।
3: श्रोताओ, इन सब बातों के चलते दोनों परिवारों की सहमति हो गई और अंदर से किरण और प्रमोद बाहर आते हैं।
1: लो बच्चे भी आ गए, तो बताओ प्रमोद बेटा, लड़की कैसी लगी?
4: माँ मुझे लड़की पसंद है, आप एक बार किरण से भी पूछ लीजिए।
5: अरे बेटा किरण से क्या पूछना, वो हमारी बात कभी नहीं टालती।
1: अरे नहीं, फिर भी बिटिया की राय भी जरूरी है, बोलो बेटा।
6: जी जैसा आप लोगों को ठीक लगे।
2: ठीक है भाई साहब, अब हम चलते हैं, बिटिया की कुंडली भिजवा देना, हम पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा देंगे।
3: और फिर किरण की माँ और पिता महेश जी के परिवार को छोड़ने के लिए गेट पर जाते हैं। और उस दिन किरण की माँ बहुत ही खुश थी। किरण की माँ महेंद्र जी किरण के कमरे में जाते हैं और किरण के सर पर हाथ फेरते हुए बोले,
5: बेटा तुम्हें लड़का कैसा लगा?
6: ठीक है माँ, अगर आप लोगों की पसंद है तो मेरी भी पसंद है।
0: मेरी बेटी ने मेरी लाज रख ली, लेकिन एक चिंता मुझे सता रही है, इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा?
5: देखो जी, लड़का अच्छा है और कमाता भी है और नशा भी नहीं करता, भला आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। और रही दहेज की बात, वो तो बेटी के बाप को देना ही पड़ता है, समाज वालों को भी तो मुंह दिखाना है, गांव की जमीन गिरवी रख देते हैं और बाकी इंतजाम बाद में कर लेंगे।
0: तुम ठीक ही कह रही हो, भला बेटी का बाप होना आसान नहीं है, कुछ तो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वैसे भी किरण को घर परिवार अच्छा मिल जाए तो जीवन अच्छा बीतेगा।
3: प्रिय श्रोताओं, कुछ दिन बाद किरण की शादी बड़े धूमधाम से हुई और सब काम अच्छे से निपट गए और किरण के जाने के बाद घर की रौनक चली गई। घर में जो चहल पहल थी उसकी जगह घर अब सूना सूना हो गया। किरण के पिता रोज अपनी बेटी को याद करते थे और कहते थे, जब इस घर में किरण थी तो इस घर में कितनी रौनक थी, और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक उठे।
5: देखो जी, जब से किरण गई है, जब भी किरण को फोन करो तो उसकी सास फोन उठाती है और फिर थोड़ी बात होती है तो बात खुलकर नहीं हो पाती है।
2: हेलो हेलो, अरे भाई साहब मैं महेश बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब आपने तो वो पैसे नहीं दिए अभी तक, क्या इरादा है, अपनी जुबान से फिर गए क्या?
0: अरे नहीं नहीं भाई साहब, जो पैसे आपको देने थे वह छोटे बेटे की बीमारी में लग गए, आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए, अभी हमारे घर की हालात ठीक नहीं है।
2: भाई साहब ये सब नहीं चलेगा, अपनी बेटी को ले जाओ, आपकी बेटी इतनी कमजोर है कि ना तो घर के कोई काम करती है और ना ही टाइम से उठती है, उसके भी रोज के नखरे हैं।
0: अरे भाई साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं, शादी की है हमने अपनी बेटी की, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, हमारी मजबूरी समझिए ना।
2: हमें कुछ नहीं सुनना, बहाने नहीं चलेंगे, पहले ही कहा था हमने कि दहेज के बिना शादी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने शादी कर ली।
0: हेलो हेलो, लगता है बिटिया हमने गलत घर में बिहा दी है, मुझे लगा था कि वे भले लोग हैं, हमारी मजबूरी समझेंगे, लेकिन वो तो बिटिया को वापस ले जाने की बात कर रहे हैं।
5: अरे ये तो बड़े लालची निकले, हमारे घर की हालात भी नहीं समझते। तुम ऐसा करो किरण को ले आओ, एक तो किरण से काफी महीनों से बात नहीं हो पाई, पता नहीं हमारे किरण वहाँ खुश है भी या नहीं।
1: बेटा प्रमोद, अब तो हमारे सब्र का बांध भी टूट गया है, तू किरण को कहता क्यों नहीं कि उसके बाप ने जो हमसे वादा किया था, जो उन्होंने हमें दहेज में देने की बोली थी, और अब वो रोज बहाने बना रहे हैं।
7: माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी बताता हूँ किरण को। किरण किरण जल्दी बाहर आ।
8: जी बोलिए।
7: मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपने माँ बाप से कह दे वो पैसे भेज दें।
8: सुनो जी, अभी तो हमारी शादी का कर्जा भी नहीं उतरा और मेरे भाई के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, वो आपको इतने पैसे कहाँ से देंगे?
7: अच्छा जुबान चलाती है।
8: मुझे मत मारो।
1: प्रमोद

0: एक काम कर, अंदर से तेल लेकर आ और लगा दे आग इसको।
1: ठीक है माँ, रोज रोज का झंझट भी खत्म हो जाएगा।
2: नहीं प्रमोद, मुझे मत जलाओ माँ जी। नहीं प्रमोद, मुझे मत जलाओ माँ जी, बचाओ कोई।
3: अरे ये प्रमोद की घर से कैसी आवाजें आ रही है, चल के देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो किरण को आग लगा रहे हैं। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हेलो सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक बहू को उसकी सास और उसका पति मिलकर आग लगा रहे हैं, आप जल्दी आइए।
4: ठीक है, हम अभी आते हैं। अगर हमें सही समय पर जानकारी ना मिलती तो आज आपने तो इसे मार ही दिया था। इसके लिए तुम्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अरे किरण, ये क्या हो गया बेटा?
2: पापा, पापा, पापा, पापा।
3: अरे भाई साहब, इन्होंने तो किरण को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी।
4: अरे कारण तो बताओ कि क्या हुआ है।
1: सर हमने कुछ नहीं किया, किरण ने खुद आग लगाने की कोशिश की है।
4: क्या किरण, तुमने सच में आग लगाने की कोशिश करी है क्या?
2: सर, मेरे पति ने और मेरे सास ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश करी। वो तो शुक्र है सर इन पड़ोसियों का, जो मेरी आवाज़ सुनकर इन्होंने मुझे बचा लिया। क्योंकि इनको इनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिला। मेरे पति को मेरे पापा गाड़ी नहीं दे पाए और मेरी सास को नगद कैश।
4: हवलदार, इन सबको अरेस्ट कर लो और अब इनको थोड़ा हवालात की हवा खिलाओ। और माताजी, अगर इस जगह आपकी बेटी के साथ ऐसा करे तब आपको पता चले। हवलदार, डालो हथकड़ी और ले चलो इनको।
5: और इस घटना के बाद किरण के पिता किरण को अपने घर वापस ले जाते हैं और किरण अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जीने लगती है। प्रमोद और उसके माता पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो ना जाने कितनी बेटियों को निगल जाती है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आज हमारे देश का कानून व्यवस्था भी इस प्रकार के मामलों में बहुत सख्ताई बरत रहा है। दहेज अधिनियम 1961 सेक्शन 3 और 4 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, और इसके साथ साथ जुर्माना भी और कुछ सालों की सजा सुनाई जा सकती है। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं, क्या थैलेसीमिया, लोकीमिया या दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक उम्मीद की किरण बन सकता है? बीएमटी की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सामान्य जीवन जिया जा सकता है? या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई राय लेना चाहते हैं, तो इस बार एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अलका खडवाल, प्रोफेसर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं गैर फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरबहार। कार्यक्रम का पहला गीत शबनम की आवाज में।

0: सुरबहार कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स। 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे। 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
3: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
4: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और अब समय हो गया है कार्यक्रम संजीवनी का।
5: नमस्कार श्रोताओं, आज के संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम जब भी आपसे मिलते हैं तो अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं MD आयुर्वेद डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा। सामान्य अस्पताल पंचकुला सेक्टर 6 में अपनी सेवाएं दे रही हैं और जिस विषय पर हम डॉक्टर से बातचीत करेंगे वो विषय हमने चुना है रसोई घर के मसाले और उपचार। इनमें ऐसे कौन से गुण हैं जो हमें स्वास्थ्य लाभ देते हैं? तो पहले डॉक्टर मीनाक्षी, प्रोग्राम संजीवनी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
6: नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मुझे ये मौका मिला कि मैं सब लोगों से जुड़कर अपने विचारों को साझा कर पाऊंगी।
5: डॉक्टर मीनाक्षी, जैसे कि मैंने आपके परिचय में बताया कि आज रसोई घर के मसालों के बारे में बात होगी और चिकित्सा के क्षेत्र में इन मसालों को किस तरह से देखा जाता है, इनके औषधीय गुण क्या हैं और किस तरह से इनसे उपचार होता है, इन तमाम बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्यों ना अब हम घर की रसोई में चलते हैं और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि रसोई घर में मसाले के डिब्बे में वो कौन कौन से मसाले हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं?
6: जी, आयुर्वेद पैथी है, इसका मेन सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य।

0: आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात मींस कि सबसे पहले हमें एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। तो बेसिकली जो हमारा मेन मोटो है वो प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ को एडवोकेट करना है। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को रखा है ताकि हम इस तरह के मसालों को नॉर्मल डे टू डे लाइफ में रूटीन में यूज़ करें ताकि हम लोग बीमार ही ना पड़ें। तो हमारा पहला उद्देश्य की पूर्ति इसी से हो जाती है कि हम अपने घर में डे टू डे लाइफ में ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें भोजन बनाने में या उसके अलावा भी, ताकि हम बीमार ना पड़े और हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े।
1: तो डॉक्टर, जैसे हमारी जो नमकदानी जिसे कहते हैं या मसालादानी कहते हैं, उसमें आम तौर से हींग होती है, जीरा होता है
0: जी,
1: उसमें सूखा धनिया होता है
0: जी, जी,
1: उसमें कलौंजी होती है
0: जी,
1: काली मिर्च होती है
0: जी,
1: और भी तमाम तरह के मसाले
0: जी,
1: होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आप एक एक करके इनका औषधीय गुण हमें बताइए, क्योंकि वो जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि चुटकी भर उनका इस्तेमाल होता है
0: जी,
1: उसमें ऐसा क्या जादू है?
0: जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम इसको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम कभी कुछ भी सब्जी या दाल बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है मसालदानी, या सबसे पहले हम लेट्स से बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से। तो जैसे ही हमने गैस ऑन की तो हमने कढ़ाई या कुकर में सबसे पहले हम तेल डालते हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए हमने कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, हमारे पास मार्केट में बहुत तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी तरह की सब्जी बनानी है। ये सब आप लोग बखूबी जानते हो, जब आप ड्राई सब्जी बनाते हो आप अक्सर इस्तेमाल करते हो सरसों का तेल, जब आप लोग कुछ गीली सब्जी या रसेदार सब्जी बनाते हो तो आप लोग देसी घी या तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग यहीं से करूँगी कि अगर हम उसके औषधीय गुणों पर जाएँ, सरसों के तेल को बोलते हैं कड़वा तेल, क्योंकि इसका जो होता है वो कटुरस होता है और गर्म होता है, इसकी तासीर जिसको हम कहते हैं वीर्य, इसकी पोटेंसी जो है बॉडी में जाने के बाद गर्म फील करवाती है। तो सरसों के तेल को मेनली हम यूज करते हैं स्किन डिसऑर्डर्स में, जहां पेशेंट को बहुत इचिंग फील करती है या फिर कानों में किसी किसी को बहुत इचिंग लगती है, या किसी किसी फीमेल्स में ऐसा होता है क्योंकि इसकी गर्म तासीर है तो जहां पर उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी को ओलिगोमेनोरिया है मान लीजिए, जैसे किसी को ड्यूरिंग पीरियड प्रॉपरली फ्लो खुलकर नहीं होता, तो उस केस में हम बोलते हैं कि आप सरसों के जो दाने हैं उसको यूज कीजिए, ये बहुत ही अच्छा एंटीस्पाज्मोटिक। हाँ, सरसों के दाने,
1: ये तो बहुत ही इस्तेमाल कैसे करें?
0: सरसों के दानों को
1: अच्छा,
0: आपको
1: फाइन
0: पाउडर
1: तेल
0: में डालकर, या फिर सिंपल सरसों के दानों को आप फाइन पाउडर करके उसको पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सरसों के तेल को हम कानों में डालते हैं अक्सर, जो कि कान के वैक्स निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर जब भी कान में किस तरह के सिक्रीशंस आती हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही सरसों के तेल के बाद आता है नारियल का तेल। तो नारियल का तेल के लिए मेनली कहा जाता है जहाँ पर भी बॉडी में बहुत ही गर्मी फील है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, नारियल का जो पोटेंसी है वो कोल्ड होती है, तो ये हमारी बॉडी में जाके हमें बहुत ही शीतता प्रदान करता है। जब कभी पेशेंट को ऐसा फील होता है कि हाथ पैर में जलन हो रही है या बॉडी में ऐसी इचिंग है कि सब कुछ जल रहा है, बर्निंग सेंसेशन, उस केस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको नारियल का तेल यूज़ करना है, उसमें हल्का सा कपूर मिलाकर।
1: आपने बताया कि सरसों का तेल जो है तासीर में गर्म है
0: जी,
1: और जो नारियल का तेल है वो ठंडा है।
0: हाँ, अगर कोई पेशेंट बोलते हैं मुझे पूरी बॉडी में जलन है, जैसे कहते हैं आयुर्वेद में तीन तरह की प्रकृति मानते हैं, वात, पित्त और कफ, तो जो पित्त प्रकृति के पेशेंट्स होते हैं उनको अक्सर नारियल का तेल सूट करता है। जो वात और कफ प्रकृति के पेशेंट हैं, मान लो जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्थूलता है, मोटापा है, ड्राइनेस है, वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि आप तिल का तेल इस्तेमाल करो या फिर सरसों का तेल
1: गैस रहती।
0: जी, तिल का तेल,
1: तिल का तेल
0: नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल अगर आपको बॉडी की मसाज करनी है तो हम आपको एडवाइस करेंगे रूटीन में आप तिल का तेल यूज़ कीजिए। अगर आपको स्किन में जलन है तो आप नारियल का तेल यूज़ कीजिए, और अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है तो आप सरसों का तेल यूज़ कीजिए।
1: जी, ये बहुत अच्छा आपने समझाया, लेकिन डॉक्टर मीनाक्षी हमें ये बताइए कि भारतीय रसोई में आम तौर से सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है। हर सब्जी का जो तड़का है वो सरसों के तेल में लगता है, और सरसों का तेल ही ज्यादा अपने मालिश के लिए या बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि सरसों के तेल में प्रॉपर्टी होती है, इसको बोला गया है केश, मींस ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशनर है और बालों का डैंड्रफ और इचिंग को भी रिमूव करता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि खाने में सरसों का तेल, तो मेनली ये जो चलता है ये प्रचलन उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पर मूल रूप से सरसों की खेती की जाती है। यदि हम दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो वहां पर मेनली नारियल का तेल इस्तेमाल, वो इसलिए क्योंकि जिस जगह पे, हाँ, जिस जगह पे जो लोगों को साथ में चीज होती है, जो जहाँ की जिस पे कल्टीवेशन होती है वहां के लोगों को वही सूट करता है। तो इसीलिए हमें अपने जिसको कहते हैं देश, मींस हम जहाँ पे जिस वातावरण में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमको वहाँ के लोकल आसपास उपजाई वाली चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए।
1: लेकिन उत्तर भारत में तो बिना सरसों के तेल के सब्जी को सोचा नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल, एग्जैक्ट।

0: जो स्वाद है उसमें जो कड़कपन है
1: जी,
0: वो सरसों के तेल से आती
1: जी, वो जो सेंधी सेंधी खुशबू है खासकर ड्राई वेजिटेबल्स की, तो वो आप सरसों के तेल में ही मिलेगी। और एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हमको हमेशा जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल या फिर ऑलिव का ऑयल यूज़ करना चाहिए। कभी भी रिफाइंड ऑयल को अपने किचन में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करता है, आपकी बोन्स को कमज़ोर करता है।
0: तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल
1: नहीं, आवश्यक नहीं है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कोई आवश्यक नहीं है, ये बहुत ही महंगा होता है, अक्सर कई लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। बट
0: क्योंकि आपने कहा ना जैसा माहौल,
1: हाँ,
0: है
1: बिल्कुल exactly,
0: जो हमारी लोकलाइज्ड,
1: हाँ, जो लोकलाइज्ड जिसकी खेती होती है वही हमारी बॉडी के लिए साथ में होता है, तो बेटर है हम लोग यहाँ पर सरसों का तेल, तिल का तेल इस्तेमाल करें।
0: तो ये तो तेलों के बारे में बताया
1: जी, अब आगे
0: मसालों की बात शुरू हुई थी। मसाले बिना तेल के जो उनका गुण है, क्या वो तेल में पक्के और भी निखर जाता है?
1: एग्जैक्टली, किसी भी चीज को आप तेल में डालेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी चीज है अगर आप उसको जब भूनते हैं उसका संस्कार किया जाता है, दैट इज संस्कार। मतलब कभी हम उसको हीट के कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं, कभी हम उसको ऑयल के कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं, कभी हम उसको रगड़ते हैं, जैसे धनिया भी डालते हैं उसको हल्का सा हाथ से मसल के डाला जाता है, तो इन सब चीजों से उसका अरोमा बढ़ जाता है और उसकी जो एफिकेसी है वो बढ़ जाती है,
0: मतलब संस्कारी हो जाता है मसाला
1: जी। गुण अंतर्धान कर रहे हैं ना, कोई ना कोई गुण उसमें ऐड कर रहे हैं,
0: जिसमें संस्कार होंगे वो सही बात है कि गुणों से भरा होगा
1: जी।
0: इन मसालों को केवल सरसों के तेल में ही पकाया जाता है या किसी तेल में भी पकाया जाता है?
1: नहीं, आप किसी भी तेल में पका सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो
0: तो
1: आपकी
0: वो
1: चॉइस पे। हाँ जी, अरोमा
0: हाँ।
1: वही रहेगी, ऐसा नहीं है कि अगर हम तिल के तेल में देखें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि उसमें अपनी खुशबू, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी ऐड होती है उस पर्टिकुलर ऑयल की, बट चिकित्सीय उपयोगिता दोनों की है
0: जी। हम काली मिर्च की बात करते हैं, काली मिर्च को चुटकी भर इस्तेमाल किया जाता है, तो काली मिर्च के इस्तेमाल से क्या क्या फायदे होते हैं और किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए?
1: जी देखिए, सबसे पहले आपने कहा काली मिर्च को चुटकी भर प्रयोग किया जाता है, तो पहले हम चुटकी भर ही आते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो भी कोई भी पाउडर होता है उसकी डोज होती है 3 to 5 ग्राम, एक चम्मच, आधे से एक चम्मच। लेकिन स्पेशली ये जो गर्म चीज़ें हैं जैसे आपकी काली मिर्च है, सौंठ है, इनको हम चुटकी की मात्रा में ही लेते हैं, जैसे 2 चुटकी 3 चुटकी, वो एक चुटकी होगी लगभग आपकी 125 मिलीग्राम्स। तो इसीलिए क्योंकि उसकी डोज हमें हमेशा कम रखनी है, इसलिए हम उसको चुटकियों में नाप कर ही डालते हैं। दूसरी बात कि किसको यूज़ करनी है, तो काली मिर्च आपने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, काली मिर्च एक ऐसी आयुर्वेद की दवा है जिसको अगर हम किसी भी दवाइयों के साथ ऐड करके देते हैं, 1 या 2 चुटकी, तो वो उसकी डोज को कम कर देता है। मान लीजिए आप कोई हाइपरटेंशन की, आप कोई डायबिटीज़ की, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं, उस कोई भी खा रहे हैं एलोपैथिक आयुर्वेदिक, अगर आप उसके साथ 2 चुटकी काली मिर्च को लेते हैं तो ये उसकी जो है बायो अवेलेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं बॉडी में अब्जॉर्ब होने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट है वो हमें ज़्यादा मिलता है और एक्चुअल दवाई की डोज कम हो जाती है,
0: काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है।
1: जी, कार्यकारी क्षमता को बढ़ा देता है।
0: तो काली मिर्च को कैसे खाना चाहिए और काली मिर्च का क्या उपयोग हम कर सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति अपने घर
1: जी? काली मिर्च सबसे पहले
0: क्योंकि
1: तो
0: हम सब्जी में तो यूज करते हैं
1: जी,
0: तो हमें ये मालूम है कि इसे करना है या हमारे लिए फायदा करता है
1: जी,
0: क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं इस मामले में
1: जी,
0: तो आप हमें बताइए वो क्या क्या स्थितियां हैं जहाँ काली मिर्च बहुत फायदा करती है।
1: अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो काली मिर्च को बोला गया है उष्णवीर्य, हॉट पोटेंसी होती है इसकी, तो जब भी कोई डिसलिपिडीमिया का पेशेंट है, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या डायबिटिक पेशेंट है या जिसको बहुत ही ज़्यादा बॉडी में ओबेसिटी है, उस केस में हम लोग बोलते हैं काली मिर्च यूज़ करो। किसी को भूख कम लगती है, किसी का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है ना, जैसे एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम है, भूख नहीं लग रही,
0: तो
1: उस केस में हम लोग बोलते हैं आप काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा एंटीस्पाज मॉडिक है।
0: और वो इस्तेमाल कैसे करना है?
1: काली मिर्च को 2 से 4 चुटकी लेना है, अपने गरम पानी में ऐड करना है, आधा कप गरम पानी में 2 से 4 चुटकी ऐड करके आपने उसको सिप सिप करके पीना है, जैसे हम गरम चाय पीते हैं, तो उस तरह से
0: खाने से पहले
1: जी, खाने से पहले। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है, मान लो किसी पर्सन की बॉडी जो है पेशेंट की वो पित्त प्रकृति की होती है, दैट मीन्स उसकी बॉडी में बहुत हीट होती है, तो उस केस में हम लोग ध्यान से बोलते हैं कि आपने काली मिर्च की डोज कम रखनी है और उसको खाली पेट ना लेकर आप खाना खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। और अगर हम इन जनरल बात करें तो जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार होता है तब हम क्या कहते हैं, तुलसी के साथ काली मिर्च ले लो, अदरक के साथ काली मिर्च ले लो। इवन जब किसी को जनरल डेबिलिटी है, जैसे मान लीजिए किसी को दुर्बलता रहती है शरीर में, उस केस में भी हम कहते हैं कि दूध के साथ काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। और तो और इसमें पाइप्रीन पाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा नर्वाइन प्रोटेक्टर है, जैसे ओल्ड एज में जाकर क्या होता है हमें अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम आने शुरू होती है, पार्किंसोनिज्म की प्रॉब्लम आती है, तो काली मिर्च में जो पाइप्रीन की प्रॉपर्टी है ये हमारी नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है।
0: सामान्य व्यक्ति जो घर में है वो काली मिर्च का चुटकी भर इस्तेमाल कर सकता है,
1: बिल्कुल,
0: चाहे वो

0: पानी में करें या दूध में करें?
1: नहीं तो आप एज इट इज सैलेड के ऊपर डालकर खा सकते हैं, दाल सब्जी के ऊपर डालकर खा सकते हैं,
0: बट अल्टीमेटली किसी रूप में हमें खाना है
1: जी, बहुत अच्छी है हमारी नर्व्स के लिए, बहुत अच्छी है ये।
0: लेकिन इसकी जो तासीर है वो
1: गर्म है, तो इसीलिए ध्यान रखना है आपकी पित्त प्रकृति ना हो। गर्मियों के मौसम में थोड़ी कम खानी है, जिन लोगों को बहुत गर्मी फील करती है बॉडी में उनको डोज कम रखनी है, वो दो चुटकी रखेंगे, बाकी लोग 4 से 5 चुटके तक ले सकते हैं।
0: तो डॉक्टर मीनाक्षी, ये तो बात होगी काली मिर्च के बारे में, जीरे के औषधीय गुण बहुत होते हैं सुना है, तो आप हमें बताइए एक्सपर्ट के तौर पे
1: बहुत ही बेहतरीन,
0: कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है सब्जी के अलावा?
1: जी बहुत ही बेहतरीन है जीरा जो हमारा मसाला है, क्योंकि फुल ऑफ विटामिंस और मिनरल्स है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई इसमें पाया जाता है, इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इतना इसमें आयरन प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं, आजकल के जो बच्चे हैं उनमें मेनली एनीमिक की प्रॉब्लम पाई जाती है, तो कहते हैं कि अगर हम 1 ग्राम अपना, 1 चम्मच अगर हम 5 ग्राम्स जीरे का पाउडर ले लेते हैं, तो वो हमारा ऑलमोस्ट 17% जो डाइट्री हमें आयरन की रिकमेंडेड इनटेक है वो कम्प्लीट हो जाती है।
0: तो इसे लेना कैसे?
1: इसको आपको देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप इसको पानी में उबाल कर ले सकते हैं, या फिर आप इसको भून कर इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी चाहते हैं। अगर अदरवाइज सिंपल रूटीन में तो हम सब्जी में डाल ही रहे हैं।
0: तो फायदा भून के
1: जी,
0: या आपने
1: नहीं, दोनों तरीके से फायदा करता है, और इवन ये लैक्टेशन को प्रमोट करता है, जैसे जो फीमेल्स हैं जिन्होंने अभी डिलीवरी हुई है बेबी को फीड करवाते हैं, तो उस केस में ये उनके मिल्क की सप्लाई को भी बढ़ाता है।
0: जी जी,
1: इवन वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में भी गर्ल्स को जीरा इंडिकेट किया, बहुत यूजफुल जीरा।
0: अच्छा डॉक्टर मीनाक्षी, अब बात करें सूखे धनिया के बारे में।
1: जी, जीरे की बात और धनिया ना, ऐसा हो नहीं सकता है, जीरे के बाद धनिया डेफिनेटली आएगा। तो धनिया के बारे में हमें एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जाननी है। धनिया जो है नॉर्मली हम हमेशा यूज करते हैं जब बॉडी में हमारा पित्त बढ़ जाता है, मींस जब हमें गर्मी फील होती है, जैसे हाथ पैर में जलन हो रही है, एपिगैस्ट्रिक बर्निंग हो रही है ना, जैसे जलन हो रही है या हाथ पैर में होती है, या फिर हम कहते हैं कि मुंह में अल्सर्स हो रहे हैं, मुंह हमारा पक रहा है, कभी कभी छोटे छोटे अल्सर्स निकल आते हैं,
0: इसका मतलब शरीर में गर्मी
1: है। हाँ जी, तो उस गर्मी को बहुत अच्छे से शांत करता है। तो जो धनिया है इसको 2 तरह से यूज कर सकते हैं, या तो जो इसका पंचांग होता है, पूरा प्लांट होता है इसका, उसको हम लेके उसको कूट के उसका जूस निकाल कर यूज कर सकते हैं। हरा धनिया, अदरवाइज
0: सूखे धनिया की बात,
1: अगर हमारे पास सूखा धनिया अवेलेबल है तो उसको हम पानी में भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी वैसे ही प्रॉपर्टी देगा, जैसे कि आप उसको रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको आप उसको छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो क्या जीरा और धनिया दोनों हम इकट्ठे भिगो सकते हैं?
1: जी नहीं, धनिया को मेनली आपको भिगोने की जरूरत है, जीरा आप डायरेक्टली उबाल कर ले सकते हैं।
0: उबाल के लेना
1: जी?
0: अच्छा, डायरेक्टली उबाल के?
1: हाँ जी, एक्चुअली धनिया जो है उसकी तासीर गर्म होती है, ये हम सोच पित्त का शमन करता है बॉडी में, लेकिन तासीर गर्म होती है इसकी।
0: और वही आधा चम्मच लेना, छोटा चम्मच?
1: जी आधा चम्मच।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, कलौंजी के बारे में भी बहुत बात होती है, जबकि हमने अपने दादियों को नानियों को देखा है घर में अचार डालते हुए, उसमें सौंफ भी डलती थी, कलौंजी भी, मेथे भी, तब ये मालूम नहीं था कि ये इनका उपयोग क्यों डालते हैं, लेकिन स्वाद बहुत होता है। तो आज जाके ये मालूम हुआ कि भाई इनमें औषधीय गुण ऐसे रमे हुए हैं कि हमारे बुजुर्गों ने उसे हमारे खाने में शामिल कर दिया कि हमें किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। तो आप हमें बताइए कलौंजी के बारे में।
1: कलौंजी के लिए मेनली बोला गया है कि कलौंजी जो है वो उष्ण वीर्य होती है, हॉट पोटेंसी होती है, और बॉडी में जो बढ़ी हुई बाय होती है उसको पैसिफाई करती है। तभी जब भी किसी को पेट में दर्द होती है, स्पाजम उठते हैं, तब हम कहते हैं कलौंजी ले लो। तो इसी स्पाजम को अगर हम बोलें कि जैसे किसी फीमेल को प्रॉब्लम होती है डिसमेनोरिया की, जैसे ड्यूरिंग पीरियड बहुत पेनफुल स्पाजम उठते हैं, उस केस में भी हम लोग कहते हैं कि तुम कलौंजी ले लो, एक तो उससे फ्लो बढ़ जाएगा, प्लस जो पेन है उसको, पेन को रिलीफ करेगा। और इसका काम क्या होता है, दीपन करता है, मीन्स एपिटाइट को बढ़ाता है, जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करवाता है। तो इसीलिए हमें अचारों में हमेशा डाला जाता था ताकि वो भूख को भी बढ़ाए, जो खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट भी करवाए, और साथ साथ में एज अ कॉम्बिनेटिव मीन्स वायु जो हमारी बॉडी में उसको प्रॉपर फ्लो से नीचे की तरफ लेकर जाए।
0: यानी कलौंजी जो है हमारे शरीर में जो वायु है उसे टाटा बाय बाय कर,
1: हाँ बिल्कुल, उसको प्रॉपर पैसेज में लेकर जाती है।
0: तो कलौंजी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? अचार में तो होती है
1: जी। कलौंजी को भी पाउडर फॉर्म में यूज करना चाहिए, जैसे मेथी दाना, कलौंजी, मतलब अजवैन,
0: कलौंजी को पीस लिया
1: जाए। हाँ जी, इसको पीस के, लेकिन इसकी डोज भी कम रहती है, पूरे 5 ग्राम में नहीं जाता, आधा चम्मच सफिशिएंट रहता है इसका
0: जी। तो इन्हें अगर हम शुरुआत करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए पूछ रहा हूँ, तो कितने दिन तक हमें लेना चाहिए इन चीजों को?
1: देखिए, अगर जो भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं, हॉट पोटेंसी वाली, तो आपको उस पर सबसे पहले कि सबके लिए एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं हो सकती, डिपेंड करता है कि कौन से मौसम में खा रहे हो। अगर आप सर्दी के मौसम में खाते हो तो आप 1 महीना लगातार ले लीजिए,

0: यही चीज़ अगर आपने गर्मी में स्टार्ट कर दी या फिर ये जो शरद ऋतु चल रही है इस समय भी पित्त का प्रकोप होता है, इस समय आपको बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं करनी, तो ये आपको अपनी ऋतु का ध्यान रखना पड़ेगा, सीजन कौन सा चल रहा है, आपको अपनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पित्त प्रकृति हो तो आप 5 to 6 days खा के जब आपको उसका रिजल्ट मिल गया आप बंद कर दो, अदरवाइज आपको फिर से बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी।
1: जी, तो सबसे पहले तो अपने शरीर को जानिए, खुद को जानिए कि आप क्या हैं, कैसे बने हैं, फिर इन चीज़ों का जो इस्तेमाल करें, इस्तेमाल जब होगा तो फिर उनका अलग ही परिणाम होगा।
0: जी,
1: तो कलौंजी के बाद हमने मेथे की बात की थी आपसे।
0: हाँ, मेथी दाना जो है वो भी इस तरह से एंटीस्पाज्मोडिक, जिसको कहते हैं शूलहर, वो इस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेथी दाने के लिए बोला गया है जैसे कि पेट में किसी तरह का स्पाज़म होता है या डिसमिनोरिया की प्रॉब्लम है, फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ते हैं, या फिर किसी को एपिटाइट को बढ़ाना है, या फिर वही वात का अनुलोमन करना है, मीन्स कि जो आपकी बॉडी में वायु है वो प्रॉपर पैसेज के थ्रू चले। इसके अलावा इसका मॉडर्न रिसर्च में आजकल हम यूज़ करते हैं डिसलिपिडीमिया में, जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाते हैं
1: और
0: जो हमारा हाई डेंसिटी अपना हाई डेंसिटी का जो फैट्स है वो कम हो जाते हैं, लो डेंसिटी के बढ़ जाते हैं, उस केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं डिसलिपिडीमिया में। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो एंटी डायबिटिक बहुत अच्छा इसका यूज़ हो रहा है। रात को हम मेथी दाना को भिगोने के बाद उसको सुबह के टाइम उसको उबालने की जरूरत नहीं, एज इट इज आप उसको छान कर उस पानी को यूज कर सकते हैं।
1: अभी आपने बताया कि मेथी दाने को वेट मैनेजमेंट के रूप में और डायबिटीज में भी इस्तेमाल किया जाता है।
0: अगर आपको इसको डिसलिपिडीमिया के लिए यूज़ करना है तो आपको सबसे सिंपल तरीका है कि रात को आप इसके दानों को भिगो दीजिए, सुबह उठ के आपने उस पानी को छानकर यूज़ करना और दाने आप एज इट इज़ खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको एज डायबिटीज़ में यूज़ करना है तो वहाँ पर इसके साथ हमारे पास 3-4 ड्रग्स और हैं जो बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं दालचीनी, तेजपत्ता, मेथी दाना। तो इन सबको कंबाइन करके हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं वहाँ पर, जैसे हम जब भी दही खाते हैं या फिर आप चाय बनाते हैं तो उसमें आप चीनी तो यूज़ नहीं करेंगे डायबिटिक पेशेंट में, तो आपको
1: तो
0: हम
1: लोग
0: हाँ तो आप इसका आधा चम्मच ऐड करेंगे तो आपको नेचुरल उसमें मिठास भी मिल जाएगी और उसके एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज से आपकी हीलिंग भी हो जाएगी।
1: यानी मेथी दाना, तेज पत्ता और दालचीनी का पाउडर बनाया
0: जी,
1: तो इनकी मात्रा कितनी रखनी है?
0: इक्वल क्वांटिटी रखी है इसकी,
1: और 50 ग्राम एक है तो 50 ग्राम वो है, 50 ग्राम वो है। अच्छा, ये आपने बताया, अब बीच में जिक्र आया दालचीनी का
0: जी।
1: और दालचीनी को भी लोग सलाम करते हैं कि बहुत ही शानदार, जानदार और गुणकारी है, दालचीनी के बारे में भी बताइए।
0: जी, दालचीनी का जैसे हमने बात की कि इसको एंटी डायबिटिक हम यूज़ करते ही हैं, वो सब जानते हैं। इसके अलावा जैसे कि फेस पर यंग गर्ल्स को ना कभी कभी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, उनके फेस पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं, तो उस केस में भी हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि जो दालचीनी है उसका पतला पतला पेस्ट बनाकर अपने स्किन पर लगाना है। इसके अलावा डिसलिपिडीमिया की प्रॉब्लम है, किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या किसी को हेलिटोसिस है, जैसे मुँह से स्मेल आना, इवन इसका एंटी ट्यूबरकुलर इफेक्ट भी बहुत अच्छा पाया जाता है दालचीनी का,
1: टीबी के मरीजों के लिए
0: जी। हाँ, एज ए एडजुवेंट थेरेपी में हम दालचीनी को एडवाइस करते हैं। इसके अलावा जैसे किसी को बैड स्मेल की प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ पर भी आप इन दोनों को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसको इसका थोड़ा सा डिकॉक्शन मतलब काढ़ा बनाकर यूज करना चाहिए, उससे गार्गल्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: मतलब 2-3 पत्ते उबाल लिए,
0: हाँ पत्ते ले लीजिए, साथ में थोड़ा सा मेथी दाना ऐड करके और थोड़ा सा दालचीनी, उसको आपने एक माउथ वॉश टाइप बनाकर रख लीजिए, उसको हर मील के बाद आपने उससे अपने माउथ को रिंस करना है।
1: यानी बाजार से महंगे माउथ वॉश खरीदने की आवश्यकता
0: जी,
1: नहीं है
0: जी।
1: इसे घर में बनाइए।
0: बिल्कुल।
1: और कितनी देर इस काढ़े को उबालना है?
0: देखिए, काढ़ा उबालने का जनरली नियम होता है कि एटलीस्ट 1/4 रिड्यूस हो जाए या हाफ रिड्यूस
1: अच्छा,
0: हो जाए
1: अच्छा,
0: अगर हमने इंटरनल यूज करना
1: एक
0: है,
1: बट गिलास जब आधा रह जाए
0: जी, बट अगर हमने यहाँ पर सिंपल रिंस के लिए करना है तो हम थोड़ा सा उबाल कर भी चल सकता है
1: जी। जी, और उस काढ़े को कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: अगर आप एक काढ़ा बनाते हैं, अगर अच्छे से आपने रिड्यूस किया है उसको, तो आप फ्रिज में रखेंगे तो वो 4 से 5 दिन आराम से प्रिजर्व्ड रहेगा।
1: तो डॉक्टर मीनाक्षी, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं और हम बार बार घड़ी की तरफ भी देख रहे हैं, हमें डर भी लग रहा है कि समय ना हो जाए, और इतने सारे मसाले हैं जिनके बारे में आपसे जानकारी लेनी है। मुलेठी के बारे में भी बताइए
0: जी। मुलेठी बहुत ही उपयोगी द्रव्य है और इसकी बड़ी कोल्ड पोटेंसी है, तो मुलेठी एक ऐसा द्रव्य है जो कि आपकी आंखों के लिए भी हेल्पफुल है, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, गले के लिए, पेट में किस तरह के अल्सर्स बन गए हैं वहाँ हेल्प करेगा, किसी को एंटीस्पाज्मोडिक एक्शन चाहिए वहाँ मिलेगा, अगर किसी को खांसी हो रही है तो मुलेठी को चूसने को बोलेंगे, एसिडिटी है तो इंस्टेंट रिलीफ देता है, तो इतने ज़्यादा गुण हैं मुलेठी में। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना चाहिए मुलेठी के यूज़ में आपको, कि एक्सेस अगर हम मुलेठी को यूज़ करते हैं तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनको ध्यान रखना है, कभी कभी थोड़ा ब्लड प्रेशर को रेज करता है, इसीलिए बीपी के पेशेंट्स को ध्यान से

0: यूज़ करना है मुलेठी।
1: तो किस तरह से उनको यूज़ करना है?
0: मुलेठी को आप सिंपल पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको आप चूस सकते हैं। मुलेठी का जो मिलता है टुकड़ा उसको आप चूस भी सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है वो एज इट इज़ यूज़ तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन उसकी डोज को कम रखेंगे और अपने बीपी को मॉनिटर करेंगे साथ साथ में।
1: अगर वो बढ़ता है खाने
0: जी हाँ, तो फिर आप उसको विड्रॉ कर लेंगे अगर बढ़ता है तो।
1: ये तो खाने में उपयोग है, क्या इसे बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं अपने चेहरे के लिए, अपने
0: हाँ,
1: बालों
0: लोकल,
1: के लिए? आपने
0: बिल्कुल लोकल एप्लीकेशन में हम पैक बनवाते हैं जैसे मुलेठी का और मेथी दाने का, जो कि हम स्किन पर भी लगाते हैं पिगमेंटेशन के लिए जहाँ डार्क स्पॉट्स होते हैं, और बालों में भी इसको पैक लगाते हैं जो कि एंटी डेंड्रफ रहते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब सौंफ के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, लौंग के बारे में, हल्दी के बारे में, हींग के बारे में, क्या क्या कुदरत ने दिया है
0: जी।
1: तू है कमाल, तेरी कुदरत कमाल
0: जी।
1: तो हम जितनी भी बात करें उतनी कम होगी। आप जल्दी से सौंफ के बारे में, लौंग के बारे में, हल्दी के बारे में, हींग के बारे में बताइए।
0: सबसे पहले हींग के बारे में आपने ये ध्यान रखना है क्योंकि इसकी हॉट पोटेंसी है, तो इसको हम मेनली दो तरह से यूज़ करते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए और एक एब्डोमिनल, जैसे किसी को पेट में अफारा रहता है, बच्चों को अक्सर बोला जाता है जब अफारा होता है या कॉन्स्टिपेशन होती है तो कहते हैं कि नाभि के आसपास उसका लेप कर दीजिए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को जब नाभि के आसपास लगाते
0: थे। हाँ, उसका यही एक्शन है कि वो हमारी बॉडी की जो वायु है उसको प्रॉपर पैसेज के थ्रू लेकर जाता है और जो हमें स्पैज़म होती है, स्पैज़मोटिक पेन होती है, उसमें हमें रिलीफ मिलता है। इसमें एक और ख़ास बात है कि अगर आप हींग को भून के यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा वो एज अ कार्मिनेटिव, जिसमें कहते हैं कि वायु का अनुलोमन करता है, पेट के दर्द में आराम लाता है अगर आपको
1: तो
0: भून
1: जैसे
0: के
1: उसे भून लेना है
0: जी,
1: तो
0: हमेशा
1: पानी के साथ लेना है?
0: नहीं, आप घी में भून कर उसको एज इट इज़ ले लीजिए, चटा दीजिए। और अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, किसी को बलगम की दिक्कत है, तो उस केस में आपको कच्ची हींग का इस्तेमाल करना है बिना भुने हुए, तो वो ज़्यादा फायदा करेगी।
1: मतलब वो कच्ची पानी के साथ?
0: हाँ जी
1: जी जी जी। और उसकी मात्रा क्या रहेगी?
0: मात्रा बहुत कम रहेगी, अगेन हींग की 2 से 3 चुटकी
1: जी। और हल्दी के बारे में बताइए।
0: हल्दी को तो बोलते हैं पूरी किचन की फार्मेसी है
1: जी,
0: हर
1: जी।
0: चीज का हल हल्दी के पास है।
1: श्रृंगार
0: जी, इसको बोला गया श्रृंगार से वर वर्णिनी, मतलब फीमेल के सौंदर्य को बढ़ाती है ना, तो कहीं पे भी हाइपर पिगमेंटेशन है वहाँ यूज़ करते हैं, बुखार आ रहा है वहाँ यूज़ करते हैं इसको, कहीं पे भी दर्द होती है, हमें फ्रैक्चर्स होते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टी लेनी है, या कहीं पर भी हमें जैसे कट लग गया इमिडिएटली तो हमारे पास बर्न हो गया, कुछ नहीं है तो हम सिंपल एलोवेरा और हल्दी बताते हैं कि वो लगा लो। एक्ने मार्क्स हैं तो हम लोग कहते हैं हल्दी और आप काली मिर्च लगा लीजिए।
1: तो इसका दूध में इस्तेमाल सही
0: बहुत
1: रहता है?
0: बहुत बढ़िया, जैसे आजकल तो फॉरेन में कॉन्सेप्ट चल रहा है गोल्डन मिल्क, तो हमारे यहाँ तो कितना पुराना चल रहा है हल्दी वाला दूध, एंटी एलर्जिक बहुत अच्छी होती है, तो इसको तो रूटीन में यूज करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हल्दी जो है वो हॉट पोटेंसी की है, लेकिन उसका
1: मात्रा,
0: जो रस है रस उसका तिक्त रस है, तो उस केस में ये बढ़ाएगी नहीं पित्त को, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि डोज को कम रखना है, तो 1/4 चम्मच इस्तेमाल कीजिए, सफिशेंट है।
1: दूध में हल्दी का जो पूरा आपने फायदा लेना है तो उसमें चुटकी भर काली मिर्च भी डाल।
0: एग्जैक्टली वही बात है, काली मिर्च आप ऐड करेंगे तो वो उस दवाई की डोज को कम करेगी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी को
1: बढ़ा देगी। उसके गुण को बढ़ा
0: गुण को बढ़ा देगी, औषधीय गुण।
1: अब बारी है लौंग की
0: जी। लौंग हमारा ऐसा द्रव्य है जो कि ठंडी पोटेंसी का है, इसकी शीत वीर होता है तो बॉडी में गर्मी क्रिएट नहीं करता, तो जैसे किसी को फीवर की प्रॉब्लम आती है या बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं जैसे इनडाइजेशन हो गई, उस केस में हम लोग कहते हैं कि लौंग वाले पानी को इस्तेमाल कीजिए। लौंग को 2-4 लौंग को पानी में डालकर उस पानी को आपने यूज़ करना है। इसके अलावा किसी को अगर एक्ने मार्क्स हैं वहाँ पर भी हम लोग कहते हैं कि आपको लौंग को वहाँ पर रगड़ना है।
1: तो लौंग को रगड़ेंगे
0: जी
1: तो वो घायल नहीं हो जाएगा?
0: नहीं, आप थोड़ा सा लौंग को ना जैसे चकले पर हल्का सा जैसे करेंगे तो उसका वो निकल जाएगा, स्क्रैपिंग हो जाएगी। हाँ, उस लेप को आपने अपने एक्ने मार्क्स पर लगाना है
1: जी, उससे फर्क पड़ जाएगा
0: जी। और डिसलिपिडीमिया जहाँ पर हमने बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन लौंग में भी आपने ध्यान रखना है कि थोड़ा सा बीपी के साथ इसका ध्यान रखना है।
1: एक और
0: किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि मुंह बहुत सूखता है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं लौंग वाला पानी इस्तेमाल करो, क्योंकि वो हमारे जो ग्लैंड्स हैं सलाइवा जो प्रोड्यूस करते हैं उसको बढ़ाता है, तो इस तरह से जो मुंह सूखता है उस केस में भी हम लौंग वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो लौंग कितने इस्तेमाल करने?
0: देखिए, लौंग की डोज भी कम रखनी है आपको,
1: एक या दो?
0: हाँ, 2 से 3 तक सफिशिएंट है।
1: और अब सौंफ के बारे में बताइए, क्योंकि सौंफ हमारी भारतीय परंपरा में इसका एक विशेष महत्व है, हर खाने के बाद सौंफ ऑफर की जाती है
0: जी। तो सौंफ जो होती है वो बहुत ही मधुर रस वाली होती है और इसकी भी कोल्ड पोटेंसी होती है, तो सौंफ को मेनली ठंडी है उसके बावजूद भी हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है और हमारी एपेटाइट्स को हम कहते हैं भूख को भी बढ़ाती है। इसके अलावा जैसे जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है उस केस में जो उनके फीड को बढ़ाती है, फीमेल्स में वाइट डिस्चार्ज को भी इम्प्रूव करती है, और तो और ये बॉडी में बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं ना ताकत देती है, ताकत का द्रव्य है सौंफ,
1: यानी लीवर के एसी के रूप में काम करती
0: है। जी जी।
1: तो डॉक्टर मीनाक्षी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, आज रसोई घर में जाकर मजा आ गया।

0: हर एक मसाले के बारे में आपने बताया और विस्तार से बताया, उनके उपयोग के बारे में समझाया। श्रोताओं, एक 100 बातों की एक बात है कि इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करते वक्त इनकी डोज का हमें ध्यान रखना है और हमारी प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, इन तमाम बातों के बारे में भी ख्याल रखना है।
1: कौन सी जगह हम रहते हैं, कौन सा सीज़न चल रहा है, कैसी हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब का ध्यान रखने के बाद हम उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। थोड़े समय तक कंज्यूम करेंगे, फिर थोड़े टाइम के लिए हम उसको रोक देंगे, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे।
0: जी, जाने से पहले कोई नुस्खा हो?
1: मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो भी एक बात करेंगे वो जनरल रहती है, तो कभी भी आप सब लोग उसको यूज करेंगे तो हो सकता है सब पे इफेक्ट ना दे।
0: एक सामान्य ज्ञान इस प्रोग्राम में, एक सामान्य ज्ञान के तौर पे हम लोगों तक पहुँचाते हैं जानकारी।
1: हाँ, तो आपको एंटी फीवर रेमेडी के रूप में आप जब भी बुखार आना स्टार्ट होता है, तो अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि फीवर के टाइमिंग्स होते हैं, सबको पता है कि मुझे एक दिन छोड़कर फीवर आ गया, दो दिन छोड़कर, उस केस में आप हींग और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर फीवर आ जाए तो इमिडिएटली आप अगर काली मिर्च और तुलसी का यूज करें तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिलता है।
0: जी, ये उबालने हैं पानी में?
1: हाँ जी, इसने तुलसी को तो आप पीस लीजिए। हाँ। और काली मिर्च को क्रश करके उसमें डाल दीजिए,
0: बस वो पानी के साथ लीजिए।
1: हाँ जी।
0: तो दिन में कितनी बार लेना है?
1: इसको दिन में 2 से 3 बार।
0: जी, आप इस प्रोग्राम में पधारी, रसोई घर के मसाले और किस तरह से उनसे उपचार होता है इसके बारे में आपने बताया। यहाँ पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
1: मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के प्रोग्राम संजीवनी में आई और यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इस माध्यम से आप सबके साथ अपने विचारों को साझा करके कोशिश रहेगी, ये उम्मीद रहेगी कि आप सब लोग कुछ ना कुछ सीखें और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं।
0: जी, इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। अगले सप्ताह एक और मेहमान से आपकी और हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आज के संजीवनी प्रोग्राम में हमारे साथ रहीं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, MD आयुर्वेद, सामान्य अस्पताल, सेक्टर 6, पंचकुला।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संजीवनी। आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
3: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र, और अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों के आयोजन से होगी। श्री नवीन ने बताया कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जो गाँवों और शहरी क्षेत्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: सभी लोगों से ये उम्मीद की

0: रही है कि 25 मिनट का कम से कम श्रमदान वो दे। इसमें करीब 25 अलग अलग कार्यक्रम लिए गए हैं। हर व्यक्ति जो आम जनमानस से इसमें हम अपील करेंगे कि उनके भी योगदान से इस देश के विकास में योगदान मिले, परिवर्तन आए, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लिए गए हैं। इसमें समाज के जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लिया गया है। सेवा सेतु अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे।
1: भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। सुरंग की ढलान और सीमित पहुंच के कारण टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूरिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। पोषण माह 2026 के दौरान आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा और गर्म पका हुआ भोजन, समुदाय की भागीदारी और जवाबदेही, पोषण और बच्चों के शुरुआती विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: अक्षय कुमार का जन्मदिन है तो चलिए विविध भारती परिवार की ओर से देते हैं उन्हें ढेर सारी बधाइयां और आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। रानी मलिक के बोल हैं।

खिलाड़ी 786 फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रीराम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में समीर अंजान के बोल थे। हिमेश रेशमिया का संगीत था।

0: हॉलीडे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: बैडमैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। कौसन मुनीर के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार

मोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी विजू शाह ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: बोल थे प्रीतम का संगीत था। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं,
2: क्या थैलेसीमिया, लुकीमिया या दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक उम्मीद की किरण बन सकता है? बीएमटी की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सामान्य जीवन जिया जा सकता है? या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई राय लेना चाहते हैं, तो इस बार एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अलका खटवाल, प्रोफेसर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, एक बजा है, आइए अब हम आपको अपने अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से बस थोड़ी ही देर में 1:05 पर प्रादेशिक हिंदी समाचार होंगे, जो आप शाम 6:10 पर भी सुनेंगे। दोपहर 1:10 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार हम आपके लिए जालंधर केंद्र से रिले करेंगे, जो आप शाम 6:20 पर भी सुनेंगे। हमारे यहाँ से फिल्म संगीत सुनवाएंगे आपको दोपहर 1:15 पर। फिर विविध भारती के मुंबई केंद्र से फिल्मी गीतों का सुरीला सफ़र कार्यक्रम रिले किया जाएगा दोपहर 1:30 पर। वहीं से श्रोताओं, दोपहर 2 आप सुना करते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी। आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार हम रिले करेंगे आपके लिए पहले 2:15 पर, शाम 5, शाम 6, रात 8:45 पर और फिर श्रोताओं रात 11 भी।

श्रोताओ, दोपहर 2:30 पर अपने मुंबई केंद्र से हम आपके लिए रिले करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। वहीं से दोपहर 3 आप सुना करते हैं कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 मुंबई केंद्र से ही पिटारा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान सिलसिले के तहत आज आप मुलाकात कर पाएंगे कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के साथ। हमारे केंद्र से शाम 5:20 पर हम प्रसारित करेंगे आपके लिए एक प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग भी आप सुन पाएंगे शाम 5:30 पर।

श्रोताओं, शाम 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ पंजाबी गीत। मुंबई केंद्र से सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे शाम 7:00। शाम 7:45 पर प्रादेशिक

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे जो आप रात 10:30 पर भी सुन सकते हैं। आज शाम 7:47 पर सुनिएगा कार्यक्रम रेडियो डायरी। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम होगा। आज इसमें प्रहसन सुनवाएंगे आपको मोहब्बत का इम्तिहान। हमारे स्टूडियो से रात 8:15 पर आपके लिए प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी। फिर आज के फनकार कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर, जो आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। आज के फनकार हैं अक्षय कुमार। और रात 10 बजे होगा उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। आज ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मंदाकिनी जोशी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है।
1: श्रोताओं, क्या थैलेसीमिया, लुकीमिया या दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक उम्मीद की किरण बन सकता है? बीएमटी की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सामान्य जीवन जिया जा सकता है? या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई राय लेना चाहते हैं, तो इस बार एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अलका खटवाल, प्रोफेसर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमाटोलॉजी एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।
0: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार, जिसके फौरन बाद 1:10 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से हम रिले करेंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है।
3: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह कृतसंकल्प है। वे होडल में पत्रकारों से बातचीत में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों की लगभग 12 मांगों को स्वीकार कर लिया है, जबकि शेष मांगों पर भी सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
4: हमारे कर्मचारी भाई मेरे परिवार के सदस्य हैं और उनका कोई भी विषय होता है उसको प्राथमिकता के आधार पर हम पूरा करते हैं। उनका जो मांग पत्र था उसमें अंदर से 12 मांगों को पूरा किया है। हमने अपील भी किया, बहुत सारे हमारे सफाई कर्मचारी भाई वापिस भी आए हैं। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनके ऊपर कोई राजनीति नहीं। मैं निवेदन करूंगा समी से कि आप काम पर आए। अलग अलग स्तर पर अधिकारियों के बीच मंत्री स्तर के ऊपर भी लगातार बैठ करके बातचीत हो रही है और सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है।
2: मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों से ड्यूटी पर लौटने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान बातचीत और आपसी सहमति के माध्यम से किया जाए। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए

हादसे के बाद पंचकुला प्रशासन द्वारा पंचकुला में पुरानी और जर्जर इमारतों की पहचान के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल ने बताया कि पंचकुला के सभी वार्डों में ऐसी सरकारी इमारतों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं जो काफी पुरानी या जर्जर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान अगर कोई इमारत खस्ता हाल पाई जाती है तो भवन की स्थिति की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पुरानी इमारत को गिराकर उसके स्थान पर नया भवन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पंचकुला में चल रहे पीजी की भी जांच की जाएगी। पीजी संचालकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के साथ साथ यह जांच भी की जाएगी कि इन इमारतों में सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है या नहीं। श्री बंसल ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी भी संभावित हादसे को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चंडीगढ़ के गांव कैम्बाला में कल जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाया गया। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव के निर्देशों पर की गई। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 118 कनाल भूमि से अतिक्रमण हटाए गए, जिनमें मुख्य रूप से फार्म हाउसों से सटे खुले क्षेत्रों में बनाई गई चार दीवारियों और अन्य अतिक्रमण शामिल रहे। हरियाणा सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर पाकिस्तान में 22 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित होने वाले धार्मिक समारोहों में भाग लेने के लिए सिख संगत से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक सिख श्रद्धालु अपने आवेदन 12 सितंबर तक या उससे पहले कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास जमा करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए तुरंत प्रभाव से 16 आईएएस और 10 एचसीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपने संघर्ष फिल्म का ये गीत सुना सोनू निगम की आवाज़ में। अक्षय कुमार पर फिल्माया गया अगला गीत आपको सुनवाते हैं इस संदेश के बाद।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
0: अगला गीत जो आप सुनेंगे महेंद्र देहलवी ने इससे लिखा है, आवाजें आशा भोसले और कुमार सानू की। श्रोताओं, फिल्म का नाम है खिलाड़ी।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: इस समय आप सुन रही हैं अक्षय कुमार पर फिल्माए गए गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत है समीर का लिखा हुआ दीदार फिल्म के लिए। इसे गाया है श्रोताओं उदित नारायण ने।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से सुनेंगे।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर नो लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स सीलिंग्स एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स सब एक ही छत के नीचे
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़ कॉल 9876277700।
4: श्रोताओ, क्या थैलेसीमिया, लुकीमिया या दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक उम्मीद की किरण बन सकता है? BMT की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सामान्य जीवन जिया जा सकता है? या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई राय लेना चाहते हैं, तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अलका खटवाल, प्रोफेसर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिक

0: कल हेमाटोलॉजी एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर।
2: एक जमाना ऐसा था जब कोई आपको बताने वाला मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक नहीं होता था। वो दिन याद कीजिए और बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए और गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम बूझिए। कौन सी है फिल्म ये?

बहुत सारे श्रोता हमारे बहुत सारे गाने सुझा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है एक अंधेरा लाख सितारे फिल्म आखिर क्यों, और एक श्रोता लिख रहे हैं एक हंसी शाम को दिल में रखो गया फिल्म दुल्हन एक रात की, और एक श्रोता ने लिखा है कि एक सुनहरी शाम थी सायरा बानो जॉय मुखर्जी की फिल्म आओ प्यार करें, और हमने फिल्म का नाम आपसे पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है ये शाम की तन्हाई है ऐसे में तेरा गम, और एक आगे इन्होंने लिखा पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बहुत बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है, बारिश का आनंद लेते रहिए, गाने सुनते रहिए। और बहुत सारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम लिखा है, और हमारे एक सुधीर श्रोता हैं जिन्होंने जानकारी दी है कि फिल्म बाहर है फिर भी आएंगी का निर्माण गुरुदत्त ने

शुरू किया था, पर उनके पात्र को धर्मेंद्र से रिप्लेस करवाकर आत्माराम ने पूरा किया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि 10 साल पहले की बात है, और एक इन्होंने यात्रा साझा की है, बहुत लंबी सी टिप्पणी है, और बहुत सारे श्रोताओं ने दुनिया पर गाने लिखे हैं, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, रंग बिरंगी ये दुनिया रंग बिरंगी बाबा, और तुम पुकार लो तुम्हारा इंतज़ार, 100 बार जन्म लेंगे, ये गाना तो हम आपको सुनवा चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया एक मेला है, उसमें खुशी गम आशा निराशा की बहुत सारी राहें नज़र आती हैं, इस मोहजाल से भ्रमित मत होना, खुद पर भरोसा रखते हुए अपने सपने सच करते हुए जीवन पथ पर चलते जाना हे राही, आत्मविश्वास से चलते जाना। और अब दुनिया की बात है तो चलिए दुनिया वाला ही गाना एक और सुन लेते हैं। आपके जहन में इस समय सलामत रहने वाली कौन सी बात और कौन सा गाना आ रहा है बताइएगा, तो हम ये दुनिया के बाद, दुनिया वाले गाने के बाद वो गाना सुनवाएंगे, सलामत। फिलहाल ये दुनिया, दुनिया वालों से दूर, फिल्म का नाम आपको पूछना है।

जबक फिल्म का गाना था। हमारे श्रोताओं ने जवाब इसका सही दिया, कम श्रोताओं को जवाब शायद पता था इसके बारे में, कम जवाब आए हैं। अब दुनिया और दुनिया से जुड़ा हुआ एक गाना और आपको सुनवा रहे हैं। हमने आपसे पूछा था सलामत शब्द जो इबारत में है उससे जुड़ा हुआ गाना आप याद कीजिए, तब तक हम ये गाना सुनवा रहे हैं फिल्म बहू बेगम। इसकी भी इस गाने का भी जिक्र हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया है और लिखा है इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द आते हैं, कुछ श्रोताओं ने लिखा है, ज़रा आप भी बताइए। फिल्म बहू बेगम, और बताइए किस हीरोइन पर यह गाना फिल्माया गया है, और साथ में बूझे गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म बहू बेगम

बहु बेगम फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे रोशन। और पूछा था हमने हीरोइन का नाम, सभी ने बताया सही बिल्कुल, मीना कुमारी और हीरो प्रदीप कुमार। और अब सलामत रहने के लिए तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे गाने सुझाए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ज़रा पूछ लें कि कई श्रोताओं ने खामोशी फिल्म का गाना चुना है, वो शाम कुछ अजीब थी, और शाम के बहुत सारे गाने सुझाए हैं, तो आप सभी तय कीजिए कि कौन सा गाना शाम वाला सुनवाएं। अभी फ़िलहाल हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुँचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ था और मैं दुखी इस सोच में कन्फ्यूजन में था कि आगे क्या। मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती के गीत बज रहे थे, उस समय गीत बजा आज फिर जीने की तमन्ना है गाइड फिल्म का। मैं उत्साह से भर गया और निर्णय लिया कि जॉब ही करना है। क्या बात है भाई, रेडियो विविध भारती आपका किस तरह से साथी होता है, बड़ा अच्छा लगा जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि रोशन तुम्ही से दुनिया दूसरा गाना, अब तो सलामत, फिर फिल्म प्यार ही प्यार के दो शीर्षक गीत में से एक। और आगे एक श्रोता ने लिखा है कि सलामत से मुझे सिर्फ एक ही गाना बहुत पसंद है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे दोस्त हैं, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं, इसलिए मैं हमेशा अपने दोस्तों को ये गाना सुनाती हूँ और गाती भी हूँ, अपने सभी दोस्तों को सुनवाना चाहूँगी, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। लेकिन अभी आपको ये गाना हम नहीं सुनवा रहे हैं, बल्कि ये गाना सुनवा रहे हैं, ज़रा फिल्म का नाम बूझिए और जल्द बूझिएगा फिल्म का नाम। गीतकार का नाम हम बता देते हैं इंदिवर, संगीतकार का नाम ज़रा आप बताइए, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम आपको बता

भाई, इस गाने का जिक्र तो बहुत सारे श्रोताओं ने किया था और हमें लगता है कि आपकी और यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट की बात गाने एक हो गए। फिल्म थी पारसमणि और गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। आप सभी ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था। एक श्रोता ने लिखा है कि दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, जिंदगी के रंग कई रे, मैं राही अनजान राहों का और मेरा नाम अनजाना, रुके रुके से कदम, गाने के बोल बहुत सारे लिखे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है ये पर्वतों के दायरे, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं गानों के बोल जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब नए मकान में शिफ्ट हुई तो उस समय कॉलोनी काफ़ी वीरान थी, लौटते समय रास्ता ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। हमने आपसे पूछा था कि कभी ऐसा मौका आया जब आप राह भूल गए हों, क्योंकि एक ज़माना था जब हम सबका बचपन था तब सोशल मीडिया या गूगल राह दिखाने वाला नहीं था। अब बात सपने वाली रह गई है, तो सपने वाला कौन सा गाना, ये जो हम सुनवाने जा रहे हैं या कोई और है? अगर कोई और गाना आपके जहन में तो बताइए। फिलहाल बुझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। आपके जहन में सपने वाले और कौन से गाने आए हैं?

नई रोशनी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया और अतिरिक्त जानकारी भी दी है माला सिन्हा, धर्मेंद्र, अशोक कुमार, राजकुमार, तनुजा और अनवर हुसैन होते हैं फिल्म में कलाकार। और बहुत सारे श्रोता अगले गाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन क्या आपने ये गाना सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं? आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम। एक सवाल यहाँ पर और बनता है, गायक का नाम भी जरा बूझिए।

कुछ श्रोताओं ने गायक का नाम बूझ लिया है, आपको पता है तो जरूर बताइए, और साथ में हीरो हीरोइन का नाम भी।

शबाना आज़मी होती हैं फिल्में, और नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया था ये गाना। साथ में हीरोइन सुप्रिया पाठक भी हैं, जुगल हंसराज बाल कलाकार के रूप में आते हैं। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जानकारी दी, और जो हमने ख़ास सवाल पूछा था अनूप घोषाल की आवाज़ में ये गाना था, सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित बूझा। फिल्म थी मासूम, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की जटिलता को बताया गया था इस फिल्म में, और अब बिल्कुल वक्त नहीं है कि कोई गाना सुनवाएं, सिर्फ इतना बता देते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमेशा की तरह ये लाजवाब प्रस्तुति थी, तो हम ये भी आपसे कहते चलें कि हमेशा की तरह आपकी टिप्पणियाँ लाजवाब थी। अब आज का सुरीला सफ़र कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, आज हम जिस शब्द को लेकर जीवन की कुछ बातें करेंगे वो है मुसाफिर। जी हाँ, यानी चलने वाला, आगे बढ़ने वाला। लेकिन अगर गौर करें तो हम सब मुसाफिर ही हैं, है ना? जन्म से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक हमारा सफर चलता रहता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल। कभी कोई हमारे साथ कदम मिलाकर चलता है और कभी भीड़ में भी हम अकेले रह जाते हैं। लेकिन हर रास्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जिंदगी की खूबसूरती शायद इसी में है कि हमें केवल मंजिल नहीं, सफर भी जीना है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस मुसाफिर से जिसे न घर की चिंता है न ठिकाने की, बस चलते जाने का जुनून है। जी हाँ साथियों, एक मुसाफिर के पास शायद कोई स्थायी ठिकाना ना हो, लेकिन उसके पास रास्तों के अनुभव और यादें जरूर होती है। हम सभी जिंदगी में एक निश्चित मंजिल चाहते हैं। सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक हो जाएगा तभी खुश होंगे। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी रास्ते बदलते हैं, कभी रिश्ते बदलते हैं, और कभी हमारे सपने ही बदल जाते हैं। हाँ, इसलिए हमें अपने सफर की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। किसी की मंजिल जल्दी आ जाती है तो किसी को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हर मुसाफिर का रास्ता अलग होता है।

सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। जी हाँ दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि सुख और दुख दोनों इस यात्रा के पड़ाव हैं। सुख आए तो अहंकार ना करें और दुख आए तो निराश ना हो, क्योंकि चलते रहने वाला ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता ही है। हम अपनी पूरी जिंदगी धन संपत्ति और नाम कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार उन चीजों को भूल जाते हैं जो जीवन को सच में खूबसूरत बनाती है। वो क्या है? अपनों का साथ, रिश्तों की गर्माहट और किसी के चेहरे पर लाई गई एक मुस्कान। एक मुसाफिर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रास्ते की लंबाई नहीं, रास्ते में मिले लोग और उनके साथ बिताए पल याद आते हैं। इसलिए जिंदगी को केवल कल के लिए न टालते हुए आज किसी को अपने से प्यार से बात करके मना लीजिए। किसी से नाराज हैं तो संभव हो तो मन की दूरी मिटा दीजिए, और जहां किसी की मदद कर सकते हैं वह जरूर कीजिए, क्योंकि जिंदगी का सफर कितना लंबा है ये हम नहीं जानते, लेकिन इसे खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में ही है।

फिर एक समय आता है जब मुसाफिर को बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर झांकने की जरूरत महसूस होती है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी असली मंजिल क्या है और इस सफर में मेरे साथ वास्तव में कौन है। हम सारी जिंदगी मंजिलें तलाशते रहते हैं लेकिन कभी खुद से पूछते नहीं कि हम आखिर किस मंजिल की ओर जा रहे हैं। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ के बीच कभी कभी रुकिए और खुद से पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि आखिर में हमारी पहचान हमारे धन या पद से ज्यादा हमारे व्यवहार और हमारे कर्मों से होती है। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं, कोई थोड़ा पहले आया, कोई बाद में। किसी का सफर लंबा है, किसी का छोटा, लेकिन मंजिल सबकी एक है। तो क्यों ना इस सफर को प्रेम अपनापन से बना के आगे बढ़ते चले। हाँ, मंजिलें दूर हो तो घबराइए नहीं, और अगर किसी का रास्ता हमारे रास्ते से अलग है तो उसकी यात्रा का सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि मुसाफिर की पहचान उसकी मंजिल से नहीं, उसके कदमों से होती है। तो साथियों, चलते रहिए, सीखते रहिए और जहाँ तक संभव हो इस सफर में किसी के लिए रोशनी बनते रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारम्भ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिक्सानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है।

0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की

0: यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
1: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली पांच

0: मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
0: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में PG आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जाँच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा।

0: दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आइए अब सुने नौरंग फिल्म का गाना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। लिखा है इसे भरत ब्यास ने, धुन बनाई है सी रामचंद्र ने।
1: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली, चोरी चोरी मुख मोरी, मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई, ये ने पकड़ी बाह और की अटखेली। भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा, भोली परी हरी बोली।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।

0: दूसरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मदारी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। फारूक कैसर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: छलिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। रचना थी कमर जलालाबादी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

याद में। सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शब्दकार थे भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। रचना है राजा मेहदी अली खां की, संगीतकार मदन मोहन। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस थोड़ी ही देर में।
1: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
2: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
3: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और मंदाकिनी जी आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको भी मंदाकिनी जोशी का बहुत बहुत प्यार और नमस्कार और सभी सखियों और सखाओं को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और बताइए क्या हालचाल है
1: भाई। हालचाल तो अच्छी है। हाँ थोड़ा सा मौसम का असर है,
0: सर्दी जुकाम
1: हल्का मौसम का बदलाव आती ही ना सबसे पहले शरीर पर उसका असर होता है, आपके मन पर उसका असर होता है और थोड़ा सा आप प्रभावित हो ही जाते हैं।
0: पर ऐसा है ना कि जब हम इस मंच पर आते हैं तो उन सारी बातों को हम भूल जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप बात करते हैं कि भाई पारिवारिक मिलन समारोह, तो ये हमारे एक तरह से पारिवारिक मिलन समारोह ही है,
0: यानी हर दिन होता है श्रोताओं और सखियों के संग में।
1: बिल्कुल, तो वो हमारे परिवार का ही हिस्सा हो गए हैं, तो हम सब एक तरह से रोज ही मिलते हैं इस कार्यक्रम के मंच पर और हम ठीक हो जाते हैं। ये तो एक छोटी मोटी बातें हैं जहां हम अपनी बात साझा कर लेते हैं।
0: और ऐसा है ना कि ये तो हमारे पारिवारिक मिलन समारोह की बात हुई, पर आजकल ऐसा हो रहा है ना कि नए जमाने के जो युवा वर्ग है इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनका इस तरह

0: के मिलन समारोह में उपस्थिति कम हो जाती है।
1: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जिंदगी में जो है व्हाट्सएप या इंटरनेट या है ना ये ट्विटर
0: जी
1: सोशल मीडिया ज्यादा उनके परिवार का हिस्सा बन गए हैं, और
0: जी
1: वो जो आभासी दुनिया है ना वो उनकी दोस्त ज्यादा बन गई
0: वो
1: है।
0: उन्हें ज्यादा लुभाती है।
1: हाँ, तो पारिवारिक मिलन समारोह में वो कम से कम उपस्थित होना पसंद करते हैं।
0: जी
1: और एक बात मैं और कहना चाहूंगी सोनाली, कई जगह यहाँ पर माता पिता को भी मैं थोड़ा सा दोष देना चाहूंगी, जहाँ वो कहते हैं अरे हमारे बच्चे तो कहाँ आ पाएंगे, घर में बैठे हैं, बिजी हैं, पढ़ रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो वो क्यों नहीं लाते अपने बच्चों को किसी पारिवारिक मिलन समारोह में लेकर।
0: या उनके हिसाब से इस तरह का आयोजन हो, जैसे बच्चों को पसंद है कि कुछ गेम हो, कुछ अलग बातें हो, कुछ उनकी पसंद का खाना हो, तो
1: हाँ
0: फिर वो भी आएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और क्या होता है ना, कई बार जब बच्चे या युवा वर्ग खासकर मिलते हैं तो बड़े बुजुर्ग उन्हें सिर्फ सलाह देने लगते, भाई क्या है आजकल तो तुम्हारे बाल ऐसे हो रहे हैं, या फिर तो तुम्हारा ध्यान तो मोबाइल में ही होता है। उनसे कुछ अच्छे विचार व्यक्त किए, अच्छी तरह से बात की, तो वे भी शामिल होंगे।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सोनाली, लेकिन मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि बच्चों को आपको हर फनमौला बनाना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लें।
0: जी
1: उनकी शर्तों के अनुसार कार्यक्रम रखा जाएगा, उनकी शर्तों के अनुसार खाना रखा जाएगा, या उनकी शर्तों के अनुसार हमारी दादी नानियां या दादा वगैरह कुछ कहेंगे, ऐसा हर वक्त होता नहीं है। जिंदगी है तो सुझाव, उलाहना, शिकायतें, ये सब चलता रहता है, लेकिन एक युवा को, खासतौर से जो हमारे बच्चे युवा होते बच्चे हैं,
0: जी
1: उन्हें चाहिए कि इस माहौल में भी वो रच बस जाएं और अपनी उपस्थिति जो है छोड़ जाएं।
0: जी यानी इस तरह के आयोजन अगर घर में बार बार होंगे तो युवा वर्ग आएंगे ही उसमें, है
1: हाँ,
0: ना।
1: उन्हें आना पड़ेगा,
0: जी
1: और उनके अंदर एक जो है कहते हैं ना कि मिलने जुलने की भावना हमें
0: जी
1: पैदा करनी होगी कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ वो किस तरह से पेश आए, जो
0: जी
1: छोटे बच्चे हैं वहां उनके साथ किस तरह से पेश आए, और जो अपने समकक्ष हैं, अपने बराबर हैं, उनको किस तरह से वो ट्रीट करें,
0: जी
1: तब जाकर एक अच्छा मिलन समारोह बन सकता है। यूं कहें कि परिवार में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती
0: जी
1: है।
0: और ऐसा होता है ना, जब हम मिलते जुलते रहते हैं और हमारे जीवन में कुछ विकट परिस्थितियां आई भी, तभी भी हमें ऐसा लगता है कि कोई है, एक विश्वास होता है कि कोई हमारे साथ है और हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें आज का शब्द है विश्वास।
1: विश्वास बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत ही विश्वास वाला शब्द है
0: जी
1: ये विश्वास।
0: जी यानी हमारे मन को एक अलग ही सुकून मिलता है ना इस
1: हाँ,
0: शब्द
1: एक
0: के साथ में।
1: पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम जब जिंदगी में कदम रखते हैं ना, तो ये विश्वास शब्द हमारे साथ हमेशा रहता
0: जी
1: है ना।
0: और साड़ियों का संसार
1: आहा, मेखला चादर,
0: आसाम ले चलेंगे सबको।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर साड़ियां हैं वहां की।
0: जी
1: मेखला चादर जब आप पहनते हैं
0: जी
1: तो उसके पहनने का तौर तरीका, उसके पहनने के जो अलग अलग तरीके हैं,
0: दो हिस्सों में होती है वो।
1: हाँ, और वो मतलब एक अलग ही लुक देती है आपको,
0: जी
1: और वहां का जो डिजाइन है, जो प्रिंट है, जो कपड़ा है, वो भी बिल्कुल अलग होता है। एक आप चादर के रूप में लपेटते हैं, और दूसरा आप उसको मेखला जिसे कहते हैं
0: कमर में लपेटते
1: कमर
0: हैं।
1: में लपेटते हैं, और उसका जो ब्लाउज है वो भी एक अलग ही तरीके की आपको इमेज देता है।
0: जी और व्यंजन में साबुत अनाज के व्यंजन यानी प्रोटीन से भरे साबुत अनाज जो होते हैं, ऐसा खासकर कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों की जो थाली में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो ये साबुत अनाज अगर हम अपने व्यंजन में शामिल करें तो प्रोटीन की कमी महसूस नहीं होगी हमें।
1: बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम खाना खाते हैं उसमें साबुत दालें खासतौर
0: जी
1: से अगर हम ले लेती हैं तो बहुत हद तक हम इस बात से दूर हो जाती हैं कि हम प्रोटीन इसमें नहीं खाते
0: जी
1: हैं, है
0: और
1: ना।
0: उसके अलग अलग तरह के जब व्यंजन बनाते हैं तब तो फिर वो हमारे स्वाद में और भी बढ़ोतरी होती है।
1: हाँ, खासतौर से हमारे बच्चे जो हर बात पर नाक घोंसी कोड़ते हैं, और अगर उन्हें साबुत दाल दे दी जाए तो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो साबुत दाल के चिल्ले बनाकर, साबुत दाल के अन्य तरीके के व्यंजन
0: जी
1: बनाकर हम उन्हें कम से कम प्रोटीन युक्त भोजन जो है दे
0: दे
1: सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं,
1: और अब हम क्या दे सकते हैं,
0: एक सुंदर सा गीत दे सकते हैं
1: इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है।
0: सुनते हैं।
1: ये गीत

0: श्रोताओं, क्या थैलेसीमिया, लुकीमिया या दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक उम्मीद की किरण बन सकता है? बीएमटी की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सामान्य जीवन जिया जा सकता है? या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई राय लेना चाहते हैं, तो इस बार एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अलका खडवाल, प्रोफेसर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमाटोलॉजी एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।
1: और ऐसा होता है ना मंदाकिनी जी, रिश्ते केवल खून से नहीं, समय देने और साथ निभाने से मजबूत होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि साथ बैठकर बातचीत करने का समय ही कम मिलता है। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह रिश्तों में नई ऊर्जा और अपनापन भरने का सुंदर अवसर बन जाता है।
2: बिल्कुल सही कहा परिवार।

0: के साथ हंसना, बातें करना, साथ साथ भोजन करना, ये सभी चीजें हमें बहुत खुश कर देती हैं। और रोजमर्रा के तनाव और व्यस्तताओं से अगर कुछ समय हम निकाल लेते हैं अपने परिवार के साथ, तो एक राहत भी मिलती है। और एक दूसरे की उपस्थिति से क्या होता है, व्यक्ति को या हम सभी को भावनात्मक सुरक्षा और संतोष का भी एहसास होता है।
1: कभी कभी ऐसा होता है ना कि नौकरी के कारण किसी को, जो परिवार के सदस्य है, उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता है, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, तो कोई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह एक ऐसे अवसर होते हैं जब सभी लोग अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर परिवार के साथ सुखद समय बिताते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जब समारोह होते हैं तो हम सब बहुत ही खुशी के साथ उसमें शरीक होते हैं। और एक सफल पारिवारिक मिलन समारोह भी हमें ये संदेश देता है कि परिवार की शक्ति उसकी संख्या में नहीं बल्कि उसके प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग से होती है। तो जब परिवार एकजुट रहता है सोनाली, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करते हैं।
1: हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं इस विषय पर। हमारे एक साथी कहते हैं, हमारे भारत में यहाँ बसे पारिवारिक समारोह यानी कि बच्चों का जन्म होना, मुंडन, शादी ब्याह, मृत्यु से लेकर ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बना रहता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार हमने देखा होगा कई परिवारों में प्रेम ज्यादा नहीं महसूस करते, हमें लगता है कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत कम मिलते जुलते हैं, आपस में कम समारोह में इकट्ठा होते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ शायद प्रेम कम हो गया है और रिश्ते कहीं कमजोर हो गए हैं। तो वो इसलिए नहीं होते कि उनमें संवाद नहीं हुआ है या एक दूसरे का साथ नहीं देते, बल्कि कहीं ना कहीं भावनात्मक दूरियां बढ़ गई हैं, विश्वास कम हो गया है, एक दूसरे को कहने सुनने की जो क्षमता है ना
1: वो
0: कम हो गई है, एक दूसरे को हम शिकायतें तो कर देते हैं, समझ नहीं पाते एक दूसरे को और दूरियां बना लेते हैं।
1: और कैसे होता है ना कि मंदाकिनी जी, कभी कभी ना हम कहते हैं ना जजमेंटल हो जाते हैं कि उनके प्रति हम एक धारणा बना लेते हैं कि वो तो अब जैसे उसके घर की कुछ बातें होंगी कि वो शायद दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, पर हमें ऐसे लगता है कि देखिए उन्हें तो घमंड आ गया है, वो तो हमसे मिलना नहीं चाहते, पर ऐसा नहीं होता है। किसी किसी की परिस्थिति के कारण कुछ व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करते हैं। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि परिवार के साथ पॉजिटिव रिलेशन होने से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और आप अपनी एंग्जायटी और चिंताओं को दूर कर पाते हैं और मुसीबत में होने पर आपको सही मार्गदर्शन और सलाह मिल पाती है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे घिरे होने पर आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आ सकता है और चुनौतियों से उभरने के लिए आपको एनर्जी मिल सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर लिखा है। और मुझे एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि पारिवारिक जो बंधन है उससे आप मजबूत होते हैं, बीते सालों की खूबसूरत यादों का सृजन होता है, घर के बुजुर्गों से बच्चों और युवाओं को अपने पूर्वजों से जुड़े पारिवारिक इतिहास के बारे में, उनकी जड़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और मैंने भी हमारे पिछले 7 पीढ़ियों तक का वटवृक्ष बनाकर हमारे कंप्यूटर ट्री ऐप पर डाला हुआ है, जिसमें मेरे पोते से लेकर दादा परदादा तक की सारी जानकारियां हमने साझा कर रखी हैं।
1: वही एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बिखरी हुई जड़ों को फिर से सींचने का अवसर है। जहां वर्षों से दूर रहे चेहरे एक ही आंगन में मिलते हैं तो समय जैसे थमसा जाता है। पिता की झुकी हुई पीठ में बचपन का सहारा दिखता है, माँ की आंखों में वही पुरानी ममता लौट आती है और भाई बहनों की हंसी फिर गूंज उठती है। ये मिलन हमें याद दिलाता है कि नौकरी, शहर और व्यस्तताओं ने हमें कितना भी दूर कर दिया हो, हमारा अस्तित्व आज भी उसी एक थाली, उसी एक कहानी, उसी एक आशीर्वाद से बंधा है, जो अगली पीढ़ी को भी सिखाता है कि परिवार वो अंतिम घर है जहाँ लौट कर आदमी फिर से पूरा हो जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर शब्दों में कहा। काश हम सभी ऐसा समझें, सोचें और इस तरह की जो जीवनचर्या बिताएं, तो हमें लगता है कि जो आजकल एकल परिवारों की जो प्रथा चल निकली है उसमें बहुत कमी फिर से आने लगेगी,
1: या उसमें जो है ना जो सुधार हो जाएगा कि हम दूर दूर जाने लग गए हैं एक दूसरे से।
0: हम अकेलेपन के आदि हो गए हैं, हम अकेलेपन में रहना चाहते हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, जिस तरह की भावना हमने रख ली है, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा परिवार है, हमारे जो सास ससुर हैं, माता पिता हैं, वो भी किसी न किसी से जुड़े हुए हैं और उन्हें भी उस साथ की जरूरत है।
1: और बच्चे भी ना शेयरिंग और केयरिंग सीखते हैं, क्योंकि घर में आजकल एक या दो ही बच्चे होते हैं, उनका सब चीज पर्सनल होता है, उनका खिलौना अलग, उनका बिस्तर अलग, उनका कमरा अलग, उनकी किताबें अलग है। तो जब घर में परिवार के दूसरे लोग आते हैं, गेट टुगेदर के बहाने उस वक्त वो उनकी थाली में खाएंगे, उनके खिलौने

0: लेंगे
1: अपनी
0: तो
1: चीजों को
0: उन्हें
1: देना सीखेंगे, जब आप उन्हें बताएंगे कि बेटा आप अपनी चीजें इन्हें भी दे सकते हैं, तो उनके अंदर ये भावना पनपती है कि हम मिलजुल कर रहे हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी के कारण अक्सर लोग अपने ही परिवार के सदस्यों से दूर हो गए हैं। पारिवारिक मिलन समारोह सभी को एक जगह इकट्ठा होने का अवसर देता है। एक साथ बैठकर बातचीत करना, पुराने दिनों को याद करना, सुख दुख साझा करना, प्रेम विश्वास सौहार्द, ये सभी बड़ा अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे अक्सर दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा चाची, बुआ मौसी, चचेरे भाई बहनों को ठीक से नहीं जानते। ऐसे समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने परिवार के इतिहास, परंपराओं और मूल्यों को जानने का मौका मिलता है और ये बच्चों में पारिवारिक संस्कारों को विकसित करने का एक बेहतरीन मंच भी है।
0: एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह मैंने शहरों में देखा है, जहां पर हर त्योहार पर लोग एक पार्क में या किसी के घर के लॉन में मिलते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं। हमारे गांव में दिवाली के अगले दिन अक्सर सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इस त्योहार पर जो बाहर नौकरी करते हैं वे सब भी परिवार सहित छुट्टी मनाने आते हैं, तो उनसे लोग ज्यादा घुलते मिलते हैं और बच्चे इनाम भी मांगते हैं। हाँ, दूसरा मौका होली का होता है, जब होली के दिन सारा गांव एक रंग में रंगा होता है और दोपहर के बाद नए कपड़े पहनकर सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और गुजिया खाते हैं, खिलाते हैं, फाग पर तरह तरह के गीत गाते हैं, पूरा गांव मस्ती में झूमता है। अब तो लोग ऐसे कुछ उन्होंने अलग बातें भी लिखी
1: हैं जी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी फैमिली में चाचा चाची, उनके लड़के लड़की कुल मिला के 45 लोग हैं। हम सब हर साल समर वेकेशन में एक दिन की पिकनिक टूर पर जाते हैं, धार्मिक स्थल, दरिया का किनारा, फार्म हाउस, वहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, ग्रुप फोटोग्राफी करते हैं और उस दिन कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं होता, सब एक दूसरे की मजाक भी उड़ाते हैं, मस्ती भी करते हैं और बहुत मजा आता है। ऐसा टूर होते रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते, परिवार हमारी शक्ति है और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र है, इसके बल पर ही हम सामाजिक जीवन का सर्वोच्च प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्कृति और जीवन मूल्यों की प्राथमिक पाठशाला भी है। परिवार से ही हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे भारत में तो यहाँ पारिवारिक समारोह बच्चे पैदा होने में, मुंडन, शादी, विवाह, मृत्यु तक बहुत से होते हैं। कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बनता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
0: और अब गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। हाँ तो सोनाली, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही असम की सांस्कृतिक पहचान मेखला चादर के बारे में।
2: इन्हें चलते हैं असम की ओर।
0: हाँ बिल्कुल, चलिए।
2: मेखला चादर, असम के इसे मेखला चादर भी कहते हैं। असम की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाकों में से एक है। इसकी खासियत केवल इसकी सुंदरता नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी सदियों पुरानी बुनाई कला और असम के जीवन से जुड़ी परंपराएं भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। और मेखला चादर पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये मुख्यतः दो हिस्सों से बनकर एक बड़ी सुंदर पोशाक बनती है, मेखला और चादर। तो मेखला इसका निचला हिस्सा होती है जिसे कमर के चारों ओर लपेटा जाता है और इसे विशेष ढंग से मोड़कर सामने की ओर इसकी प्लीट्स बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगती है।
2: और चादर जिसे कई बार सादोर या चादोर भी कहा जाता है, इसका ऊपरी हिस्सा है, इसे शरीर के ऊपरी भाग पर लपेटकर कंधे पर यानी कंधे पर रखा जाता है।
0: तो इस तरह दोनों हिस्से मिलकर क्या बनते हैं,
2: मेखला चादर। और मेखला चादर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हस्त बुनाई है। असम में बुनाई के रोजगार का साधन नहीं बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपरा भी रही है।
0: हाँ, और असम की बुनाई में प्रकृति की हमें झलक भी दिखाई देती है। इसमें फूल, पत्तियां, पक्षी, ज्यामिति आकृतियां और पारंपरिक प्रतीक इसके डिजाइनों में नजर आते हैं। इसीलिए हर सुंदर मेखला चादर अपने भीतर बुनकर की कल्पना और मेहनत की कहानी भी कहती है।
2: और मेखला चादर में असम के विभिन्न प्रकार के रेशम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मूंगा सिल्क या इसे मूंगा सिल्क भी कहते हैं। असम का मूंगा रेशम अपने प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये मजबूत और टिकाऊ भी माना जाता है और मूगा सिल्क की मेखला चादर को बहुत प्रतिष्ठित भी माना जाता है।
0: हाँ, इसके अलावा पाट रेशम मुलायम और चमकदार होता है और उससे बनी मेखला चादर विशेष अवसरों पर खूब पसंद भी की जाती है।
2: साथ ही एरी सिल्क, एरी रेशम को असम की रेशम परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसकी बनावट अपेक्षाकृत गर्म और मुलायम होती है।
0: हाँ, और मेखला चादर में रंगों का जो संयोजन है वो बहुत ही सुंदर होता है सोनाली। लाल, क्रीम, सुनहरा, हरा, सफेद और गहरे रंगों के साथ पारंपरिक बॉर्डर बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर बॉर्डर बनाए जाते हैं।
2: और इसके बॉर्डर और पल्लू जैसे हिस्सों पर पारंपरिक असमिया आकृतियां इसकी सुंदरता बढ़ाती है। फूल, पत्तियां, मोर, पक्षी और ज्यामितीय पैटर्न इसकी लोकप्रिय डिजाइन है।
0: हाँ बिल्कुल, और असम का जो प्रसिद्ध बिहू त्योहार है ना, मेखला चादर से गहराई से जुड़ा हुआ भी है ये त्योहार। विशेष रूप से बोहाग बिहू के अवसर पर महिलाएं जो हैं पारंपरिक मेखला चादर पहनती हैं और इस उत्सव में शामिल भी होती हैं। बिहू के गीत हैं, नृत्य हैं और पारंपरिक परिधान जब मिलकर असम की जो संस्कृति है उसकी सुंदर तस्वीर हमारे सामने एक पेश करते हैं।
2: और मेखला चादर का इस्तेमाल विवाह समारोह, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य पारंपरिक अवसरों पर भी किया जाता है। दुल्हन की मेखला चादर पर अक्सर जटिल बुनाई, सुंदर बॉर्डर और पारंपरिक रूपांकन दिखाई देते हैं।
0: हाँ, और मेखला चादर इसके आधुनिक रूप भी अब आ गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्न रूप भी आने लगे हैं जिनमें पारंपरिक बुनाई के साथ नए रंग आ गए हैं, नए डिजाइन आ गए हैं। और ये केवल पारंपरिक अवसरों तक नहीं बल्कि आम प्रोग्राम्स में या डेली रूटीन में भी वहाँ की महिलाएं जो हैं
2: पहन सकती हैं।
0: जो नौकरी में जाती हैं वो महिलाएं भी मेखला चादर पहनती हैं और वो कॉटन के बने जो मेखला चादर है वो पहनावा में है।
2: मेखला चादर को केवल एक वस्त्र

0: करना, इसके महत्व को कम कर देना होगा। ये असम की पहचान, लोक कला, बुनकरों की मेहनत और महिलाओं की रचनात्मकता का भी प्रतीक है। इसके हर धागे में असम की प्रकृति की छाप दिखाई देती है। कहीं ब्रह्मपुत्र की विशालता, कहीं हरे भरे जंगलों की छटा और कहीं स्थानीय लोक कला की इसमें झलक दिखाई देती है।
1: बिल्कुल, और मेखला चादर असम की एक ऐसी विरासत है जिसमें पहनावे के साथ इतिहास है, कला है, संस्कृति है, और ये केवल शरीर को सजाने के लिए कोई वस्त्र नहीं है सोनाली, बल्कि असम की पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने वाली एक जीवंत परंपरा का भी नाम है मेखला चादर। और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
0: जी,

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। और सोनाली, अगर अब आप कहें तो एक गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं गीत।

0: तो बहुत ही सुंदर गीत लगा, ऐसा लगा कि हम मेखला चादर पहनकर ये नृत्य कर रहे हैं, है ना
1: जी। और एक हमारे सखी ने लिखा है कि असम घूमने गई थी, तब वहाँ की महिलाओं को मेखला पहनते हुए देखा तो मुझे अच्छा लगा। दुकान में हर तरह के मेखला उपलब्ध है, सस्ती भी है और महंगी भी है, कॉटन में, चंदेरी सिल्क में, और ये उनका पारंपरिक ड्रेस है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने लिए तो नहीं, पर किसी ने मुझसे मंगवाया था तो मैं उनके लिए लेकर आई थी। हल्का क्रीम कलर का सिल्क पर रेड बूटी और बॉर्डर वाली बेहद खूबसूरत मेखला थी।
0: क्या बात है, तो आपने खुद के लिए क्यों नहीं खरीदा भाई?
1: हाँ ना, आज बोलती क्या, मेरे पास भी मेखला है।
0: हाँ, ये कहती ना कि मेखला है, यहाँ मैं कहूंगी मेरे पास मेखला है।
1: और है आपके पास मेखला? अरे वाह, अभी पहनकर आइएगा।
0: बिल्कुल, मैं पहन के आई थी, आपने मुझे नहीं देखा शायद, आप उस दिन नहीं थी ऑफिस में। और अभी आपको एक बात बताऊं, जब मैं अपनी एक यात्रा में कहीं गई थी बाहर, तो मेरी एक दोस्त अचानक स्टेशन पर आई जहां पर ट्रेन रुकी हुई थी, और उन्होंने आते ही मुझे उठाया और बोले, अरे सो रही है, उठ, तेरे लिए मेखला लेकर आई। सच में, तो ऐसा भी होता है कई बार कि जब आप नहीं सोच रहे होते, अनएक्सपेक्टेड उपहार आपको मिल जाते हैं।
1: तो अगले इसमें यही सब्जेक्ट ले लेंगे
0: कि आपको न चाहते हुए भी बहुत कुछ मिल जाता है,
1: सरप्राइज गिफ्ट
0: मिल जाते हैं
1: जी।
0: तो चलिए, हमारे और हमने एक नया आज शब्द लिखा है, विश्वास, उस पर हम बात करने वाले हैं
1: जी।
0: जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शब्द है, भावार्थ लिए, और हमारे जीवन में इसका होना बहुत जरूरी है।
1: और ये श्रोताओं का सेगमेंट है, तो श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं विश्वास पर।
0: उन्हें विश्वास है ना हम पर कि हम उनके सेगमेंट को पढ़ना पसंद करेंगे, और ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है, तो उन्होंने हमारे विश्वास बनाए रखा है
1: जी। एक साथी कहते हैं, विश्वास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विशेष आस या विश्व आस। विश्व है तो आस है, अगर विश्व में हम आस रखते हैं तो ये बात खास है। संसार में हर कोई चाहता है हर इंसान उस पर विश्वास करे, लेकिन वो दूसरों पर जल्द विश्वास नहीं कर पाता। विश्वास किसी व्यक्ति, वस्तु, शक्ति, विचार के सत्य, क्षमता और चरित्र पर बिना किसी संदेह पूर्ण भरोसा करने की मानसिक स्थिति है। उदाहरण स्वरूप कहूँ तो मंदाकिनी जी और सोनाली बिटिया पर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारे कमेंट जरूर शामिल करेंगी। ये मानवीय संबंधों की नींव है जो आपसे रिश्तों, समाज और आध्यात्मिकता को आपस में जोड़कर रखती है। दूसरों की ओर से विश्वास रखने की आस रखने के साथ खुद पर विश्वास यानी आत्मविश्वास होना भी जरूरी
0: है।
1: यस, आई कैन डू इट।
0: बिल्कुल, आत्मविश्वास और विश्वास, ये दो शब्द बहुत जरूरी है जीवन में। खुद पर विश्वास होना और दूसरों पर भी विश्वास करना। हाँ, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, है ना, उससे हमें अपने आप को बचाए रखना चाहिए, लेकिन विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है। एक श्रोता लिखते हैं कि शब्द हमारे विचार आपके में, कितना सुंदर आपने शब्द चुना है विश्वास। विविध भारती के शब्द जब श्रोताओं तक पहुंचते हैं तो उनके विचारों से मिलकर और भी खूबसूरत हो जाते हैं। कभी कोई गीत याद बन जाता है, कभी कोई बात दिल को छू जाती है, बस यही तो विविध भारती की खासियत है। आवाज आपकी और लिखा हुआ हमारा, जब दोनों मिलकर कुछ पढ़ते हैं तो कुछ मस्त सा रचते भी हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वासम फलदायकम, एक प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक और परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
1: एक साथी कहते हैं, विश्वास एक नींव की तरह होता है जिस पर हमारे सामाजिक और व्यावसायिक रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। इंसान के सभी कार्यकलाप, लेन देन, आपसी व्यवहार विश्वास के सहारे चलते हैं। घर में माता पिता को अपनी संतान पर विश्वास रहता है कि वे कोई गलत काम नहीं करेंगे। दुकानदार भी पैसे बाद में आ जाएंगे के विश्वास पर ग्राहक को सामान उधार दे देता है। बिल पर जो भूल चूक लेनी देनी वाक्य लिखा होता है, व्यापारी और ग्राहक के आपसी विश्वास की लिखित गारंटी होती है। बैंक में, नौकरी में तो हर व्यवहार विश्वास के आधार पर ही होता है। सच भी यह है कि विश्वासघात भी वही होता है जहाँ विश्वास होता है। विश्वास के मामले में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सिद्धांत लागू होता है। किसी पर इतना भी विश्वास न करके बाद में पछताना पड़े, और नहीं इतना अविश्वास दिखाए कि आप अपनी ही विश्वसनीयता खो बैठे।
0: बहुत
1: कितना सुंदर उदाहरण देखिए लिखा है,
0: बहुत सुंदर, कि आप धोखा भी न खाएं और अविश्वास भी न करें। मतलब कितनी महीन रेखा है ना हर रिश्ते के बीच में।

0: जो हमें मेंटेन रखनी होती है
1: जी,
0: बैलेंस बनाकर जीवन में चलना पड़ता है।
1: और जो बैलेंस बना के रखता है उसका जीवन सफल होता है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे वो माता पिता बच्चों का हो, मित्रों का हो, व्यापार का हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास की जो कमी होती है वो आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास सामाजिक जीवन को सुखमय बना देता है।
1: एक साथी कहते हैं, विश्वास एक ऐसा अदृश्य धागा है जो रिश्तों को मजबूती से बांधे रखता है। इसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, लेकिन इसकी मौजूदगी हर रिश्ते में महसूस होती है। जहां विश्वास होता है वह शब्द कम और भावनाएं अधिक बोलती है। विश्वास पाने में समय लगता है, लेकिन इसे खोने में एक पल भी काफी होता है। इसलिए कि किसी के विश्वास को जितना जितना महत्वपूर्ण होता है उसे निभाना उससे भी अधिक जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा, सुंदर हमारे श्रोताओं ने लिखा है,
1: पूरे जीवन का सारी लिख दिया है
0: कि वाकई हम विश्वास जमाते हैं ना सोनाली, पूरी जिंदगी निकल जाती है किसी पर विश्वास बनाते। एक सेकंड लगता है उस विश्वास को तोड़ने में आप एक सेकंड लगाते हैं। ये कितना रिश्तों में सोचिए कदम कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है।
1: एक साथी कहते हैं, एक विश्वास ही है जो एक बार टूट जाए तो जीवन भर नहीं जुड़ता, इसलिए सावधान रहे, इसे कभी टूटने न दे।
0: सबसे बड़ी बात ये है। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास वो अद्भुत और अलौकिक अदृश्य धागे की डोर है जो हमें बांधती है, जिसके हम विश्वास पात्र होते हैं। और इस धागे में जब स्नेह सद्भाव और प्रेम का मांझा चढ़ता है, फिर तो दो हृदय नहीं अपितु उनसे अनुस्यूत समस्त विश्व की दुख दारिद्र्य से रहित हो जाए, और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए।
1: और अब गीत सुन लेते हैं।
0: हमारे श्रोताओं का भी तो हम पर विश्वास है ना
1: कि गीत सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो सोनाली, हमारे श्रोताओं ने विश्वास जैसे शब्द पर बहुत अपने सुंदर विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास एक ऐसा चमत्कारी शब्द है, ये अगर किसी इंसान के पास हो तो वो उस इंसान को खाक से उठाकर फलक पर बिठा देता है। वो इंसान असंभव को संभव कर सकता है। पहला अटूट विश्वास परम पिता परमेश्वर पर, माता रानी पर, दूसरा अटूट विश्वास खुद पर। और मैंने इसी अटूट विश्वास से जीवन में कई लक्ष्य हासिल किए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी का विश्वास कभी कभार डगमगा जाता है, तो मैं उनको हौसला बढ़ाता हूँ ये बताने पर, आज जरूर घर पर धर्मपत्नी की डांट सुननी भी पड़ सकती है।
1: जी, एक साथी कहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, मित्रों संबंध हो या व्यापार हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास और सामाजिक जीवन को सुखमय बनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे बहुत सारे श्रोता विश्वास जैसे शब्द पर अपने विचार लगातार हम पर भेज रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं वही जो कि विश्वास एक नींव की तरह है जिससे हमारे सामाजिक और व्यवसायिक रिश्तों की इमारत भी खड़ी होती है, और इंसान के सभी कार्यकलाप लेन देन आपसी व्यवहार विश्वास के सारे ही चलते हैं।
1: एक साथी कहते हैं विश्वासम फलदायकम, एक प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक या परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
0: बिल्कुल मिलती है, और यही विश्वास है जो सखी सहेली के मंच पर हम कायम रखते हैं, हमारे सखी और सखाओं के साथ विश्वास बनाए रखते हैं और वो भी अपने विश्वास पर पूरा खरा उतरते हैं। तो एक गीत सुन लिया जाए,
1: सुनते हैं
0: और फिर क्या करेंगे, हम
1: व्यंजन की ओर बढ़ेंगे।

0: मंदाकिनी जी, हमारे एक सखा मित्र, उन्होंने लिखा है कि मैं करीब 25 सालों से विविध भारती सुन रहा हूँ और विविध भारती से जुड़ा हूँ। आपने जो हमारे आसाम के मेखला चादर के बारे में विस्तार से जानकारी दी सारे सखियों को, मुझे बहुत अच्छा
1: अरे वाह, अभी
0: लगा।
1: उससे पहले भी सोनाली आप बता रही थी कि काफी लोग आसाम से सुन रहे हैं आज
0: जी
1: कार्यक्रम,
0: हाँ
1: और मेखला चादर पर हमने बातचीत की है तो वो काफी खुश भी है।
0: जी
1: अच्छा भी लगता है ना जब हम अपने प्रांत की कोई चीज, वेशभूषा या
0: या
1: खान
0: व्यंजन।
1: पान, हाँ, पर बातचीत सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी भी होती है ना।
0: और एक जैसे साबुत अनाज की बात चली है तो हमारे एक सखी ने लिखा है कि साबुत अनाज से सबसे जो पौष्टिक है ना, उसमें थोड़े से हरे मूंग या काले चने भिगा दे और उसका पानी निकाल दे, और अंकुरित हो गए फिर उसमें प्याज, नमक, ककड़ी, टमाटर, नींबू मिलाकर मस्त सा सलाद बनाकर खाए, या फिर ऐसे ही खाए, हमने तो मस्ती में लिख दिया, पता ही नहीं आप पढ़ेंगी या नहीं
1: अरे
0: पढ़ेंगी।
1: देखिए, आपने मस्ती में लिखा और हमने इसको गंभीरता से ले भी लिया है ना, कि भाई ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हम रोजमर्रा की रूटीन के खान पान में शामिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर हम नहीं बना सकते साबुत अनाज का कोई व्यंजन, तो हम इसे तो कम से कम शामिल कर ही
0: और
1: सकते
0: इसे
1: हैं।
0: बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, बस
1: हाँ,
0: उसे रात को भिगोना है हमें।
1: और सुबह ककड़ी और प्याज, टमाटर, धनिया डाल के उसको बना के हल्का बॉईल करके आप खा सकते हैं। नमक और काली मिर्च डालकर भी
0: और
1: खा
0: अगर वो
1: सकते हैं।
0: बच गए तो उसको पीस लिया, उसके चीले बन
1: चीले
0: गए।
1: बन गई, क्या बात है। तो एक श्रोता लिखते हैं कि होल ग्रेन दलिया को, यानी साबुत गेहूं का जो दलिया है, दूध या सब्जियों के साथ पकाकर एक पौष्टिक नाश्ता तैयार किया जाता है। ये पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मसाला ओट्स, ओटमील, साबुत जई को पानी या छाछ में सब्जियों के साथ उबालकर तीखा या नमकीन दलिया भी बनाया जा सकता है। और ओट्स को पीसकर उसमें बेसन, हरी मिर्च और सब्जियां मिलाकर तवे पर चीला बनाएं तो एक झटपट हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो सकता है।
0: साथ ही रागी या मड़ुआ भी कहते हैं इसके डोसे, लड्डू। रागी कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। इसके आटे से बने कुरकुरी डोसे, कम घी गुड़ वाले लड्डू भी बड़े चाव से खाए जाते हैं। वैसे ही ज्वार की रोटी, सर्दियों के मौसम में साबुत अनाज का खिचड़ा, यानी जो ज्वारी है या फिर बाजरा है, इसका खिचड़ा कहते हैं, इसे खिचड़ी की तरह बनाया जाता है, उसे खिचड़ा कहते हैं। और गरम गरम इसकी रोटी भी बनाई जाती है बाजरा और ज्वार की, और इसे गुड़ और मक्खन के साथ परोसा जाता है।
1: बिल्कुल, जब खिचड़ी की बात चली है ना, तो हमारे राजस्थान में देखा जाता है कि एक अंगीठी पे, बड़े पतीले पर, इसको पानी में डालकर साबुत अनाज को पकाने छोड़ दिया जाता है। वो धीरे धीरे पकता रहता है,
0: धीरे
1: पकता
0: धीरे
1: रहता है
0: पकते रहते।
1: घंटों। फिर उसमें नमक और देसी घी डालकर वो लोग खाते हैं, तो देसी भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं और काफी ताकतवर होता है
0: बहुत
1: ये।
0: ताकत होती है, बचपन में यही सब चीजें खा खा के हम लोग, यानी जो बड़े
1: हाँ,
0: बुजुर्ग है ना, ताकतवान बने
1: और
0: थे।
1: इसके साथ वो दही या छाछ का प्रयोग भी करते हैं। हमने देखा हमारे पड़ोसी लोगों को कि वो एक बड़ा डोलू भरकर छाछ उसमें डाल के और उस खिचड़े का सेवन करते थे। तो बाकी वो गायों का काम करते थे तो उनकी शक्ति देखने लायक होती थी।
0: जी, एक साथी कहते हैं कि साबुत अनाज के व्यंजनों के में बाजरे के आटे के लड्डू बड़े ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं, और बिल्कुल गेहूं के आटे के लड्डू की तरह ही बनाए जाते हैं, बस इसमें गुड़ डाला जाता है, तो गुड़ तो डालना ही चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, गुड़ डाल दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। एक लिखते हैं, साबुत गेहूं का दलिया आप बना सकते हैं और पाचन के लिए अच्छा है। और ज्वार की रोटी के बारे में भी लोगों ने काफी कुछ लिखा है। एक लिखते हैं, भिगोए हुए इन साबुत अनाजों को आप थोड़ा थोड़ा मोटा दरदरा पीस लें और उन्हें हींग, नमक, हरी मिर्च बारीक काट कर मिला लें। अब इसके छोटे छोटे टिकिया बनाकर या तेल लगे ट्रे या थाली में लगाकर आप इसे स्टीम कर सकते हैं। ठंडा होने पर इसे चकोर टुकड़े काट लें या इन टिकियाओं का जो स्टीम है किया गया है उन्हें आप सेलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये ऊपर से कुरकुरे और भीतर से सॉफ्ट होते हैं। इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इन्हें ज्यादातर आप भाप दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: और अच्छी मजेदार सी चटनी बना लो तो भाप वाले भी बिना तले बिना भुने वैसे ही अच्छे
1: बहुत
0: लगते।
1: अच्छे लगते हैं, क्योंकि डीप फ्राई अगर आप रोज खाएंगे तो फिर वो नुकसान करने
0: जी
1: लगता है। और साथ में आप कह रहे हैं कि प्याज, टमाटर, ग्रेवी डालकर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि साबुत

0: अनाज के मूंग के लड्डू, एक कटोरी खड़ा मूंग ले, उसे अच्छे से धोकर एक सूखी कढ़ाई में भून ले, और जब मूंग लाल हो जाए तो धीमी आंच करके जब ठंडा हो जाए तो मिक्सी में पीस ले, छान ले। फिर आधा कटोरी शुद्ध घी में मूंग के आटे को 10 मिनट तक भूने, और बाद में एक कटोरी पीसी चीनी और अपने मनपसंद सूखे मेवे डालकर लड्डू बांध ले। लड्डू बांधते समय घी कम लगे तो थोड़ा घी और डाल दे। अपने स्वादिष्ट लड्डू तैयार हो सकते हैं। साथ ही चना जोर गरम भी बना सकते हैं ना, कि काबुली चने को भिगो के उबाल लिया और बस उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा दबा लिया, प्रेस कर लिया उसे, चपटा चपटा कर लिया, और बस उसमें सारे प्याज टमाटर डाल के और उसमें चाट मसाला डाल के और वैसे ही खा सकते हैं नाश्ते में। उसको तलते भी हैं और कुछ कुछ लोग सेक लेते हैं।
1: सेक ले, वो जैसा आपको पसंद हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खा रहे हैं तो ज्यादातर उसको डीप फ्राई नहीं करें
0: जी,
1: है ना। तो आज तो बहुत शानदार और जानदार रेसिपी हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी, और हम उम्मीद करते हैं घर पे बना के खाने वाले हम सभी, है ना
0: जी।
1: और अब एक गाना सुन ले
0: जी।

0: मंदाकिनी जी, हमारी एक सखी लिखती है कि हमने मेखला पहनकर स्टूडियो में फोटो खिंचवाई थी और वहां से एक आसामी रेशम सिल्क की साड़ी भर लेकर ले आए थे, और एक सखी ने कहा कि हमने मेखला नहीं खरीदी पर हमने आसाम सिल्क की साड़ी भी खरीदी थी और फोटो खिंचवाई तो हमेशा के लिए वो जो हंसता हुआ नूरानी
1: चेहरा था वो कैद हो गया है। और यकीनन सोनाली, तुम्हारी खूबसूरती पता है क्या है? तुम्हारा ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा ही,
0: और आपका भी।
1: ये तो एक दूसरे की तारीफ करना हो गया। हमारे सखी और सखा कहेंगे कि सोनाली और मंदाकिनी बस एक दूसरे की तारीफ ही करती है।
0: हम श्रोताओं की भी तारीफ करते हैं और उन्हें शुक्रिया कहते हैं कि आपके इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल, और उन्होंने हमें हंसने पर मजबूर भी कर दिया। तो चलिए, वो चाहे मेखला चादर पहने या किसी भी प्रांत का कोई भी आप वस्त्र पहने, लेकिन आपका चेहरा हमेशा हंसमुख होना चाहिए।

0: खिलता मुस्कुराता रहना चाहिए।
1: तो हंसी और हंसाइए, और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और सोनाली
0: पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों कार्टून और कार्टूनिस्ट कला के ऐसे पहलू हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। बेजान रंगों और साधारण रेखाओं में जान फूंक कर जो दुनिया को हंसते हंसते बहुत कुछ सिखा जाए, वही असली कार्टून है और उसे बनाने वाला कार्टूनिस्ट। तो विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने एक ऐसे ही शख्स को, ऐसी ही शख्सियत को, ऐसे ही मेहमान को आमंत्रित किया है जो कार्टूनिस्ट हैं और अपनी इस कला से हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं और हंसाते भी हैं। तो आप हैं जाने माने कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: वाह मंदाकिनी जी, आपको ही मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: और विविध भारती के असंख्य श्रोता जिन्हें हम बचपन से देखते सुनते प्रेम करते आ रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत अभिनंदन है।
1: विविध भारती में आके आपको कैसा लग रहा है?
2: मुझे विविध भारती में आकर अपने एक पुराने चिर स्वप्न को पूरे होने जैसा लग रहा है। मैंने शुरू से विविध भारती को सुना, इसके साथ ही सांसें ली और मेरे क्रिएशन के बहुत सारे जो लम्हे हैं वो विविध भारती के साथ ही बीते हैं।
1: जी जी,
2: शुरू से इसके सारे कार्यक्रम वंदनवार से लेकर हवा महल और अच्छा, छाया गीत, ये सभी देखते सुनते और ये साथ साथ हमारी पढ़ाई भी चलती थी और जब कार्टूनिंग की तब भी विविध भारती हमारा साथ ही रहा। तो आज यहाँ आकर और जब आप सब लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं।
1: तो आपके लिए आपके सपने पूरे होने जैसा है ये।
2: जी बिल्कुल सही बात है।
1: तो देवेंद्र जी, मैं अभी आपकी किताब देख रही थी, धूप छांव। आप तो लेखक भी हैं और आपने इसमें उन नाटकों को लिया है जो हमारे विविध भारती के हवा महल कार्यक्रम से भी आए हैं।
2: जी हाँ जी।
1: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्टून के बारे में तो आपकी बातचीत हमें करना ही है, तो लेखन की शुरुआत कब हुई?
2: लेखन की शुरुआत और ये कार्टून्स की, ये कहना मुश्किल है कि कैसे, क्योंकि लगभग ये दोनों ही साथ ही चले। और शुरुआत में मैं कविताएं और लेख भी लिखा करता था अपनी समझ के हिसाब से, छोटे छोटे लेख कि लू लगने से अपने आप को कैसे बचाएं, या रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व, या अखबारों जो आते हैं बाल स्तंभों में आई होली आई, उस तरह के ये रचनाएं, ऐसी कविताएं लेख लिखते थे और साथ ही कार्टून्स भी बनाते थे। तो लिखने की शुरुआत

0: का सिलसिला ऐसे जमा कि आकाशवाणी इंदौर से बच्चों की सभा प्रसारित होती थी हर संडे, तो उस वहाँ जाने का एक लिंक बना और मैं वहाँ पर जाने लगा नियमित। और वहाँ मैंने देखा किस तरह से बच्चे अपनी कविताएं पढ़ते हैं, अपनी बात कहते हैं धीरे धीरे धीरे। और वहाँ जो संयोजिका थी रंजी सतीश जी, उन्होंने विशेष मुझे स्नेह किया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कार्टून्स भी बनाते हो तो तुम रेडियो कार्टून बनाओ।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो वो अपन प्रसारित करेंगे।
1: हाँ।
0: तो रेडियो कार्टून जो है उनके उनके मार्गदर्शन में और कुछ अपनी सूझबूझ से हम लोगों ने डेवलप किया। तो एक बहुत जल्दी जल्दी जो पात्र बोलते थे बड़ी अपनी चुलबुली भाषा में, तो उस तरह से हमने नटखट्टू नाम का एक रेडियो कार्टून बनाया था और उसकी दो तीन कड़ियां प्रसारित हुई थी। तो इस तरह आकाशवाणी का माहौल जो है उसमें घुलने मिलने का अवसर मिला और ये सब साथ साथ ही चलता रहा सिलसिला। उसके बाद में फिर जब आगे चल के फिर ये महिला सभा में या युवाणी में, तो रीजनल प्रसारण के लिए फिर नाटिकाएं मैंने लिखी और बस ये रुचि बढ़ती गई, सिलसिला चलता गया।
1: तो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले से ही रेखाओं और आकृतियों में आपकी दिलचस्पी थी
0: जी,
1: लेखन और कार्टून के रूप में बाहर निकली।
0: बस बस यही समझ लीजिए। अब जैसे कार्टून में जो ऊपर कैप्शन लिखे होते हैं वो भी अपनी तरह का एक छोटा लेख ही होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत कुछ गागर में सागर का काम करता है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा
1: जी। तो कार्टूनिस्ट बनने के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन किन बातों का होना जरूरी होता है, मतलब कौन से गुण होने चाहिए कार्टून बनाते वक्त एक कार्टूनिस्ट में।
0: सबसे पहले तो उसको जिसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हास्य की समझ, वो जरूरी है कि हमारे आचरण में वो चीज आ जाए कि हम जब बात करें तो थोड़ा हंसें बोलें, या कोई अगर हंस भी रहा है या उसने हम पे कटाक्ष भी किया तो हम रोने ना लग जाएं या तुनक मिजाजी ना बताएं, बल्कि उस चीज़ को एक कहते हैं हेल्दी वे में लेना चाहिए। और उससे ही धीरे धीरे एक वो इंसान का एक लहजा विकसित होता है, स्टाइल बनती है कि किस तरह से हम किसी को चोट पहुंचाए बिना हम कार्टून बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हास्य की समझ, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, अपने आसपास की चीज़ों को देखना, अपने रीति रिवाजों को देखना, घटनाओं पर नज़र रखना। तो ऑब्जर्वेशन और फिर पढ़ना बहुत सारा कि पहले हमारे साहित्यकार क्या लिख गए हैं, क्योंकि हम जब कार्टून बनाते हैं उसमें खबरें तो ठीक है, हमें खबर मिल गई, ताज़ा खबर उस पर बनाना है, लेकिन जो एक सलीका होता है, जो सीमा होती है, उसके लिए हम साहित्य जो हमारे पहले के लोग काम कर गए हैं अपने कथ्य से अपनी भाषा से
1: जी।
0: उस सबका हमको एक समझ मिलती है और समावेश करते हैं कार्टून
1: बहुत
0: में।
1: बहुत गहरी बात कह दी आपने जी, देवेंद्र जी, कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है और आसपास की घटनाओं पर।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: तो सबसे पहला कार्टून आपने कौन सा बनाया था और वो दिमाग में कैसे आया?
0: सबसे पहला कार्टून मैंने बनाया, उसका मतलब किस्सा ये है कि पहले मैं दीवारों पे दरवाजों पे सब तरफ कार्टून्स बनाया करता था।
1: अच्छा।
0: क्योंकि छोटे थे
1: तो घर की दीवारें आपने खराब,
0: घर की दीवारें बहुत खराब करते थे और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर के बड़े थे माता पिता, वो लोग उसको बहुत ही खेल भावना से लेते थे, कभी नाराज नहीं हुए।
1: अच्छा।
0: उन्हें लगा कि चलो एक कला जो है वो जन्म ले रही है और विकसित हो रही है दीवारों पर ही सही। तो ये सिलसिला चलता था और उन लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे एक ट्यूटर थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम कब तक ये दीवारें खराब करोगे, तो कुछ कागज पे बना के और अखबारों तक पहुंचो, तो ये छपने का सिलसिला होगा। तो उन्होंने ऐसी राह बताई, तो फिर हम 14 वर्ष के थे तो पहुंच गए अखबार में। तो वहां संपादक जी ने भी सब देखा, कार्टून्स देखे, कविताएं देखी, तो बोले कि हम तुम्हारे बेटा कार्टून भी छापेंगे और आज से तुम बच्चों के स्तंभ के संपादक भी हुए।
1: क्या
0: तो
1: बात है?
0: मैंने पूछा कि संपादक क्या होता है?
1: हाँ, तो 12 साल का बच्चा।
0: हाँ, वही है।
1: यही होगा।
0: तो उन्होंने ये कहा कि जो रचनाएं आती हैं बॉक्स में इकट्ठी होती हैं, कविताएं, कहानियां, चुटकुले, उनको तुम्हें देखना है और उन्हें बहुत ज्यादा, अगर वो लंबे चौड़े हों तो उन्हें थोड़ा छोटा करना है, उनकी अशुद्धियां दूर करना है, और सामयिकता के हिसाब से कि जैसे दिवाली आ रही तो ऐसा नहीं हो कि तुम होली की रचना रिलीज कर दो, तो वो करना है और कार्टून्स भी हम तुम्हारे छापेंगे। इस तरह सिलसिला शुरू हुआ और पहला कार्टून जो था, चूंकि इन दिनों करवा चौथ आ रही थी तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मैंने बनाया कि एक व्यक्ति है वो घर में बैठा अखबार पढ़ रहा है, उस व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं है।
1: अच्छा।
0: और उनकी जो पत्नी देवी हैं वो खिड़की के बाहर खड़ी देख रही हैं, हाथ में पूजा की थाली है और वो चंद्रमा ढूंढ रही है चांद की तरह। तो छोटा बच्चा एक आया और वो आके कहता है कि माँ माँ आप बाहर चांद कहाँ ढूंढ रही हो, वो तो हमारे घर में मौजूद है। उसका इशारा पिता के सिर की तरफ
1: जी,
0: था
1: जी।
0: ये इस तरह से कार्टून पहला बना था
1: जी। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपका पहला कार्टून इस रूप में आया। जब बात पहले कार्टून की

0: चलिए, तो इस कार्यक्रम का पहला गीत भी आपकी पसंद का सुन लेते हैं हम।
1: जी, पहला
0: बताइए।
1: गीत तकदीर फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है। आइए बाहर को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो देवेंद्र जी, आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आप एक अखबार में संपादक के रूप में भी लग गए, बाल संपादक के रूप में, और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस कला को आपने विकसित किया होगा। जब आप एक बाल संपादक बन गए, बहुत सारी चीजों के संपर्क में आए, खुद भी आपने कार्टून बनाना लगातार बनाए रखा, तो इस कला शैली को विकसित होने में आपकी नजर में आपको कितना समय लगा?
1: विकसित होने में इसे समय की अवधि में इसलिए नहीं मान सकते कि ये विकास होना एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है हमेशा
0: जी।
1: हम नई चीज़ों को अपने में समाहित करते हैं कला में, और वो फिर हर दिन एक नई ताजगी, नयापन उसमें महसूस होता है। और वैसे शुरू के कुछ शायद एक आध साल ऐसे लगे होंगे जब काम करते करते लगा कि ये मेरी शैली हो सकती है, मैं इस तरह ही कार्टून बनाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें सब बात आ जाती है, प्रमुखता से किन पात्रों को उभारना है, बैकग्राउंड में क्या रखना है। और फिर मैं एक मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि कार्टून का जो कोना कोना है उसमें से हास्य झल के, जाने कि एक गमला रखा है या कहीं ऊपर एक झाड़ फानूस भी है या कोने में एक पिल्ला बैठा हुआ है। तो ये सब
0: चीजें पात्र बहुत

0: कुछ कहते हैं
1: जी हाँ,
0: जब हम
1: बिल्कुल
0: इन
1: बिल्कुल,
0: कार्टून्स पर नजर डालते हैं तो,
1: ये
0: मतलब वो
1: बिल्कुल
0: जो
1: सही है।
0: पिल्ला बैठा हुआ है वो भी कुछ कह रहा ही
1: हाँ
0: होता
1: कहता है कई बार, उसे जो संवाद मान लो हम किसी बड़े से नहीं कहलवा सकते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: है ना, और उसको इनडायरेक्ट वे में कहलवाना है, तो कहीं पिल्ला बोल देता है, कहीं ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया आती है वो बोल देती है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: जी
0: तो आप जब एक खाली कैनवास या कागज आपके सामने होता है तो हर दिन की अगर हम बात करें तो पहला विचार क्या आता है आपको?
1: कागज और कैनवास जब खाली होता है, पहले तो विचार आता है, उसके बाद कागज आता है, और
0: अच्छा
1: वैसे भी खाली कागज और कैनवास सहन नहीं होता, ऐसा लगता है कि अपने को बुला रहा है और कह रहा है कि आओ मुझ पर आप कुछ ना कुछ बनाओ और रंग से आप भर दो मुझे, ताकि मैं पाठकों के अंदर में जो है रंग उसकी सृष्टि करूं, बिखेरूं रंग को
0: बहुत सुंदर। जी
1: मैं।
0: जी जी तो हर दिन आप एक कार्टून बना लेते हैं या हर दिन ये रचना होती है?
1: जी हाँ, हर दिन, क्योंकि ये समय के साथ चलना होता है, जैसे अगर आप अखबार में हैं, दैनिक अखबार में हैं, तो रोज आपको बनाना है, और अगर आप पत्रिका में हैं, पाक्षिक पत्रिका में, तो इंसान थोड़ा सा सुस्त सा हो जाता है कि आराम से आज नहीं तो अपन फिर बना दें, 15 दिन में ही तो निकलनी है।
0: बिल्कुल
1: तो मेरा कुछ मिजाज इस तरह से डेवलप हुआ कि, और स्पीड भी ऐसी बनी कि खूब सारे कार्टून एक दिन में, तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो अखबार है उसमें जब मेरी एंट्री हुई, तो वहाँ पर यही था कि जब शुरू शुरू में मैं गया तो एक पहला कार्टून बना कर दिया, संपादक जी खुश हुए कि हाँ इसको ले लेंगे, थोड़ी देर में हम दूसरा बना के फिर ले गए, वो बोले ठीक है इसे फलां पेज पे ले लेंगे, फिर पहुंच गए तो उन्होंने हंस के कहा श्रीमान जिस गति से आप बना रहे हैं उस गति से हम नहीं छाप
0: अरे
1: पाएंगे। तो
0: अच्छा
1: आप थोड़ा आहिस्ता, तो मैंने
0: मतलब आप इतनी तेजी से इतनी रफ्तार के साथ एक दिन में एक कार्टून
1: जी
0: बना
1: हाँ जी
0: लेते हैं।
1: हाँ मेरा 17 कार्टून्स एक दिन में, इसका मतलब है हाईएस्ट जो
0: सेवनटीन
1: रिकॉर्ड, हाँ
0: 17 कार्टून
1: रिकॉर्ड
0: आप एक दिन में
1: है,
0: बना
1: एक दिन
0: लेते
1: में
0: हैं।
1: बनाने का रिकॉर्ड है, मतलब कि वो भी बस तब हुआ था कि उस अखबार विशेष का जब दीपावली अंक आ रहा था, उन लोगों ने कहा कि हमें अब जल्दी से अंक निकालना है क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, तो कल से शुरुआत, मैंने कहा आज से भी कर सकते हैं, तो उस दिन के जो अगले पन्ने का कार्टून, फिर एक जो साप्ताहिक मैडम मोहिनी आती थी, बड़ा पॉपुलर कार्टून कॉलम है वो, तो उसका स्ट्रिप उसकी तैयार की, फिर उसके बाद में अंतिम पत्र के साथ का कार्टून, फिर उसके बाद में राशि के 12 कार्टून, 12 सिंह राशि का हमने बना दिया, चपरासी आया झट लेके अंदर पहुंचा, वो मशीन पे जा रहा है, तब तक हमने कन्या राशि का बना दिया, इस तरह से ये सब
0: अरे वाह
1: कार्टून्स।
0: बहुत सुंदर। तो आपके
1: तो
0: विषय क्या रहते हैं इन कार्टून्स के, हर बार क्या विषय चुनते हैं आप?
1: विषय वही जो हमारे आसपास बिखरे होते हैं रोजाना के, ये सब खबरें अखबार की या जो बाहर की जो हम घटनाएं
0: सामाजिक
1: देखते
0: विषय
1: हैं,
0: हैं,
1: हाँ सामाजिक
0: राजनीतिक
1: विषय
0: विषय
1: होते
0: हैं।
1: हैं, राजनीतिक भी होते हैं, वही सब सारे विषय होते हैं, और बस वो पाठक को गुदगुदा दें, बस कोशिश यही रहती है कि बहुत ज़्यादा दुरूह और जटिल ना हो, और इतने भी सिंप्लिसिटी उनमें ऐसे भी ना हो कि सड़क छाप नजर आए,
0: जी
1: वो चीज़ें
0: वो
1: हैं।
0: मतलब चुटकुला भी न लगे कि कहीं
1: हाँ
0: आप
1: वो
0: किसी
1: भी
0: जोक को सुना रहे हैं ना, ऐसा भी न
1: बिल्कुल
0: लगना कि
1: बिल्कुल
0: जोक्स
1: ना,
0: नहीं है, क्योंकि ये एक बारीक अंतर है जोक्स और कार्टून के मध्य
1: कार्टून्स में
0: कि
1: बिल्कुल सही
0: कार्टून
1: है,
0: कला क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो कई बार
1: बिल्कुल
0: ऐसा भी होता होगा देवेंद्र जी, आपने कहा कि आप एक दिन में 17 कार्टून्स बना लेते हैं या लगातार बहुत तेजी के साथ बनाते हैं, कभी ऐसा आया कि दिमाग खराब है या गुस्सा है या परेशान है और कोई विचार सूझ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति कभी आई आपके सामने?
1: ऐसी आ सकती थी, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने मुझे शाप देकर भेजा है, यानी कि घर में आप समझ लीजिए कि बुरी से बुरी दुर्घटना ऐसी कोई हुई हो, जबकि हमारे यहाँ पर नानी हमारी नहीं रही उस दौर में भी, और कोई हो तो 13 दिन छुट्टी लेके बैठ जाए, लेकिन हम दूसरे दिन गए, और फिर चूंकि अभी हंसी वाला मामला है तो पता नहीं कहाँ से कौन सी बत्ती जलती है, और आप वही चीज़ बनाकर आते हैं, और लोगों को मालूम भी नहीं रहता कि इनके परिवार में क्या हुआ है, जाके अपना काम करते हैं हंसी खुशी, क्योंकि वो काम है ईश्वर ने सौंपा है तो करना है, वो बात है, और
0: बहुत
1: उसको
0: बड़ी बात, यानी आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी कला के
1: जी
0: प्रति।
1: हाँ बिल्कुल
0: तो इस कार्टून की अगर हम बात करें, आज मानव जीवन में क्या उपयोगिता है जब डिजिटल युग आ गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, दुनिया भर की समाचार, दुनिया भर की खबरें और अनाप शनाप भरा हुआ है जहां,
1: हाँ
0: ऐसे
1: बिल्कुल
0: में एक छोटा सा कार्टून जो एक अखबार के कोने में, पत्रिका के कोने में कहीं होता है बैठा हुआ, उसकी क्या उपयोगिता लगती है आपको?
1: कार्टून की उपयोगिता मंदाकिनी जी शुरू से बहुत रही है, और आज के समय में तो उपयोगिता इसकी काफ़ी है, क्योंकि आज हर इंसान जिसे हम देखें वो अपने तनाव में समस्याओं में घिरा हुआ है, उसको टेंशन है, ऐसे में अगर वो किसी कार्टून के टच में आता है

0: उसके चेहरे पर जो एक हल्की सी मुस्कान आती है वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये उस कार्टून की सफलता और उपयोगिता है, क्योंकि अगर वो हंस देता है तो उससे मतलब राहत तो मिलती है उसको, और अपने टेंशन से लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए उसको एक नई शक्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, वो
1: जी,
0: कार्टून की ही देन होती है।
1: यानी
0: और
1: आज भी इसकी उपयोगिता वही
0: उपयोगिता
1: है जो
0: इसकी
1: पहले
0: बिल्कुल
1: हुआ
0: बिल्कुल
1: करती थी।
0: बनी हुई, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर हम हंस दिए तो माहौल कितना हल्का फुल्का हो जाता
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: जी
0: और नहीं हंसेंगे तो बोझिल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हंसने की जो देन है, हास्य का जो उपहार है, ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। हमने कभी वॉल्ट डिज्नी के कार्टून के अलावा किसी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखा है, या किसी चूहे
1: जी
0: को हंसते नहीं देखा है।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हंसी की बात चली है, तो क्या कार्टून में हास्य अधिक होना चाहिए
0: हाँ, ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है,
1: या व्यंग्य?
0: और अक्सर लोग इस अनुपात को नहीं कायम रख पाते हैं, लेकिन मैंने इसको एक अनुपात मैंने अपना तय कर रहा है कि उसमें व्यंग्य भी होना चाहिए और उसमें हास्य भी होना चाहिए, ताकि सभी को कुछ ना कुछ मसाला मिलता रहे। और फिर अपन कहते हैं ना कि कोई कड़वी बात भी हो तो उसको मीठी चाशनी में अगर लपेट कर प्रस्तुत करते हैं तो उसका असर अधिक होता है और उसका आनंद भी रहता है। तो कार्टून्स में भी यही किया जाता है, जैसे कि कोई समस्या है मान लीजिए, उसको अगर व्यंग के माध्यम से हम कहें तो वो कड़वा भी हो सकता है, वो क्रूर भी हो सकता है, और उस शुष्क भी होता है वो,
1: जी
0: लेकिन अगर उसमें हास्य हमने डाला है तो फिर वो सरस हो जाएगा, और बात रहेगी वही लेकिन उसका कहने का एक तरीका बदल जाएगा, तो लोग
1: बिल्कुल
0: हंसते हंसते उस चीज को ग्रहण करेंगे,
1: जी,
0: और सिस्टम सुधारने के लिए हमने जो सोचा है वो बात जहां जानी है वो पहुंच भी
1: चली भी
0: जाएगी,
1: जाती
0: बस
1: है।
0: पहुंच
1: बिल्कुल
0: जाती।
1: सही कहा आपने। और बड़ा गुदगुदाते हैं ये कार्टून्स। तो
0: हाँ वो
1: एक
0: तो
1: दो
0: है।
1: अपने कार्टून्स के बारे में बताइए आप, कि जहां आपको लगा हो कि मैंने इसमें हास्य और व्यंग का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया है।
0: जी हाँ, जैसे हम सुनते हैं ना कि ये जो अक्सर देखा भी गया है कि किसी को कुर्सी मिल गई, मान लीजिए नेता को मिल गई, तो उस कुर्सी से उसको मोह हो जाता है, उसे सत्ता का मोह भी हम कहते हैं, प्रतीक में है कुर्सी, तो उस कुर्सी को मुश्किल से ही जब वो हासिल होती है तो छोड़ता भी इंसान मुश्किल से। इस पर
1: जी
0: मैंने एक कार्टून बनाया था कि एक नेता महोदय हैं, वो अपनी कुर्सी पर कस कर बैठे हुए हैं, उसके हैंडल वगैरह पकड़े हुए, इतने उनका नौकर आया कुर्सी झाड़ने के लिए कपड़ा लेकर, तो वो कह रहा है कि मालिक आप थोड़ा सा हट जाएं तो मैं कुर्सी को झाड़ दूं।
1: जी
0: तो नेताजी ने क्या किया, ये 3 फ्रेम्स में कार्टून, दूसरे फ्रेम में वो ऊपर उठ गए, कुर्सी के हत्थे उनने कस के पकड़ लिए हैंडल और पूरे ऊपर उठ गए हैं, और कह रहे हैं कि लो भाई तुम कुर्सी झाड़ लो पर इसको छोड़ूंगा तुम्हें बिल्कुल नहीं। तो ये एक वृत्ति की तरह हमने संकेत भी दिया और हंसी हंसी में वो बात भी हो गई।
1: कह दी। तो
0: जी
1: चलिए अभी एक गीत आपकी पसंद का हम सुन लेते हैं।
0: हाँ, सागर फिल्म का गीत है जिसे SB बालासुब्रमण्यम ने गाया है, सच मेरे यार है बस
1: बस
0: वही
1: यही प्यार
0: प्यार है।
1: है,
0: हाँ
1: बहुत सुंदर और
0: जी
1: गहरा गीत है,
0: जी
1: एक दार्शनिक गीत है। कमल हासन साहब पर्दे पर दिखाई देते
0: हाँ
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: सुंदर।

0: तो देवेंद्र जी, आपके कार्टून्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्टून्स हैं जिन्हें हम जब जब पढ़ते रहे हैं तो लगता है कि गुदगुदाहट होती ही है। कार्टून्स बनाते समय एक कार्टूनिस्ट को कैसा माहौल चाहिए होता है, मतलब वो किस तरह का माहौल पसंद करता है?
1: जैसे हर रचनाकार की पहली शर्त होती है रचना करने के लिए कि एकांत हो, शांति हो, वही कार्टून के वक्त भी बनाते वक्त भी मुझे यही लगता है कि वहाँ शोरगुल ना हो थोड़ा, ताकि कंसंट्रेशन हो सके। और उसके लिए बस मैंने सोचा, हमेशा शांति तो महसूस नहीं होती, तो वहीं फिर आपकी विविध भारती काम आती है।
0: अच्छा, कैसे?
1: रेडियो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास में, वो बजता रहता है और उसमें जो संगीत की लहरियां निकलती हैं बस उसी परिधि में हमारा ध्यान होता है और बस आराम से कार्टून बन जाता है। और यही विधि जब मैं पढ़ाई करता था तब भी यही सब चलता था कि धीमे धीमे रेडियो बज रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पाठ याद कर रहे हैं। तो कार्टून के लिए भी एक तो संगीत हल्का हल्का मध्यम संगीत हो और मंदाकिनी जी की आवाज हो
0: और शुक्रिया
1: और साथ में अगर चाय का गर्म प्याला मिल जाए,
0: अरे वाह,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: आपने बहुत ही क्लासिक तरीके से बात समझाई है। वाकई ये एक माहौल एक कलाकार को चाहिए होता है, चाहे वो लेखक है, चाहे कार्टूनिस्ट है, या वो सिंगर है, कोई भी कलाकार।
1: बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटी सी जगह में बैठ के अपना काम बस हो जाता है कंप्लीट बस।
0: तो क्या कार्टूनिस्ट के जरिए जब आप लोगों को हंसाते हैं तो आपको खुद भी क्या खुश मिजाज होना पड़ता है कार्टूनिस्ट को? पहले
1: बिल्कुल होना पड़ता है, उर्वर भूमि जो होगी उसी में तो फिर अच्छा पौधा खिलेगा, फूल खिलेगा। तो हंसना हंसाना तो बहुत जरूरी है, और बल्कि मुझे लगता है कि जब आइडिया हमने जब चित्रित कर लिया या आइडिया के टच में आए तो पहले हमारा खुश होना बहुत जरूरी है। अगर हमें लगता है कि हाँ हम खुल के हंस दिए, हमें रोम रोम पुलकित हो रहा है, तब लगता है कि ये अब वेल टेस्टेड हो गया और ये जाकर ये पाठकों को जरूर ये गुदगुदाएगा और बात जो हमारी कहना है वहां तक पहुंचेगी।
0: सबसे बड़ी बात,
1: हाँ ये बहुत जरूरी,
0: मतलब दिमाग की खिड़कियां खुली होनी चाहिए।
1: खुली होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, उसमें ये नाप तोल के मुस्कान वाला काम नहीं चलता है।
0: सबसे बड़ी बात ये कि जब आप किसी विधा पे काम करते हैं तो पहले खुद को उस विधा से जोड़ने के लिए वैसा बनना पड़ता है।
1: वैसा बनना पड़ता है, बिल्कुल जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं उनमें बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो कार्टूनिस्ट हो, तो वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक कार्टूनिस्ट को खुद भी वैसा मिजाज रखना पड़ता है पहले। तो अपने कार्टून में जान फूंकने

0: के लिए देवेंद्र जी, आप किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
1: सबसे पहला तत्व तो है आइडिया, उसके बाद में कागज पर उसे उतारते हैं, वो पेंसिल की मदद से, पेंसिल, पेन, ब्रश, ये सब चीज़ें होती हैं, और उसके बाद में जब कार्टून मुकम्मल हो जाता है फिर उसे कंप्यूटर में ले जाकर वो ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। इस तरह से कार्टून ऐसे तैयार होता है। बस ये बेसिक तो यही है, बाकी जो कला जो है अगर देखा जाए तो कला हाथ में होती है, किसी टूल्स में नहीं होती है, मतलब हर वक्त नहीं होते हैं जरूरी, लेकिन जब आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं, मैगजीन्स के लिए, हाँ, जब कर रहे हैं उस वक्त में, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि पेंसिल से शुरू हो गई यात्रा, ये कंप्यूटर पर खत्म होती है, ये चीज है।
0: तो आप तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के विषयों पर कार्टून बनाते हैं, क्या कार्टूनों की कोई सीमा रेखा होती है जिसके अंदर ही एक कार्टूनिस्ट को काम करना होता है?
1: बिल्कुल होती है, और सीमा
0: थोड़ा हमें बताइए किस तरह की ये लाइन होती है, क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं।
1: हाँ, ये सीमा रेखा दरअसल वही होती है जो एक सभ्य मनुष्य को भी पालन करना चाहिए, वही कार्टून्स में भी है कि आप एक तो नैतिकता का ध्यान रखें, मानवता का रखें, और जो हम कहते हैं कि सब बराबर हैं, सारे जीव जंतु, सारे इंसान बराबर हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर मेंटेन करते हुए, और किसी पर हम मान लीजिए कि कटाक्ष भी करें तो हल्का फुल्का करें, हंसी के साथ, लेकिन ऐसा ना हो कि वो मामला तूल पकड़ ले। और हम कहते हैं ना कि जैसे हास परिहास वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का उपहास करना वो चीज बहुत बुरी है, तो कार्टून में इन चीजों से बचा जाता है, तो बचना चाहिए।
0: ये एक सीमा रेखा है।
1: हाँ, ये सीमा रेखा है, किसी का असम्मान भी ना हो किसी का, ये चीज भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कार्टून में भाषा, किस तरह की भाषा आप ले रहे हैं वो भी देखना है, कि कोई बहुत ज्यादा क्लिष्ट ना हो और बहुत चलता हो लैंग्वेज भी ना हो, और कार्टून का जो कैप्शन होता है वो थोड़ा छोटा हो, बहुत ज्यादा विस्तार भी उसमें ना हो, ये सब चीजें हैं। एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं मिलती रही, शुरू में बहुत मिली, अच्छी ज्यादा मिली, जिनसे कि इंसान प्रोत्साहित होता है और आगे बढ़ता है। आपने बालकवि बैरागी जी का नाम सुना होगा, है ना, सुप्रसिद्ध गीतकार और सांसद। तो बालकवि जी ने मेरा एक कार्टून देखा था जब मैंने बनाया था मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर तत्कालीन, तो उस कार्टून को देखकर उन्होंने, वो कार्टून अप्रिशिएट भी बहुत हुआ था, और बालकवि जी का मुझे पत्र मिला
0: जी,
1: प्रिय देवेंद्र तुम बहुत दुष्ट हो,
0: अच्छा
1: तुम्हें पता नहीं तुम्हारा यह कार्टून लोगों ने फ्रेम करवा कर रख रखा है, और किसी भी कलाकार के खाते में यह बहुत बड़ा जन प्रतिदान है,
0: अरे
1: मेरी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, मतलब बाल कवि बैरागी साहब आपको ये बात कह रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और देखिए उनके कहने में भी कितना अपनत्व है और गहराई है।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है,
0: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक कार्टून जैसी छोटी सी विदा है, बहुत गहरी विदा है, उसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार, कलाकार भी
1: देखते हैं,
0: देखते सुनते हैं और सराहते हैं।
1: सही बात है।
0: चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
1: बस यहाँ बालकवि बैरागी जी का लिखा हुआ रेशमा और शेरा फिल्म का गीत कैसा रहेगा?
0: बिल्कुल अच्छा रहेगा।
1: तू चंदा मैं चांदनी।
0: आइए सुनते हैं बालकवि बैरागी का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: तो देवेंद्र जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना अभी बैरागी साहब का लिखा हुआ। तो आप चूंकि इतने कार्टून्स बना चुके हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कोई कार्टून जिसके बारे में आप बताना चाहें जो आपको बेहद पसंद हो।
1: मेरी पसंद के तो बहुत सारे कार्टून्स हैं। अभी मैनेजमेंट पर बनाया कार्टून याद आ रहा है मुझे,
0: बताइए
1: कि एक दादाजी हैं, ये तीन फ्रेम्स में बनाया हुआ था ये, कि एक दादाजी हैं वो लेटे हुए और अपने पोते से बोल रहे हैं, कम उम्र का पोता है, कि बेटा मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे पैर। तो कहता दादाजी मैं अभी आता हूँ। और फिर वो जब लौटा तो उसके हाथ में आरी थी काटने वाली, आरी लेके आया वो। तो दादाजी सहम के बैठ गए पैर सिकोड़ के। आरी क्यों? बोले दादाजी हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते हैं किसी भी काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उसके बाद उस काम को पूरा करो।
0: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और एक कार्टून और भी ध्यान आ रहा है कि जैसे कार्टून कई बार ये घटनाओं पर होते हैं, खबरों पे होते हैं, ट्रेंड्स पे होते हैं, मनोविज्ञान पे भी कार्टून बनाने मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि किसी किशोरी का मनोविज्ञान, ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो उस पर कार्टून मैंने बनाया जो महिलाओं के स्तंभ में छपा था
0: जी,
1: कि एक टीनेजर कन्या है, वो अपने घर में बिस्तर पर औंधी लेटी हुई कुछ कविताएं वगैरह लिख रही है
0: जी।
1: पास में गुलाब के फूल भी हैं, डायरी है ऐसा, और वो अपने सपनों में खोई हुई है, और कुछ पंक्तियां भी हैं जो हम बाद में देखेंगे क्या वो कह रही है। और पंक्ति ये है कि सपनों में बस गई है एक मादक गंध, सपनों में बस गई है एक मादक गंध, मानो दूध उफन गया हो कहीं। और उस कार्टून में पीछे बताया गया है कि गैस पे वास्तव में दूध चढ़ा हुआ है और उफन के और बह रहा है और पूरे फर्श पे फैला है। और इसमें मजा और कि दरवाजा खुला और उनकी माता जी सब्जी वगैरह लेके आ रही हैं और उन्होंने दूध देखा तो अंगारा हो गई वो।
0: जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी गहरी बात आपने कही कि एक किशोरी मन की क्या जो है सोच होती है, मनोविज्ञान क्या होता है किशोरपन का, वो आपने इसमें बताया, बहुत सुंदर। एक साधारण स्केच से लेकर अंतिम प्रकाशित कार्टून तक की आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है?
1: उस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विचार। उस विचार में ध्यान ये रखते हैं, क्योंकि कई बार विचार ऐसा भी आता है, मान लीजिए उसको पहले मैं ये कहा करता था साथियों में कि मुझे शेर जैसा विचार आता है और उसको मैं पीट पीट कर बकरी जैसा बनाकर पेश करता हूँ। तो ये जो बकरी जैसा बनाना जो है, ये दरअसल एक सामंजस्य वाली चीज़।

0: है,
1: जी
0: और ताकि जिससे सब लोग खुश रहें और उतना तीखापन महसूस ना करें कि बात बिगड़ जाए, तो उस तरह से कार्टून बनता है। तो पहले विचार आया और विचार के बाद में, जैसे हाँ आर के लक्ष्मण साहब ने भी कहा था
1: जी
0: कि पहला विचार जो आता है उसमें मत आप उलझ जाओ, वो आपको लुभाता है और ललचाता है, इसलिए उससे आप और आगे चलो, सेकेंड थाट, फाइनल थाट, ऐसे करके, तो उसमें उसका रिफाइनमेंट होता है, आगे वो चीज़ें चलती हैं। तो ये प्रक्रिया मेरी भी है कि पहला विचार आया, उसको अलग रखा, फिर और उस पर सोच रहे हैं, अलग अलग कोण से सोच रहे हैं, अलग अलग उसमें सिचुएशंस भी बनती हैं, और फिर जब वो रिफाइन होकर वो आता है तो अच्छा लगता है देख के, मन खुद कहता है कि नहीं ये चीज़ बढ़िया है और ये आगे
1: जी
0: बढ़ना चाहिए ये,
1: जी बहुत
0: ऐसे
1: सुंदर, बिल्कुल यही काम करने का भी तरीका है कि आप अगर विचार पे अटक कर रह गए तो फिर
0: पहले
1: वहीं
0: विचार।
1: खड़े रह जाते
0: हाँ बस
1: हैं।
0: बस बस,
1: तो आज के डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कार्टूनिस्ट के काम करने का क्या तरीका बदला है?
0: तरीका तो नहीं बदला है, ये है कि
1: विचार बदला होगा, सोचने
0: विचार
1: की
0: भी
1: होगी।
0: बदला है, और उनमें विचारों में भी आज जो हम कहते हैं ना एक गरिमा उतनी नहीं, आजकल जो हो रहा है वो गरिमा उतनी नहीं, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि भाषा की भी खूबसूरती एक होती है कार्टून के अंदर, वो है। और पात्रों की जो विविधता, जो जैसे हम चुनते हैं कि हर बार रोज एक ही एक तरह का आप बना रहे हैं, सूटेड बूटेड ये वो, उसके बजाय आप लोक जीवन में उतरें, बाहर देखें सड़क पे कितने तरह के पात्र दिखाई देते हैं, तो कभी बात उनसे भी कहलवाएं, ये होता है, अलग अलग पात्र अलग अलग बात कह रहा है, तो उसका मजा आता
1: तो लोक जीवन से जुड़ा कोई कार्टून आपको याद हो, आपका बनाया हुआ?
0: है। लोक जीवन से जुड़ा मेरा कार्टून एक ध्यान आ रहा है मुझे, वो भी थोड़ा इस तरह का है कि जैसे जब वीमेंस लिब का जो चला था, शुरुआती जोर था, तो उसमें मैंने बताया कि एक खेत में किसान बैठा हुआ है, फुर्सत के लम्हों में हल चला के बैठा है, और पास में उसकी जो पत्नी है वो पोटली में रोटी वगैरह लेके आई है और प्याज और है ना मिर्ची ये सब अचार, तो वो खाना खा रहा है और वो पंखा चल रही है उसको बैठे हुए, है ना कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें तो एक तो आपने पूरा बैकग्राउंड दिखाया, झोपड़ी दिखाई, खेत दिखाया, हल दिखाया, उसका स्त्री और पुरुष का पहनावा, तो इसमें लोक जीवन की, लोक पहनावे
1: जी
0: की झलक
1: जी
0: मिली।
1: जी
0: अब उसके बाद उस सड़क से दो आधुनिकाएं जा रही हैं कार से, तो उनने कार रोकी और ये दृश्य देख के वो कह रही हैं कि ये कितनी अभागी औरत है, ये मतलब नारी स्वातंत्र्य के विचार से एकदम अनजान है, चलो इसे हम चल के और उसकी दासता से मुक्त कराएं पुरुष की दासता से, तो ये ऐसी चीजें
1: बहुत बड़ा व्यंग्य, बिल्कुल सही कहा आपने कि दो स्त्रियों की मनोदशा आपने बताई
0: हाँ
1: कि
0: बस
1: जो
0: बस बस
1: ग्रामीण परिवेश की स्त्री जो सुख अनुभव कर रही है,
0: अनुभव कर रही है
1: आधुनिक परिवेश की स्त्री उस सुख को नहीं जान पा रही है और
0: जी
1: उसको दास्ता बता रही है।
0: हाँ, तो ये जो विसंगति है बस इसको
1: हाँ
0: ये उसमें दिखाने की कोशिश
1: बहुत
0: हुई है।
1: सुंदर, बहुत सुंदर देवेंद्र जी, बहुत सुंदर। तो अगर मैं देवेंद्र जी से ये पूछूं कि इतने कार्टून्स आपने बना लिए, लगभग कितने कार्टून्स बना लिए होंगे?
0: ये 60,000 से ऊपर हो चुके हैं, ये
1: 60,000 से ऊपर
0: से
1: कार्टून आप
0: ऊपर
1: बना चुके
0: हैं।
1: हैं अब
0: जी
1: तक,
0: जी जी जी
1: और ये
0: इनका
1: विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं या इन पर आपने किताब भी लिख ली है?
0: ये किताब में तो ये नहीं आ सकते, अभी मेरे तो करीब 6-7 व्यंग्य संकलन ही निकले हैं, बाकी ये है कि इनके ऊपर, हाँ आपको ये बता दूं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी यूएसए का वो मिला है,
1: अरे वाह,
0: हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड कार्टून्स उसके ऊपर
1: अच्छा, तो साठ
0: तो
1: हजार कार्टून आपने आज तक बना लिए हैं,
0: जी
1: इतने विचार, यानी 60,000 विचार तो आपको आ ही गए, और
0: आ
1: ना
0: ही
1: जाने
0: गए
1: अभी कितने विचार और आने हैं।
0: बिल्कुल
1: कमाल,
0: सही बात है,
1: बहुत सुंदर, अद्भुत है ये बात, मतलब
0: हाँ
1: 60,000
0: कि
1: कार्टून
0: हाँ
1: कोई छोटी मोटी बात नहीं
0: जी
1: है
0: हाँ
1: ना। 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 के आंकड़े तो हम
0: हाँ
1: सुनते ही हैं 10,000 तक के, लेकिन 60,000 कार्टून बनाए रखना और उनको मेंटेन करना बिना किसी विवाद के,
0: हाँ जी
1: ये कार्टूनिस्ट की बहुत बड़ी सफलता है। चलिए आपसे और बातचीत करने वाले
0: जी।
1: हैं, एक गीत सुन लेते हैं, गीत बताइए।
0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, फिल्म का नाम है बातों बातों में,
1: बहुत सुंदर गीत है ये,
0: हाँ
1: किसकी
0: अमित
1: आवाज
0: कुमार
1: है?
0: और आशा भोसले जी की आवाज है
1: जी, तो चलिए सुनते हैं
0: जी।
1: आपकी पसंद का ये गीत।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
1: चांद की मिलाते ही सुने ही बात हो गई।
0: ओहो ओहो ओहो, ओहो।

0: देवेंद्र जी, जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी, पहले हम बचपन में चंपक और लोटपोट जैसी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे और उसमें एक सीरीज चला करती थी कार्टून की, तो क्या ऐसी कोई सीरीज चलाने का आपने भी काम किया है कि एक लंबी सीरीज चल रही है किसी कार्टून पर, किसी विषय पर?
1: जी हाँ, मैडम मोहिनी नाम से एक सीरीज मैंने बनाई थी, वो 600 के लगभग उसकी आवृत्तियां छपी हैं, तो वो बहुत पॉपुलर था, वो परिवारों में, महिलाओं में, सभी लोग उसे पढ़ते थे।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैडम मोहिनी एक बताई गई है, एक तरुणी, तो वो डबल डेकर स्ट्रिप होती है, जो एक स्ट्रिप ऊपर एक उसके नीचे स्ट्रिप, उस तरह से। तो उसके कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैडम मोहिनी बैठी हुई हैं और वो अखबार पढ़ रही हैं, इतने में उनका भतीजा आता है कि मौसी मौसी मुझे जूते पहनना है, जल के जूते पहना दो। तो बोलती है कि नहीं नहीं जूते क्या पहनना, अब 4 दिन की तो ये बारिश है और ये वो, इस तरह बरसाती जूते तुम बोल रहे हो, तो रहने दो। फिर वो कहता है कि अच्छा तो मुझे एक नया बस्ता ही दिला दो स्कूल जाने के लिए। तो बोले अरे 4 दिन का तो तुम्हारा सेशन है, उसमें क्या नया बस्ता लोगे? तो बोले आप ये क्या अखबार में क्या पढ़ रही हो? बोले अरे झपट मत, मैं तेरे लिए मौसा जी ढूंढ रही हूँ। तो अखबार लेके भाग जाता है और कहता है कि 4 दिन का तो जीवन है, इसमें जीवन साथी क्या ढूंढना।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: ऐसी इस
0: ये
1: तरह से
0: सीरीज लंबी चली,
1: ये सीरीज लंबी चली थी, हर हफ्ते
0: लोगों ने काफी पसंद किया, खासतौर से महिलाओं ने।
1: जी जी जी।
0: तो क्या महिलाओं के खत आपके पास आए, महिलाओं के फोन आपके पास आए, कोई महिला आपसे मिलने आई कि देवेंद्र जी आपने इतनी खूबसूरत ये सीरीज चलाई है और इसे पढ़ के हम तो गुदगुदा जाते हैं?
1: हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, और उसमें अखबार में जो प्रतिक्रियाओं का एक कॉलम था उसमें बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी, उसमें वो लिखते थे कि आज देवेंद्र जी ने राह बताई, ये किया वो किया, ऐसे अपनी अपनी टिप्पणियां सब
0: बिल्कुल,
1: करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो लगता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं या आज भी पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो वो कार्टून जरूर

0: तलाशते थे सबसे पहले कि अखबार में क्या आया है, ये एक निगाह रहती थी कि आज कौन सा कार्टून आया है किसी का भी।
1: हाँ।
0: तो ये निगाह हमेशा रही। तो आपके परिवार में जो और अन्य लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, क्या उनका भी कभी विरोध हुआ कि क्या दिन भर आप कार्टून बनाते रहते हैं और हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, आप दिन में इतने अपने रिकॉर्ड तोड़ कार्टून बना लिए हैं, तो ऐसा कभी घर पर कोई कार्टून बनाया आपने पति पत्नी विवाद पर या बच्चों के विवाद पर?
1: उन लोगों से मतलब मतभेद का ऐसा अवसर आया नहीं, क्योंकि मैंने ये अखबार में जैसे जॉब रहता है तो उतनी देर के लिए आप बाहर गए, वहाँ कार्टून आप बना के चले आए, और फिर उस चीज को घर में मतलब फिर मैं बताता भी नहीं, कोई पूछे भी कि आप देवेंद्र हैं तो मैं कई बार सोचना पड़ जाता है कि क्या मैं हूं क्या। और फिर जैसे कि अपन लोग बात कर रहे थे कि सबका साथ और सबको लेके चलना, ये जो चीज होती है, तो बच्चों के साथ आप गए मान लीजिए स्कूल लेकर जा रहे हैं, उन्हें घुमा रहे हैं, तो उसमें से भी आपके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। पत्नी देवी को लेकर आप स्कूटर पे गए सब्जी खरीदने, तो कुछ तो भावताव होना, ये सब चीजें तो वहां भी आप देखते हैं कुछ मिलता है मैटर। जैसे मैंने कार्टून बनाया था कि जैसे दल बदल वगैरह ज्यादा होता है ना, तो उसमें मैंने बनाया था कि एक सब्जी वाली बैठी हुई है और तो जो ग्राहक है वो उससे कह रहा है कि भाई आपके जो आलू हैं या विधायक हैं वो देखो लुढ़क कर उधर टमाटरों में मिल रहे हैं।
0: जी,
1: ऐसी चीजें बस ये रोजमर्रा की जो होती हैं उनसे
0: बिल्कुल, यानी कि एक कार्टूनिस्ट को बहुत ही पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है और हर समय जागरूक रहना होता है कि कब कहां से क्या मैटर मिल सकता है और कहां कैसा कार्टून बनाया जा सकता है। तो कार्टून की दुनिया में जो आना चाहते हैं, कार्टूनिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जो नए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उन्हें बस मेरा यही संदेश है कि इस विधा को आप भले ही प्रोफेशनली ना अपनाएं, लेकिन शौकिया अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है तो उसको आप लेकर चलें, और क्योंकि ये विधा सबसे पहले आपको खुश रखेगी, फिर आपके सराउंडिंग को खुश रखेगी, इसलिए आप खुश रहने का एक बहुत अच्छा है नुस्खा है, कैप्सूल है, तो इसको लेके आप साथ में चलें, और इस विधा को साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमेशा है, क्योंकि हंसी की जरूरत हमेशा है, अच्छे संदेशों की जरूरत हमेशा रहेगी।
0: बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी, आपके आदर्श कौन है, आपने इतना लंबा समय इस दुनिया में बिताया है कार्टून की दुनिया में, आपके अपने आदर्श कौन रहे, किन से प्रभावित होकर आप आगे बढ़ते रहे?
1: मेरे आदर्श एक तो जीवन में सबसे पहले पिताजी से मैंने प्रेरणा ली, मेरे पिताजी जो हैं
0: जी,
1: और उन्हें मैंने कार्टूनों में बनाया भी है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि घर में जब बच्चा देखता है तो सबसे पहले पिताजी नजर आते हैं,
0: जी।
1: तो जो कार्टून मैंने आपको अभी सुनाया था करवा चौथ वाला, उसमें हालांकि पिताजी के सिर पे बाल हैं तो उन्हें मैंने बनाया था वहां पर, और उन्हें पिताजी को लेकर कार्टून बनाने के अलावा उनसे बहुत सी चीजें मैंने सीखी। एक तो जो हास्य रस, उनमें काफी हर चीज में वो हंसते हैं, सामाजिक बहुत हैं, रिश्ते निभाते हैं, एक तो पिताजी से प्रेरित हुए, फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वही आर के लक्ष्मण जी जो सबके प्रेरणा स्रोत चाहते होते हैं, लक्ष्मण जी हुए, सुधीर दर और मारियो मिरांडा साहब ये, और बाहर के कार्टूनिस्टों में उडेर जो और डेविड लो और अपने वॉल्ट डिज्नी वो तो हैं ही, ये सब चलते हैं, तो इन लोगों से कुछ ना कुछ देखकर और लगा, इनकी विशेषताओं को देख के लगा कि वो उनमें से कुछ हम सीखें।
0: तो क्या लगता है आपको कि जो ये हमारे विदेशी कार्टूनिस्ट हैं उनमें और हमारे देश के कार्टूनिस्ट की विधा में, सोच में, विचार में कोई अंतर महसूस किया आपने?
1: हाँ, अंतर तो होता है, क्योंकि विदेशी लोग जो है उनके कार्टून्स भी विषय उनके उस तरह के होते हैं और वहाँ के लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं, क्योंकि वो हास्य प्रिय होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें काफ़ी डेवलप्ड होता है उसकी तुलना में। अच्छा, हमारे यहाँ विविधता ज़्यादा है, इतना हम लोग देखते हैं लोक जीवन में और सभी दूर,
0: वहाँ विविधता
1: हाँ,
0: नहीं है
1: उतनी नहीं,
0: लेकिन
1: है।
0: लोगों में जागरूकता बहुत है, आम आदमी से जुड़े हैं वो।
1: हाँ, हाँ।
0: हमारे दैनिक जीवन में ये कार्टून नहीं होते हैं,
1: नहीं होते हैं, तो जैसे हम बताते हैं हमारी फिल्मों में और वहाँ की फिल्मों में जो फर्क होता है, हमारी फिल्मों में गाने भी डाले जाते हैं, ये सब चीजें, तो उसी तरह से कार्टून के लिए मैंने जो अपनी एक शैली विकसित की है तो उसमें सभी की थोड़ी कविता भी होती है, थोड़ा नाट्य भी होता है और भाषा का भी आनंद, और बाकी स्केच तो है ही, ताकि एक अच्छा भरा पूरा उसमें एक मटेरियल सबको मिले।
0: तो देवेंद्र जी,

0: चलते चलाते हम बस आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भविष्य में आप अपने कार्टून के माध्यम से क्या नया संदेश देना चाहते हैं? कुछ ऐसे कार्टून्स जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं जिस पर आप काम कर रहे हो?
1: हाँ, नया विचार यही है कि जो आजकल रिश्ते जो टूट रहे हैं, और यानी हम देख रहे हैं कि पहले तो केवल शादियों का मौसम आता था, है ना, उसका भी सीज़न होता था कि हाँ भाई अब देव जाग गए या सो गए,
0: बिल्कुल
1: और अब देख रहे हैं कि हम तलाकों का मौसम चल रहा है और वो 12 मासी है। तो उन चीज़ों को लेकर कि ये रिश्ते ना टूटें, इंसान समझदारी से इन्हें सहेजे, और जो हम देख रहे हैं कि माता पिता अकेले होते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें एक बड़ी एक सामाजिक समस्याओं के तौर पर छूती हैं मन को। तो इन्हें लेकर काम करने की मेरी इच्छा है कि कार्टूनों के माध्यम से एक सीरीज़ में ऐसी तैयार करूं और वो प्रदर्शित हो और शायद इससे कुछ असर हो, मेरा भी एक आहुति मेरी भी रहे इसमें,
0: जी
1: सुधार में।
0: जी बहुत
1: ये
0: सुंदर,
1: बात है।
0: बहुत ही शानदार और एक समसामयिक विचार और गहरे विचार हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि
1: जी
0: माता पिता हमारे लिए क्या मायने रखते हैं और
1: हाँ
0: हम जो है बड़ी फैमिली में रहने वाले लोग आज कैसे अलग अलग हो गए हैं और ज़िंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो रिश्तों की बात आपने कही कि रिश्तों को बनाए रखना, सहेजना बहुत ज़रूरी है, इस पर आप काम करना चाहते हैं। स्वागत है और आपको हम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम
0: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।
3: आज के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिक भीड़भाड़ वाले 7 रेलवे नेटवर्क को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लगभग 2000 किलोमीटर का 4 लेन का काम पहले ही पूरा हो चुका है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
0: मंत्रिमंडल ने कुल 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। ये परियोजनाएं हैं खड़गपुर से झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी से पैंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर से पैंड्रा रोड तक तीसरी लाइन। लाइन की क्षमता बढ़ने से आवाजाही में काफी सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की संचालन क्षमता और सेवा की विश्वसनीयता बेहतर होगी। मल्टी ट्रैकिंग के ये प्रस्ताव कामकाज को सुव्यवस्थित करने और भीड़ भाड़ कम करने में सहायता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की और दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा जो भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ हों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्त चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। सुश्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। वित्तीय सूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिटयूनिक्स, डीजीफिनेक्स, पायोनेक्स, व्हाइटबिट, फिक्स्ड फ्लॉट और ट्यूबिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और यूआरएल हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 13 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगिताओं का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। बेन शेल्टन ने अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। दोनों अमेरिकी

0: खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपये की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अब पेश है फिल्म संगीत।

तुम्बिन फिल्म के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं सिर्फ तुम फिल्म का गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल समीर के धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अब एक गीत सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में। दिल का क्या कसूर फिल्म के इस गीत में बोल हैं समीर के और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
2: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
3: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. पूरा दिन काम करने के लिए आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा के लिए नाश्ते से बेहतर और कुछ नहीं। इसलिए नाश्ते को दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है। दरअसल रात के खाने के बाद हम काफी लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, ऐसे में सुबह का नाश्ता पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। खाली पेट बनता है एसिड। हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा तो खाली पेट रहने से पेट में जो पाचन रस उत्पन्न होते हैं उनसे एसिड बनने लगते हैं। इससे एसिड से हमारी अंतों को तो नुकसान पहुंचता है, साथ ही हम कमजोर भी होने लगते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो नाश्ता न करने का अर्थ है शरीर को पर्याप्त ऊर्जा न मिलना।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: अगर नाश्ता नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद खाने की इच्छा होती है और फिर हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। ऐसे में हम भूख मिटाने के चक्कर में हम अनहेल्दी फूड लेने लगते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का वह ईंधन है जिससे हमारा शरीर ठीक से काम करता है। विभिन्न कार्यों का करने के लिए मस्तिष्क और स्नायु तंत्रों को इस ईंधन की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति न होने पर बॉडी अनहेल्दी फूड खाने लगता है। इस तरह से अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं लेते हैं तो इसका असर आपके मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें बॉडी भोजन को एनर्जी में बदलती है ताकि बॉडी का कार्य ठीक से चलता है। नाश्ता पूरी रात की नींद के बाद मेटाबॉलिज्म के काम पर लगता है। अगर नाश्ता ना किए जाए तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया धीमी होने के कारण कैलोरी जमने के स्थान पर बॉडी में जमा होने लगता है। युवा लोग मानते हैं कि अगर वो सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका सोचना गलत है। नाश्ता न करने का परिणाम युवा अवस्था में भी कम नुकसानदेही नहीं है। अगर पौष्टिक नाश्ता उचित मात्रा में न लिए जाए तो शरीर कमजोर हो जाता है और वो दिन भर काम करना मुश्किल हो जाता है। नाश्ता न करने से डायबिटीज व मोटापे जैसे परेशानियां भी घेर सकती है। दिन का भोजन कम मात्रा में हो तो चल सकता है, लेकिन सुबह का नाश्ता अच्छी मात्रा में

पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक होना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, सिर्फ ये कहावत तो आपने सुनी होगी, ये महज एक कहावत नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत है। अक्सर महिलाएं सुबह के नाश्ते को नजरअंदाज करती है व घर के लोगों के खान पान पर तो पूरा ध्यान देती है, लेकिन स्वयं को हमेशा भूल जाती है। उनके लिए भी ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। सुबह का नाश्ता दिन भर की एनर्जी तो देती है, साथ ही यह शरीर को संतुलित भी बनाए रखता है। इसीलिए चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो या फिर महिला,

चर्चा नहीं होती। साथ ही नाश्ते में न्यूट्रिशन फूड न लेने की वजह से वजन बढ़ता है, जिसे कम करना आसान नहीं होता। बॉडी में एनर्जी और दिन भर स्फूर्ति के बनाए रखने के लिए ताज़े और पौष्टिक तत्वों से युक्त नाश्ता करना चाहिए। ऐसा नाश्ता लेना चाहिए जो ईंधन की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त नाश्ता सबसे बेहतर है। यह आहार ग्लूकोज को धीरे धीरे रक्त प्रवाह में जाने देता है, जिसे आप लंबे समय तक चुस्त बने रहते हैं।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट के फायदे सुन लीजिए एक बार फिर। एक रिसर्च के अनुसार ब्रेकफास्ट करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है, शरीर में ऊर्जा का स्तर बरकरार रहता है, इंसुलिन का स्तर सामान्य रखने में मदद मिलती है, डायबिटीज के रोगियों के लिए अत्यंत जरूरी है, मोटापा व शरीर के वजन नियंत्रण रखने में मदद मिलती है, शरीर की पाचन क्षमता ठीक रहती है, मस्तिष्क को पर्याप्त पोषण व ऊर्जा मिलती है व शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। अपनी अपनी पाचन शक्ति व कार्यशैली के अनुसार लोग हल्के या भारी नाश्ता करना पसंद करते हैं। एक सामान्य नाश्ता ऐसा हो जो आपकी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करके साथ साथ शरीर को पोषण भी प्रदान करे। अर्थात लंच या डिनर की तरह ब्रेकफास्ट भी संतुलित होना चाहिए। यह आपके पूरे दिन की कैलोरी जरूरत का 25% होना चाहिए। स्प्राउट्स यानी अंकुरित चने, मूंग, सोयाबीन आदि को ले सकते हैं। दलिया या खिचड़ी, रोटी या सब्जी, इडली, पोहा, डोसा आदि, पराठा, दही आदि। बच्चों को उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए हेल्थी ब्रेकफास्ट दे। वेल डियर फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। दिस इज चेतन सिंह। बाय फॉर नाउ। आई विल गेट बैक टू यू विथ मोर सच यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन, बाय।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी, सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा, पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी NCERT की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओं, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग

0: 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देख कर सोचते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है, एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF, और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: Hello, children. How are you?
2: We are good, sir.
3: I am good, sir.
4: We are good.
1: How are your parents, brothers, sisters, and grandparents?
2: All are good.
1: All are well? That's nice. And what about your pets?
4: Sir, I have a dog.
5: Sir, we have a cat.
1: Okay. So how does a cat call?
2: Meow, meow, meow.
1: Do you think that pets are very special members of your family?
2: Yes, sir.
4: Sir, my pets are my friends.
5: They are very lovely.
3: My cat is very cute, sir.
1: So nice. Tell me, do you like traveling?
2: Yes, sir.
4: I like to go different places on my holidays.
5: I feel very happy when I go to my grandparents.
1: That's great. How do you go?
5: We go to see grandparents by bus.
1: That's very fine. Will any one of you tell me, how do you travel?
6: We travel by train, sir.
7: I like sitting on the window and to look outside.
1: Okay, anyone else?
8: Once we traveled by plane.
9: It was a great fun.
1: That's very good. What do you like most in the plane?
9: I like to see the clouds.
1: That's so beautiful. Well, so children, we have so many modes of transportation. We travel by bus. We travel by
2: car,
10: train,
11: plane.
12: We travel by boat also.
1: Good. So now let us listen to a beautiful poem which tells us about how do we travel. Would you like to listen?
2: Yes, sir.
1: Okay, children. So I will read this poem and you have to repeat after me. Fine?
2: Yes, sir.
5: Fine.
1: So here comes the poem. Take a bus or take a train.
2: Take a bus or take a train.
1: Take a boat or take a plane.
2: Take a boat or take a plane.

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे,
2: मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
5: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे। तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
6: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
7: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
8: अरे हाँ, गाड़ी रुको।
7: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
8: हाँ, अब बन गई रेल।
6: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
8: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
9: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
8: हाँ, हाँ दादाजी ये ठीक रहेगा।
9: चलो
6: रेल चली भाई रेल चली,
9: एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। हा, अरे अरे भाई

0: मैं तो थक गया, अब रेलगाड़ी रोकनी पड़ेगी।
1: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
0: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
1: अच्छा
0: अच्छा अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
2: दादाजी मैंने देखी है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
0: अच्छा तो चलो मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
1: अरे वाह,
0: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
1: हाँ आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
0: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
3: अरे दादाजी स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
0: अरे भैया तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देख आएंगे।
3: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
0: बैठो बैठो
3: आओ,
0: जल्दी करो जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो उतरो बच्चों, जल्दी करो गाड़ी आने ही वाली है।
3: उतरो उतरो
2: रानी, जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
0: हाँ हाँ उतरो बेटी।
4: बच्चों रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
1: दादाजी यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
0: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा, कुछ जाने वाले हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
0: अच्छा बच्चों वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
1: हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई।
2: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
0: हाँ बच्चों देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
1: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
0: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
1: अच्छा। अरे हाँ रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
0: हाँ हाँ बच्चों चलो चलो वापस घर चले।
1: हाँ हाँ दादाजी चलिए।
6: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है, छुक छुक छुक छुक छुक छुक

सीटी बजाती है, इंजन आगे डब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक।

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड

0: झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनर कुमार देसानायक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डिजी फिनेक्स, पायोनेक्स, व्हाइट बिट, फिक्स फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और यूआरएल हटाने का भी निर्देश दिया गया है। कीनिया के शिक्षा और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के मानवाधिकार आयोग का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य मानवाधिकारों को शिक्षा, युवा कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण से जोड़ने के भारत के अनुभवों को साझा करना था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राजस्व आसूचना निदेशालय ने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भावना ने महिला रिकर्व, सरिता ने पैरा कंपाउंड व्यक्तिगत और स्वाति चौधरी ने W1 व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में तोमन ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।

महंगे बिल से हैं परेशान तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपये की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800-44444 पर।

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: Gems of India Challenge.

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे आधार जैसा ना कोई,
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: अरोड़ा प्लाईवुड
1: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
0: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰੀਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने वाराणसी से देशभर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। हरियाणा और चंडीगढ़ में राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ पर पोषण शपथ एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ राज्य स्तर पर सहयोग को और

0: मजबूत करने की संभावना जताई। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नवाचार, उद्यमिता और सहयोगी स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने पर बल दिया और रेलवे प्रशासन ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य को तेज करने के लिए कल से लगभग 35 दिनों के लिए विशेष ब्लॉक प्लान लागू किया। कई प्लेटफॉर्म बंद रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज वाराणसी से देशभर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है, जो हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है।
1: सुपोषित बचपन, स्वस्थ मातृत्व और समृद्ध परिवार ही विकसित भारत 2047 के संकल्प की सबसे मजबूत नींव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हर वर्ष यह आयोजन हमें प्रेरित करता है कि हम पोषण के प्रति निरंतर जागरूक रहें। इस वर्ष पोषण माह का हमारा संकल्प है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, जिसमें हमारा विशेष ध्यान विविधतापूर्ण और प्रोटीन युक्त आहार, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पौष्टिक भोजन, ECCE और गर्भवती व धात्री माताओं की समग्र देखभाल पर केंद्रित रहेगा।
0: चंडीगढ़ में भी आज पोषण शपथ एवं जागरूकता रैली के साथ 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ किया गया। प्रतिभागियों को शपथ के बाद संतुलित आहार, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा कुपोषण की रोकथाम के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा वाराणसी से पोषण माह के शुभारंभ का वेबकास्ट के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। अभियान के तहत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न जागरूकता एवं परामर्श गतिविधियां आयोजित की गईं। देश के साथ हरियाणा में भी आज 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ हुआ। पलवल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर के मार्गदर्शन और जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी की देखरेख में जिले भर में पोषण जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। आज जिले भर में पोषण शपथ एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और माताओं ने पोषण शपथ लेकर अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर महीने भर आयोजित होने वाली गतिविधियों को कैलेंडर भी जारी किया गया। उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने जिले के सभी नागरिकों, विशेषकर माताओं और अभिभावकों से अपील की है कि वे 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ें और पोषण माह को जन भागीदारी से सफल बनाएं। उन्होंने सभी से बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने तथा कुपोषण के खिलाफ सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। बैठक में हरियाणा और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार, कृषि, हरित ऊर्जा, खेल, पर्यटन, निवेश तथा युवाओं को वैश्विक अवसर उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। हरियाणा और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, कृषि अभियांत्रिकी, स्वच्छ ऊर्जा और लोकनीति जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, छात्र और संकाय विनिमय कार्यक्रम तथा संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत और व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। ऐसे में हरियाणा के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ राज्य स्तर पर सहयोग को और मजबूत करने की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ में नवाचार, उद्यमिता और सहयोगी स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने पर बल दिया। वे आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के उद्योग विभाग द्वारा स्टार्टअप नीति 2025 के तहत नए सचिवालय में आयोजित स्टार्टअप अनुदान वितरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री कटारिया ने कहा कि स्टार्टअप और इनक्यूबेटर को समय पर वित्तीय एवं संस्थागत सहायता प्रदान करने से उभरते उद्यमों को अपने विचारों को विस्तार करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के आर्थिक विकास में योगदान देने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर से चंडीगढ़ स्टार्टअप

0: नीति 2025 के तहत उपलब्ध सहायता का प्रभावी उपयोग करने तथा एक जीवंत उद्यमशीलता परिवेश के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। समारोह में 8 स्टार्टअप्स और 4 इंक्यूबेटर को अनुदान प्रदान किए गए। 8 स्टार्टअप्स के लिए 85,80,000 तथा 4 इंक्यूबेटर के लिए 1,17,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इस अवसर पर चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव श्री एच राजेश प्रसाद व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
1: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है। रेलवे प्रशासन ने अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य को तेज करने के लिए कल से लगभग 35 दिनों के लिए एक विशेष ब्लॉक प्लान लागू किया है। अंबाला मंडल रेल प्रबंधक विनोद भाटिया ने बताया कि इस दौरान प्रत्येक प्लेटफॉर्म को यात्रियों के लिए 10 से 12 दिन के लिए बंद किया जाएगा।
2: चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, उसको हम वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना रहे हैं लोगों को बेटर पैसेंजर अमेनिटीज अवेलेबल करवाने के लिए। ऑलरेडी पिछले 1.5-2 साल से काम चल रहा है, उसमें अभी कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए अबाउट 36 दिन का हम लोगों ने ब्लॉक प्लान किया है। वो 3 फेजेज में है, जिसमें की अलग अलग डेज के स्लॉट्स में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को पैसेंजर सर्विसेज के लिए यूज नहीं किया जाएगा।
0: उन्होंने बताया कि इस अवधि में कई रेलगाड़ियों को अस्थायी या आंशिक रूप से रद्द किया जाएगा, वहीं कुछ को दूसरे रूट से चलाया जाएगा।
2: इसमें हम लोगों ने 12 ट्रेन्स को कैंसिल किया है और 6 ट्रेन्स को हम लोगों ने शॉर्ट टर्मिनेट किया अलग अलग नियरेस्ट स्टेशन पे, और कुछ ट्रेन्स को हम लोगों ने मोहाली स्टेशन में स्टॉपेजेस भी फैसिलिटेट करवाए हैं। वो चंडीगढ़ में भी रुकेंगी, लेकिन पैसेंजर्स में मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी टाइमिंग्स और ट्रेन के बारे में डिटेल्स देख के मोहाली स्टेशन को भी यूज कर सकते हैं फॉर बोर्डिंग एंड अनबोर्डिंग।
0: ये ब्लॉक 15 अक्टूबर तक रहेगा। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में लिए गए निर्णयों एवं दिए गए निर्देशों का समयबद्ध और परिणाम उन्मुखी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार हर निर्णय को स्पष्ट, संक्षिप्त और मापनीय रूप में दर्ज किया जाएगा। जहां एक से अधिक विभागों की भूमिका होगी, वहां प्रमुख विभाग तथा संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने वाराणसी से देशभर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। हरियाणा और चंडीगढ़ में राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ पर पोषण शपथ एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ राज्य स्तर पर सहयोग को और मजबूत करने की संभावना जताई। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नवाचार, उद्यमिता और सहयोगी स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने पर बल दिया और रेलवे प्रशासन ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य को तेज करने के लिए कल से लगभग 35 दिनों के लिए विशेष ब्लॉक प्लान लागू किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं

0: बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपने नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब दे व्यापार ते सनत मंत्री अमन अरोड़ा ने दुबई च इन्वेस्ट पंजाब समागम नूं संबोधन कीता। मंत्री ने प्रवासी पंजाबियां समेत यूएई दे कारोबारियां नूं पंजाब विच निवेश करन दा सद्दा दित्ता। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी आनंदिता मित्रा ने 18 साल दी उम्र दे नौजवानां नूं नवें वोटरां वजों रजिस्टर करन लई अपील कीती। कीनिया दे सिख्या मंत्रालय दे कुछ पदरी वफद ने अज पंजाब दे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे मनुखी अधिकार कमिशन दा दौरा कीता। अज तो 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो गया है ते पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ते विश्व दे पहले नंबर दे खिडारन शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज पड़ा 3 च आपो अपने मुकाबलियां विच सोने दे तमगे जीते ने। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब 7 तो 9 सितंबर तक दुबई विच होण वाली सालाना निवेश मीटिंग AIM कांग्रेस विच हिस्सा ले रहा है, जो कि राज विच अंतरराष्ट्रीय निवेश नूं आकर्षित करन दीआं कोशिशां दे हिस्से वजों है। पंजाब दे सनअत ते व्यापार मंत्री अमन अरोड़ा दी अगुवाई विच राज दे वफद ने नीति निर्मातावां निवेशकां ते व्यापारक आगुआं नाल मीटिंगां कीतीआं तां जो राज दे कई खेतरां विच मौकियां नूं दर्शाया जा सके। श्री अमन अरोड़ा ने AIM कांग्रेस विखे इनवेस्ट पंजाब समागम नूं संबोधन कीता। दुबई च साडे पत्रकार नाल गलबात करदिआं मंत्री ने पंजाब दीआं निवेशकां प्रति सुखावीआं नीतियां अते निर्माण हल्का इंजीनियरिंग खेतीबाड़ी अते फूड प्रोसैसिंग लॉजिस्टिक टैक्सटाइल साफ सुथरी ऊर्जा IT सेवावां अते उभर रहीआं तकनालोजीआं वर्गे खेतरां विच मौकिआं ते चानणा पाया।
3: यूएई और पंजाब दे विच बहुत सारियां सिमिलैरिटीज ने, बहुत सारियां समानतावां ने। असीं इक बहुत ही शानदार इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी है, जिहड़ी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी ओह लैके आया, जिहदे तहत प्रायोरिटी सैक्टर्स ने और बिजनेस कम्युनिटी उन्हां सैक्टर्स नूं चलाउंदी है और की इशूज ने पॉलिसीज ने उन्हां दे मुताबिक बणीआं ने, जिहदे विच चाहे फूड प्रोसैसिंग है, लाइट इंजीनियरिंग है, गारमेंट्स ने, इन्हां सारियां चीजां दे विच पंजाब सरकार दी पॉलिसी बड़ी प्रोएक्टिव है। और 2 दिनां तों जो साडी मीटिंग चल रही है ने अथॉरिटीज दे नाल बड़ी प्रोडक्टिव गल हुई है और मैं समझदा कि आने वाले समय दे विच दोनों जगहों दे विच यूएई और पंजाब दे आपस दे विच साडी जो ट्रेड है वो वड्डे पद्धर दे उपर वो एनहांस होएगा।
2: उन्होंने कहा कि राज तरजीही खेतरां लई इंसेंटिव दी पेशकश करता है, नाल ही इन्वेस्ट पंजाब राही सिंगल विंडो क्लीयरेंस समामत प्रवानगियां अते समर्पित निवेशक सहूलत भी प्रदान करता है। मंत्री ने प्रवासी पंजाबियों समेत यूएई दे कारोबारियों नूं पंजाब विच निवेश करन लई सद्दा दित्ता है ते कहा कि मजबूत संबंध व्यापार नौकरियां ते सप्लाई लड़ियां च वाधा कर सकते ने। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी आनंदिता मित्रा ने 1 अक्टूबर 2026 नूं जां इस तों पहलां 18 साल दी उम्र प्राप्त कर चुके जां प्राप्त करन वाले उन्हां नौजवानां नूं अपील कीती है कि ओह नवें वोटरां वजों रजिस्टर करन लई फार्म 6 भरन। श्रीमती मित्रा ने सारे नागरिकां नूं वी खरड़ा वोटर सूची विच अपने वेरव्यां दी पुष्टि करन ते 12 सितंबर 2026 जो कि पंजाब विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध 2026 तहत प्रकाशित खरड़ा वोटर सूची संबंधी दावे ते इतराज दायर करन दी आखरी तरीके तक दावे जां इतराज जमा कराउण दी अपील कीती है। इस दे नाल ही कोई भी व्यक्ति जिसका नां 13 अगस्त 2026 नूं प्रकाशित खरड़ा सूची विच पहला ही दिखाई दे रहा है, वह एंट्रियां विच सुधार, पता बदलण जां होर वेरव्यां नूं अपडेट करन लई फार्म 8 जमा कर सकता है। नवें वोटर जां सुधार लई अर्जियां भारती चोण कमिशन दी वैबसाइट ECINET ऐप जां संबंधित बूथ पद्धर दे अधिकारियां BLOs राहीं आनलाइन जमा करवाईयां जा सकदियां ने। अंतम वोटर सूची 12 अक्टूबर 2026 नूं प्रकाशित कीती जाएगी। कीनिया दे सिख्या तकनीकी ते किता मुखी सिख्या ते सिखलाई पाठक्रम विकास बारे मंत्रालय दे एक उच्च पदरी वफद ने अज पंजाब ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ते मनुखी अधिकार कमिशन PSHRC दा दौरा कीता। इस दौरे दा उद्देश मनुखी अधिकारां नूं सिख्या, नौजवान हुनर, तकनालोजी ते समर्था निर्माण नाल जोड़न विच भारत दे तजर्बे नूं समझना सी। कीनिया दे मंत्रालय दे मुख कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर किसिलो किंटागे दी अगवाई विच वफद ने कमिशन दे चेयरपर्सन जस्टिस संत प्रकाश नाल मुलाकात कीती अते इस गल ते जोर दित्ता कि सिख्या ते हुनर विकास

0: 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਤਿਓ, ਕੁਛ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਮਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
4: ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹੈ ਦੇਵ ਦਰਸ਼ਨ ਧੂਪ, ਅਗਰਬੱਤੀ, ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ, ਕੋਨਸ ਔਰ ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और बलबीर का गाया नया दौर फिल्म का गीत सुना। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की थी साहिर लिथुयानवी ने। अब सुनिए अनु मलिक का संगीतबद्ध किया बाजीगर फिल्म का गीत, बोल रानी मलिक के आवाज़ पंकज उदास की।

ये थे पंकज उदास फिल्म बाजीगर में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल और मन्नर उदास के फिल्म का नाम हीरो।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए आनंद राज आनंद का संगीत बद्ध किया और गाया गीत। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, फिल्म का नाम हद कर दिया आपने।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।

अभी आपने अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को फिल्म सड़क में सुना। गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। जयमाला कार्यक्रम में अब समय है एक अंतराल का।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

और ये है जयमाला कार्यक्रम की अंतिम पेशकश चांदनी फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और बाबला की, संगीत शिवहरी का, बोल आनंद बख्शी के।

खाली सीटां लई मौके ते दाखला प्रक्रिया दी आखरी मिति 19 सितंबर तक वधा दित्ती है। ए सन मुख प्रादेशिक खबरां। आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तों हुण पेश ने कुछ पंजाबी गीत।

0: आ गए इतनी देर?
1: अगर मुझे क्षमा किया जाए तो कुछ अर्ज करूं?
0: आज्ञा है।
1: ऐ सुंदरता की देवी, जब मैं घर से खिसकने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि मैं बंदी बना लिया गया हूं।
0: बंदी?

0: हाँ देवी, चारों ओर से दरवाजे बंद।
1: फिर
0: कान लगाकर सुना, बाहर अदालत लगी है।
1: अदालत?
0: मम्मी जज की कुर्सी पर बैठी है और डैडी मेरे खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोले खड़े।
1: और तुम्हारी ओर से पैर भी करने वाला कोई नहीं
0: था?
1: कौन?
0: वो भी मेरी मम्मी थी। कभी वो जज बन जाती और कभी मेरी वकील।
1: अच्छा, मगर तुम्हारे खिलाफ जुर्म क्या था?
0: जुर्म? तुमसे मिलना, रातों को देर से घर आना, जेब खर्च से ज्यादा खर्च करना, शायरी करना और कोई काम न करना।
1: फिर
0: मुकदमा चलता रहा, मैं सुनता रहा, डैडी बोलते रहे, मम्मी जवाब देती रही।
1: फिर
0: मम्मी ने एकदम जोर से मेज पर हाथ मारा और अपना फैसला घोषित कर दिया।
1: तुम्हें सजा मिली?
0: नहीं, मुझे रिहा कर दिया गया।
1: क्यों?
0: क्योंकि मम्मी ने कहा डैडी का मुकदमा बिल्कुल कमजोर है। मेरा टोनी रीटा से चोरी छुपे नहीं मिलता, मुझसे पूछ कर मिलता है। रातों को देर से आता है तो कोई बात नहीं, ये आजकल का फैशन है। जेब खर्च से ज्यादा खर्च करता है क्योंकि तुम्हारी आमदनी इतनी ज्यादा है कि बेचारा ये खर्च नहीं करेगा तो और कौन करेगा? शायरी करता है तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि वो बड़ा होकर गालिब जैसा शायर बनेगा।
1: फिर
0: मुकदमा खारिज हो गया, मैं रिहा हो गया और मुझे खर्चा भी दिला दिया गया। डैडी बहुत बोले, बहुत नाराज हुए, मगर उन्हें दकियानूसी ख्यालात का आदमी कहकर खामोश करा दिया गया।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ?
0: बोला क्या है, ये देखो मेरी जेब नोटों से भरी हुई है।
1: वेरी गुड। और तुम कैस हार जाते तो?
0: मैं कैद खाने की दीवार फांद कर भी तुमसे मिलने आता। रीता डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता।
1: और क्या क्या कर सकते हो मेरे लिए?
0: तुम कुछ कहो तो सही, कहो तो अभी अपनी जान निकाल कर तुम्हारे चरणों में रख दूं।
1: ना बाबा ना, मैं तुम्हारी हत्या अपने सर के लूं।
0: कहो तो आकाश के तारे तोड़कर तुम्हारी चुनरी में जोड़ दूं।
1: देखो टोनी, पहली बात ये कि मुझे तोड़फोड़ की पॉलिसी बिल्कुल पसंद नहीं, और दूसरे आजकल चुनरी और दुपट्टे का रिवाज नहीं।
0: तो बताओ डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कुछ तो कहो करने के लिए।
1: कुछ करना चाहते हो तो?
0: हाँ हाँ, कहो कहो कहो।
1: तो वो सामने लगा हुआ गुलाब का फूल ला दो।
0: वो फूल?
1: हाँ, और लाकर अपने हाथों मेरे जोड़े में लगा दो।
0: बस इतनी सी बात? कुछ और कठिन काम कहा होता डार्लिंग।
1: अभी तो केवल फूल ही ला दो ना।
0: फूल?
1: हाँ, जाओ ना। हाय, कितना खूबसूरत है गुलाब का फूल।
0: हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है।
1: जाओ ला दो ना।
0: रीता, रीता डार्लिंग, उसकी खूबसूरती उस दरख्त पर ही है।
1: क्यों?
0: उसे वहीं रहने दो और दूर से देखो।
1: क्यों? मुझे वो फूल चाहिए अभी।
0: अभी?
1: हाँ हाँ, अभी।
0: अच्छा बाबा, जाता हूँ। मगर रीता डार्लिंग,
1: डरते हो?
0: किससे?
1: माली से?
0: नहीं तो?
1: तो फिर क्या बात है
0: रीता? हाँ? मैं सोच रहा था कि रात का समय है, कहीं कोई कांटा वाटा ना चुभ जाए या कोई जहरीला कीड़ा पतंगा ना काट ले मुझे।
1: बस इतनी ही मोहब्बत है मुझसे?
0: देखो रीटा, मेरी परीक्षा ना लो, मैं इम्तिहान से बहुत डरता हूँ। कई बार इम्तिहान के नाम से फेल होता रहा हूँ मैं। हाँ, मैं मोहब्बत में फेल नहीं होना चाहता।
1: तुम्हें मुझसे मोहब्बत है?
0: तुम्हें शक है?
1: मुझे तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना होगा।
0: मोहब्बत का इम्तिहान?
1: हाँ।
0: मैं फेल हो जाऊंगा रीटा, मैं फेल हो जाऊंगा।
1: तो क्या तुम मुझे पाना नहीं चाहते?
0: क्यों नहीं?
1: तो तुम्हें मेरे लिए ये मोहब्बत का इम्तिहान देना होगा।
0: मारे गए फिर इम्तिहान। अच्छा रीटा, अच्छा रीटा, पर्चे हल करने में मेरी सहायता तो करोगी ना?
1: हाँ हाँ, कुंजी लेकर प्रश्न भी करवा दूंगी।
0: तो बताओ मुझे ये परीक्षा कहाँ देनी होगी?
1: मेरे डैडी के दफ्तर।
0: बाप रे बाप।
1: क्यों घबरा गए?
0: नहीं है, नहीं तो?
1: तो चलो मेरे साथ।
0: तुम्हारे साथ तो जहन्नुम में भी जा सकता हूँ।
1: जहन्नुम में जाने का प्रोग्राम तो असफल होने पर बनेगा, अभी तो केवल डैडी के ऑफिस ही जाना है।
0: रीटा, मेरा मतलब है फिर किसी दिन नहीं चल सकते?
1: नहीं, आज ही चलना होगा। हो सकता है कल मेरे भाग्य की डोरी किसी और के हाथ में थमा दी जाए।
0: मैं समझा नहीं रीटा।
1: मुझे तुमसे कोई छीन के ले जाए तो?
0: तो?
1: तो? तो तुम क्या करोगी?
0: मैं क्या करूंगा? तुम ही बताओ मैं क्या करूंगा।
1: तुम उसकी हत्या नहीं करोगे?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं ये पाप अपने सर नहीं लूंगा, तुम्हें विधवा नहीं बनाऊंगा, उस व्यक्ति से दोस्ती कर लूंगा।
1: तो ये है तुम्हारी मोहब्बत?
0: तुम्हारी मोहब्बत की सौगंध रीटा, तुम मेरी मोहब्बत का इम्तिहान न लो क्योंकि मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत
1: है। पाक मोहब्बत है, मुझे कोई और ले जाएगा और तुम खड़े देखते रहोगे।
0: और मैं कर भी क्या सकता हूँ?
1: कुछ नहीं कर सकते तो जाके मर जाओ कहीं।
0: ठीक है ठीक है, मैं मर जाऊंगा, पर मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाऊंगा?
1: मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद न थी टोनी।
0: उम्मीद पर दुनिया कायम
1: है रीटा डार्लिंग। और मेरी उम्मीद की दुनिया तुम हो।
0: तो तुम अपनी दुनिया छोड़कर मेरी दुनिया में आ जाओ रीटा।
1: मेरी दुनिया का रास्ता मेरे डैडी के दफ्तर से होकर आता है,
0: और कोई दूसरा रूट नहीं है मेरी दुनिया में आने के लिए।
1: नहीं, चलो मेरे साथ।

0: कोई शॉर्टकट नहीं है रीता?
1: नहीं
0: तो चलना होगा।
1: हाँ चलो।
0: अच्छा चलो।
1: दरवाजा खुला है, जाओ अंदर।
0: जाऊं?
1: हाँ हाँ जाओ।
0: तुम भी आओ ना।
1: तुम चलो तो सही।
0: मैं
1: घबराओ नहीं, मैं साई की तरह तुम्हारे साथ हूँ।
0: अच्छा अच्छा जी सर, मैं अंदर आ सकता हूँ?
2: कौन है?
0: जी मैं हूँ, मैं
2: ये हाँ। मैं क्या लगाई है?
1: ये टोनी है दादी।
2: ये टोनी है दादी, इसकी अपनी जबान नहीं।
1: तुम बोलते क्यों नहीं?
0: जी मैं टोनी हूँ, टोनी।
2: मिस्टर टोनी।
0: यस सर।
2: क्या कहना चाहते हो?
0: जी कुछ नहीं, कुछ भी तो
2: क्यों
0: नहीं।
2: कहो कहो, क्या कहना चाहते हो?
0: डरता हूं सर कि आप मिलिट्री में रह चुके हैं।
2: हाँ मैं कर्नल था।
0: कर्नल साहब, पिस्तौल बंदूक चलाना तो आपको अच्छी तरह आता होगा।
2: क्यों नहीं, मैं अच्छे निशानेबाज हूँ। मेरा निशाना देखोगे?
0: निशाना? जी नहीं, मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यहाँ आपके पास कोई हथियार तो नहीं है।
2: नहीं नहीं, दफ्तर में क्या जरूरत है हथियारों की, घर में सब किस्म के हथियार हैं।
0: फिर ठीक है।
2: क्यों?
0: अपनी तसल्ली कर रहा था, लड़ाई छिड़ जाने पर क्या होगा।
2: घबराओ नहीं, अभी लड़ाई छिड़ने का कोई चांस नहीं।
0: थैंक गॉड, फिर मैं आपसे बात करूंगा।
2: वेरी गुड, शुरू कीजिए।
0: आप कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ, आप अपनी सुनाइए।
0: मैं भी अब ठीक हूँ,
2: आगे चलिए।
0: मैं ये कहना चाहता था कि मैं
2: ये मैं क्या कही, कहिए ना कुछ।
0: बात भी आपके आके ना जबां से निकली, लीजिए आए थे हम सोच के क्या क्या दिल में।
2: बहुत खूब
0: रीटा, वो क्या बात थी? वो
1: लोग बात भी हमारी तुम्हारी शादी की।
0: जी हाँ। सुनिए, मैं आपकी बेटी रीटा से शादी करना चाहता हूँ।
2: ये मैं क्या सुन रहा हूँ रीटा?
1: डैडी
0: आप नाराज तो नहीं हो गए?
2: नहीं, मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी महत्वपूर्ण बात एकदम कैसे बोल गए।
0: जी यहाँ आने से पहले मैंने इस वाक्य की कई बार रिहर्सल की थी।
2: खैर, मालूम हो कि तुम कम से कम बोल तो लेते हो।
0: तो सर मैं क्या समझू?
2: अभी मैं तुम्हें ही समझ नहीं पाया कि तुम रीटा के योग्य हो या नहीं।
1: डैडी।
2: ठहरो बेटी।
0: सर आपने मुझ में क्या कमी पाई है?
2: टोनी, मेरी लाडली बेटी रीटा तुम जैसे सीधे साधे बबलू के साथ कैसे निभा सकती है?
0: निभा तो रीटा ने करना है, मुझे तो विवाह करना है।
2: देखो रीटा, क्या तुम इस जैसे इडियट के साथ शादी करना चाहती हो?
1: हाँ डैडी।
2: मगर ये मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे सका।
1: डैडी, आपने वो प्रश्न नहीं पूछे जो एक पिता को अपने होने वाले दामाद से पूछने चाहिए।
2: अच्छा हाँ हाँ, अच्छा मैं दो चार सवाल करता हूँ। लड़के बताएगा?
0: बताऊंगा।
2: क्या करते हो?
0: शेर कहता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ।
2: वेरी गुड, आजकल मार्केट में शेरों का भाव बहुत तेज है।
0: और मेरे पास कई अच्छे प्लॉट भी हैं।
2: रियली? तो तुम लैंडलॉर्ड भी हो, कुछ जमा भी कर रखा है या नहीं?
0: हजारों क्या लाखों शेरों का खजाना जमा हो चुका है, सोचता हूँ एक दीवान निकालूं।
2: शेरों का खजाना, दीवान?
0: जी सर, मैं शायर हूँ।
2: शायर?
0: पोएट्री कहता हूँ, पोएट्री।
2: पोल्ट्री फार्म भी है तुम्हारा? कितनी मुर्गियां हैं तुम्हारे दरबे में?
0: ओ नहीं, मुर्गियां वुर्गियां नहीं, रुबाइयां हैं मेरे पास श्रीमान, रुबाइयां। मैं शायर हूँ, कवि हूँ, पोएट हूँ।
2: शायर हो? मैं समझा तुम आदमी हो। कहाँ रहते हो?
0: अपने डैडी के घर।
2: मेरी रीटा कहाँ रहेगी?
0: मेरे दिल में।
2: नॉनसेंस, दिल भी कोई रहने की जगह है? किसी क्लब के मेंबर हो?
0: जी नहीं।
2: जुआ खेलते हो?
0: जी नहीं।
2: रिस जाते हो?
0: कभी नहीं।
2: शराब पीते हो?
0: मेरी तौबा।
2: झूठ बोलते हो?
0: कभी नहीं।
2: तुम में कोई भी ऐब नहीं? कमाल है, कोई भी ऐब नहीं तो तुम मेरी बेटी के हरगिज हरगिज योग्य नहीं।
1: डैडी,
2: किसको उठा लाई हो रीटा?
1: डैडी, आपने इनसे वो सवाल नहीं पूछे जो मैंने आपको लिखकर दिए थे।
2: वो तो मैं भूल ही गया था
0: रीटा, यहाँ भी सारे प्रश्न आउट ऑफ कोर्स आ रहे थे।
1: कोई बात नहीं।
2: मिस्टर टोनी।
0: जी।
2: इम्तिहान के लिए तैयार हो?
0: जी इम्तिहान।
1: हाँ हाँ तैयार है, ये लो।
0: ये क्या?
1: प्रश्नों के उत्तर।
2: हाँ तो टोनी।
0: जी।
2: मेरा पहला प्रश्न है, ये तुम्हारे पास कौन सा कागज है?
0: जी इस पर आपके प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं।
2: ये तुम्हें किसने दिया?
0: जी जिसने आपको प्रश्न बनाकर दिए।
2: ओह गॉड, अब क्या करूं, पेपर तो आउट हो गया। खैर ये आंसर पेपर मुझे दे दो और क्वेश्चन पेपर तुम रख लो।
0: तो सर मैं समझूं कि मैं इम्तिहान में पास हो गया हूं?
2: अभी नहीं, अभी मेरे और सवाल का जवाब देना होगा, इसी समय, तुरंत।
0: तुरंत?
2: बोलो तैयार हो?
0: तैयार तो नहीं हूं, मगर क्योंकि इम्तिहान में हमेशा फेल होता आया हूं, इसलिए फेल होने का दुख सह ना सकूंगा।
2: अच्छा फर्ज करो तुम्हारी शादी रीटा से ना हो तो तुम क्या करोगे?
0: मैं क्या करूंगा?
2: हाँ, क्या करोगे?
0: आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
2: ये मेरा प्रश्न है, तुम्हें उत्तर देना है।
0: मैं क्या करूंगा रीटा, तुम ही बतलाओ ना।
1: तुम कहो, मैं आत्महत्या

0: आत्महत्या कर लूंगा।
1: आत्महत्या? ना बाबा ना, आत्महत्या पाप है, ये मुझसे नहीं होगा।
0: संन्यास ले लूंगा।
1: अभी नहीं, अभी मैंने दुनिया का देखा ही क्या है।
0: कहो रीटा की फिराक में पागल हो जाऊंगा, मजनू बन।
1: नहीं नहीं रीटा, नहीं नहीं, लोग मुझे पत्थर मारेंगे, कोई और तरीका नहीं है।
2: हाँ तो क्या कहोगे बरखुर्दा?
1: जी मैं,
2: हाँ, हाँ,
1: जी,
2: कहो, जी, कहो कहो
1: जी, मैं किसी दूसरी लड़की से शादी कर लूंगा।
2: दूसरी लड़के से शादी कर लोगे?
1: जी जी।
3: टोनी तुम मेरे इम्तिहान में पूरे उतरे।
1: जी जी, क्या कहा?
3: तुम पास हो गए टोनी, रीटा तुम्हारी है।
1: रीटा मेरी है?
0: अच्छे डैडी।
1: नहीं नहीं, मैं फेल हो गया डैडी।

हवा महल में आज आप सुन रहे थे प्रहसन मोहब्बत का इम्तिहान। लेखक और निर्देशक थे मदन मोहन खन्ना। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: किसान वीरो आओ कुदरत नाल मिलके खेती करिए। कुदरती खेती अपना के मिट्टी दी सेहत संभालो, पानी दी बचत करो, अते टिकाऊ खेती वाल कदम बढ़ाओ। सिखलाई, तकनीकी मार्गदर्शन अते होर जानकारी ले अपने नेड़ले खेतीबाड़ी विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्रालय दिया सेवावां नाल संपर्क करो। कुदरती खेती अपनाओ, सेहतमंद मिट्टी दे नाल खुशहाल किसान बनाओ। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है फार्म टू सिटी, ते अज दा विषय है फलां दी पौष्टिक बगीची। सो इस विषय के उपर डूंगी चात पाउण दे लई साडे नाल स्टूडियो दे विच जुड़े होए ने डॉक्टर सुरजीत कौर जी, जो कि पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी गुरदासपुर के खेतरी खोज केंद्र तो साडे नाल जुड़े ने। सो डॉक्टर सुखजीत कौर जी, तुहाडे वास्ते अगला सवाल है कि पौष्टिक बगीची विच किहड़े किहड़े फलदार बूटियां नूं लगाउणा चाहिए, उन्हां दीआं किस्मां बारे सानूं जरूर दस्सो।
2: हाँ जी, देखो जी, पौष्टिक बगीचियां 21 तरहां दे जिहड़े इहदे विच फलदार बूटे जिहड़े लगाए जा सकदे आ, ठीक है जी। इहदे विच दो तरहां दे, जिवें पतझड़ फलदार बूटे ते सदाबहारी फलदार बूटे। सदाबहारी फलदार बूटे ओह फलदार बूटे हुंदे आ जिहड़े कि सारा साल हरे भरे रहिंदे रहिंदे आ। उहनां दे विच जिवें अंब हो गया, लीची हो गया, नींबू जाति दे फल हो गए, अमरूद हो गया, जामण हो गई, ठीक है। ये असीं इस मौसम 'च लगा सकते हैं, ठीक है। इस तों इलावा जिहड़े पतझड़

0: अपनी फसल दा समय सर बीमा करवाओ अते जोखम तो वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करो।
1: वधेरे जानकारी ली अपने नेड़ले बैंक कॉमन सर्विस सेंटर खेतीबाड़ी विभाग या खेतीबाड़ी अधिकारी नाल संपर्क करो।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल दी सुरक्षा किसाना दा भरोसा।
1: जनहित विच जारी करता खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
2: एक बार फिर तो स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम फार्म टू सिटी दे विच। और अज दा साडा इस प्रोग्राम दा विषय है फलां दी पौष्टिक बगीची। सो इस संबंधी साडे नाल गलबात करन दे लई माहर मेहमान डॉक्टर सुखजीत कौर जी पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी गुरदासपुर दे खेतरी खोज केंद्र तो साडे नाल स्टूडियो दे विच जुड़े हुए ने। सो डॉक्टर सुखजीत कौर जी, आपां पौष्टिक ते फलदार जिहड़े बूटे ने उहनां नूं किवें लगाया जावे और मिट्टी दी पहचान किवें करनी है, किहड़े किहड़े बूटे लगाउणे ने, उह आपां गल्लां कर लईआं ने। हुण अगला सवाल आंदा है कि जिहड़े फलदार बूटे ने इहनां दे अंदर किहड़ियां किहड़ियां सानूं अंतर फसलां लगाउणियां चाहीदियां ने, क्योंकि पहली वारी फल देण दे विच बूटा जिहड़ा है कुछ साल लगा दिंदा है।
3: हाँ जी, ये बारे थानू मैं दसना चाहवागी। जिमें आप देखते हैं जिहड़े फलदार बूटे है तकरीबन फल देन नू 4 to 5 साल जिहड़ा साल दा समा लै लैंदे आ, ठीक है। तो ये जिहड़ी जदों आप फलदार बूटे दी फल लाने तो उहदे विच जिहड़ी विचकार जिहड़ी जगह वो खाली रह जाती है, ठीक है। तो जिहड़े स्टार्टिंग साल जिहड़े हुंदे आ उहदे विच असीं जिमें कोई फलदार फसलां जिमें हो रहा, जिमें दालां हो गईआं, सब्जियां जिमें हुण सर्दियां दा मौसम आ रहा, शलगम, गाजर, मूली, गोभी वगैरह, धनिया, पालक, मेथी असं ये लगा सकते हैं, ठीक है। एक गल का ध्यान जरूर रखना, ये वेलों वाली सब्जियां नहीं लाइनिया चाहिए, क्योंकि वह होंगे कि वेल जी वह बूटे उपर चढ़ जाती है तो उन्होंने फिर बूटे को खराब कर दी है। तो एक योजी कोई अंतर फसल नहीं लानी चाहिए जेड़ा कि बूटे के खुराकी तत्व भी लै लवे, ठीक है। ज़्यादा वो मतलब ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाली फसल जीडिया लगा दी सिफारिश किया करते हैं जी।
2: जी तो डॉक्टर साहब, जो फलदार बूटे आप लगा ले तो एक बार जो फलों की जी पॉजिटिव बगीची है सानू फल देना शुरू कर दें है तो हर साल इस तो फल किमें प्राप्त किया जा सकता है।
3: हाँ जी, उदाहरण के तौर पर जिमें मैं दसना चाहती हाँ कि ये आप 21 तरह के फल जिमें फालसा, करोंदा, पपीता, केला, अंगूर हो गया, तुहाडे नींबू जाति दे फल हो गए, अंब हो गया, लीची हो गया, लुकाट हो गया, बेर हो गया, आंवला हो गया, ये असी इहदे विच लगा सकते हैं। जिवें हुण सारा साल दा मतलब जिवें मान लो तुसीं ये सारे फल लाए है, हुण जे तुसीं लुकाट लगाई है, लुकाट जिहड़ा पकदा है मार्च के अंत जां अप्रैल के पहले हफ्ते शुरू हो जाती है, ठीक है। उदों सानूं जे घरेलू बगीचे च असीं फल लाया सानूं वो मिल जाता, ठीक है। इस तों बाद मई दे विच तुहाडा आलू बुखारा, ठीक है, ते आड़ू जिहड़ा तुसीं लगाया उहदा फल तुहानूं प्राप्त हो जाता, वह तुहाडा पकदा है उदों, ठीक है। इस तों बाद नाल जून दे विच जे अंगूर लगाए है तो वह पक जाते हैं, तो पपीता लगाया तो उदों वह भी उदों हो जाना, चीकू लगाया वह भी उदों तुहाडे कोल आ जाना जून जुलाई के। ते नाल ही जिदा हुण आपां अंब लाया वह भी जुलाई दे विच पकदा, ठीक है जी। उस तो बाद तुहाडा आ जांदा नाशपती, ठीक है, वह भी जुलाई दे विच तुहाडी अगस्त विच तैयार हुंदी है। इस तो बाद अगला जिहड़ा थोड़ा जिहा 2 महीने का ब्रेक पैंदी है तो फिर किन्नू दसंबर जनवरी च किन्नू आ जांदा। इस तरह यह सारा साल ही फल देण वाले तुहानूं बूटे तुहानूं ये लगा के तुहानूं सारा साल फल जिहड़े मिल सकदे है जी।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ, 8:45 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया,

0: कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे की मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
5: आज मेरी हेज एक्सलेंसी के प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
0: श्री राजनाथ ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास, सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास।

0: लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UK MTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
0: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
6: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और

0: अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहे ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। श्रोतियों हुन पेश है प्रोग्राम आपके लिए। इस प्रोग्राम नु सी आकाशवाणी दे मुंबई केंद्र तो रिले करांगे।

हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर फिल्म अभिमान में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी एसटी बर्मन ने। अब सुनिए प्रेम पर्वत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल लिखे हैं जानिसार अख्तर ने, संगीत जयदेव का।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और चित्र गुप्त का संगीतबद्ध किया वासना फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

चंबल की कसम। अब सुनिए इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया है खयाम ने, और आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: श्रोताओं, आज ही कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और निर्माता अक्षय कुमार पर। भारतीय सिनेमा हर दौर में बदलता आया है और हर दौर की उसकी एक कहानी है। 90 का दशक वो दौर था जब सिनेमा ने रुपहले पर्दे के नए सितारों, उनके एक्टिंग और उनके फन से लोगों को रूबरू कराया। अभिनेता अक्षय कुमार इसी दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। ऊंची कदकाठी, असरदार डायलॉग डिलीवरी,
1: निकर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, पराठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6, तुहाडे सामने लैके आया एक रोमांचक गाना, सुनने वाले नु 101 रुपए इनाम। सुनो।

फिल्मों में आए इस नए एक्टर को लोगों ने शुरुआत से ही खूब प्यार दिया। अपने स्टंट के लिए जाने जाने वाले अक्षय कुमार दिल्ली के रहने वाले थे। यहीं चांदनी चौक में जन्म हुआ उनका और पले बढ़े। इनके पिता का नाम हरिओम भाटिया और माता का नाम अरुणा भाटिया है। पिता पेशे से भारतीय सेना में अधिकारी थे। अक्षय के पिता को कुश्ती में भी रुचि थी और अक्षय कुमार भी खेलों में खूब रुचि रखा करते थे।

कुछ समय बाद अक्षय कुमार के पिता अपने परिवार को लेकर मुंबई के कोलीवाड़ा आ गए। यहाँ माटुंगा के स्कूल से कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए बम्बई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बॉक्सिंग से खासा लगाव होने की वजह से पिता को मनाया, बैंकॉक गए और यहाँ थाई बॉक्सिंग और यहीं मार्शल आर्ट भी सीखी। पैसे कमाना भी जरूरी था, इसलिए बैंकॉक में ही शेफ के काम में लग गए।

भारत लौटने के बाद कोलकाता, ढाका और दिल्ली में भी थोड़े दिन तक अलग अलग काम करने के बाद वापस जब उनका मुंबई आना हुआ तो यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया।

अक्षय कुमार के मार्शल आर्ट के क्लासेस में एक छात्र के पिता ने उन्हें मॉडलिंग के लिए सुझाया और कुमार ने अपना पहला पोर्टफोलियो बनाने के लिए 18 महीने तक फोटोग्राफर जयेश सेठ के सहायक के रूप में काम किया। जरूरत के मुताबिक फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम करते रहे, जो उनका पैशन भी था। सिलसिला आगे बढ़ा और 1987 में फिल्म आज में कराटे प्रशिक्षक के रूप में कुमार ने अपनी पहली स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की और बाद में अक्षय कुमार ये मंच नाम अपनाया। एक ऐसी ही सुबह विज्ञापन शूट के लिए अक्षय कुमार को बेंगलुरु जाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई। फ्लाइट तो मिस हो गई, लेकिन इसी शाम एक फिल्म स्टूडियो में निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती से उनकी मुलाकात हुई। अक्षय कुमार की कदकाठी और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो

कर निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें फिल्म दीदार में बतौर लीड एक्टर साइन कर लिया, जिसमें अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर के साथ अनुपम खेर भी नजर आए।

फिल्म ने अक्षय कुमार के शुरुआती करियर को आगे बढ़ाया। कुमार की एक्टिंग को पसंद किया गया और फिल्म सौगंध में बतौर मुख्य अभिनेता उन्हें चुन लिया गया। इसी वर्ष अक्षय कुमार की फिल्म डांसर भी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास करिश्मा न कर सकी। बाद में अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार के लिए सफल रही और उनकी भूमिका को भी सराहा गया। इस फिल्म में उनकी को स्टार थी आयशा जुल्का।

इसी दरमियान राष्ट्रीय द्वारा निर्देशित फिल्म मिस्टर बॉन्ड, जो जेम्स बॉन्ड पर आधारित थी, रिलीज हुई। 1993 में केशुराम द्वारा निर्देशित फिल्म अशांत में अक्षय कुमार, डी आर विष्णुवर्धन और अश्विनी भावे के साथ नजर आए। फिल्म दिल की बाजी, कायदा कानून और सैनिक व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन फिल्म वक्त हमारा है कुछ हद तक कामयाब भी रही। समीर मलकान की फिल्म में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव रॉय की मोहरा, इन दोनों ही फिल्मों ने 1994 में अच्छा प्रदर्शन किया और सफल रही। फिल्म मोहरा में इंस्पेक्टर अमर सक्सेना के किरदार को एक नई पहचान तो जरूर मिली। रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा ने एक तरह से अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया और अक्षय कुमार का करियर ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा।

यश चोपड़ा की फिल्म ये दिल लगी में अभिनेत्री काजोल के साथ उन्हें अभिनय का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता ने फिल्मी गलियारों में अक्षय कुमार को एक ऐसे अभिनेता के

तौर पर पहचान दिलाई जिस पर फिल्म के चलने का भरोसा किया जा सकता था। फिल्म सुहाग और ऐलान जैसी कम बजट वाली एक्शन फिल्में भी अक्षय कुमार ने इसी दौरान की और इन्हें भी सफलता मिली। इन फिल्मों ने अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में शुमार कर दिया। 1995 में सबसे बड़ा खिलाड़ी और 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में उन्होंने की। दोनों का ही निर्देशन उमेश मेहरा ने किया। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार का स्क्रीन अपीयरेंस बहुत अलग था। पोनीटेल, लंबे कोट और खूंखार अंडरटेकर से कुश्ती कर उन्होंने फिल्म में खूब शोहरत पाई।

1997 में यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल तो पागल है डेविड धवन की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, जो खिलाड़ी श्रृंखला की पांचवी फिल्म थी। इसमें कुमार की जोड़ी जूही चावला के साथ भी पसंद की गई। कमाई के नजरिए से ये फिल्म औसत थी। दोहरी भूमिका वाली फिल्म अफलातून ने एक बार फिर कुमार को सफलता दिलाई। कुछ कमोबेश प्रदर्शन के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में अभिनय किया। प्रीति जिंटा के साथ फिल्म संघर्ष और करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जानवर को बॉक्स ऑफिस पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली।

सन 2000 में रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक फिल्म हेरा फेरी, जो प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म थी, कुमार के साथ साथ सुनील शेट्टी के करियर में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। सन 2000 में आई फिल्म धड़कन, 2003 में अंदाज, जो रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, इसमें लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार ने अभिनय किया। 2004 में एतराज और मुझसे शादी करोगी। इन फिल्मों के अलावा राजकुमार संतोषी की एक्शन ड्रामा फिल्म खाकी में अक्षय कुमार की जोड़ी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्य रॉय के साथ एक तरह से कहें तो सफल रही, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई। अमरीश पुरी, रवीना टंडन और राज बब्बर के साथ क्राइम फिल्म पुलिस फोर्स एन इनसाइड स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर चर्चित रही। सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी अच्छी कमाई वाली फिल्म साबित हुई।

2006 में फिर हेरा फेरी, सिंह स्किंग, 2007 में नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार की अन्य फिल्में भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर सफल रही एक तरह से। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव एक मनोरोग विशेषज्ञ का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता था। उनके साथ फिल्म में थी विद्या बालन। फिल्म में अक्षय कुमार के मजाहिया किरदार को पसंद किया गया। ये कॉमेडी हॉरर फिल्म कल्ट फिल्मों में शुमार है श्रोताओ, जिसे लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म के गीत संगीत को भी खूब पसंद किया गया।

1420 में अक्षय कुमार ने दोहरी भूमिका निभाते हुए खतरनाक स्टंट्स किए जो हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए विमान पर थे। इनके अलावा भी कुछ और स्टंट्स के लिए फिल्म में उन्हें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म अजनबी में कुमार नकारात्मक भूमिका में नजर आए। 2005 में आई फिल्म गर्म मसाला के लिए उन्होंने हास्य भूमिका अदा की और फिल्म फेयर पुरस्कार को अपने नाम किया। वर्ष 2007 की अगर बात करें तो उनकी चार फिल्में लगातार हिट रहीं। 2009 में रोहन सिप्पी के बैनर तले बनी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना दीपिका पादुकोण के साथ आई।

वैसे इस दौरान अक्षय कुमार की फिल्में व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव वाली रहीं। 2012 राउडी राठौर, 2014 में फिल्म हॉलीडे, 2012 में ही आई फिल्म ओ माय गॉड, 2015 में बेबी, 2016 एयरलिफ्ट, 2017 में जॉली एलएलबी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अभिनय की काफी सराहना हुई। 2016 में रिलीज क्राइम थ्रिलर रुस्तम, जिसके निर्देशक थे टीनू सुरेश देसाई, पटकथा विपुल के रावल ने लिखी। अक्षय कुमार ने कमांडर रुस्तम का किरदार अदा किया। इलियाना डिक्रूज ने रुस्तम की पत्नी का किरदार अदा किया। नौसेना अधिकारी रुस्तम पावरी की भूमिका को काफी सराहना मिली और अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार 2017 में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आए।

0: ये फिल्म स्वच्छता और खुले में शौच उन्मूलन पर विशेष ध्यान आकर्षित करती थी। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो अक्षय कुमार की स्वयं निर्मित फिल्म थी। इसके साथ फिल्म पैडमैन भी चर्चाओं में रही। 2019 में केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4, गुड न्यूज और 2021 में एक्शन फिल्म सूर्यवंशी ने मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के साथ व्यवसाय किया। 2021 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ भी थीं। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी काम किया। एटीएस प्रमुख डीसीपी वी सूर्यवंशी यानी अक्षय कुमार मुख्य किरदार की भूमिका में थे। 2023 में ओ माई गॉड 2।
1: जिद पे आए तो कर जाए पर्वत पार तू, जिद पे आए तो कर

अक्षय कुमार की कुछ और फिल्में जैसे भागम भाग, एनिमेटेड फिल्म जंबो, दे दनादन, कमबख्त इश्क, प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म खट्टा मीठा, फराह खान द्वारा निर्देशित फिल्म तीस मार खान, फिल्म पटियाला हाउस, देसी बॉय, सिंग इज ब्लिंग, इन सभी फिल्मों में अक्षय कुमार ने बड़े ही अलग अलग किरदार निभाए। अक्षय कुमार की फिल्मों को देखें तो आज भी उनके द्वारा निभाए गए तमाम किरदार ऐसे हैं जो लोगों के दिलों में जगह पाते हैं। कुमार ने फिल्मी दुनिया में खुद को एक बड़े ही वर्सटाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने पर्दे पर हर तरह के किरदार अदा किए और यही वजह है कि अक्षय कुमार की अदायगी को लोग भूल नहीं पाते।

अपने लंबे करियर में कुमार ने स्टंट अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी की मेजबानी 4 सीजन तक करी। टीवी रियलिटी शो डेयर टू डांस लॉन्च किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। अक्षय कुमार सामाजिक संस्थाओं के लिए भी बढ़ चढ़कर कार्य करते रहते हैं। कुमार को उच्चतम करदाता सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया गया है। इनके अलावा अक्षय अपने फिटनेस का विशेष ध्यान रखते हैं। व्यायाम, किक बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, तैराकी, पार्कौर के संयोजन के साथ खुद को फिट रखते हैं अक्षय। कुमार भारतीय कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स टीम के मालिक भी हैं। फिल्म जगत के सुपरस्टार राजेश खन्ना और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना उनकी पत्नी हैं।

अक्षय कुमार के बेटे का नाम आरव और बेटी का नाम नितारा है। कुमार को दो फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अजनबी और गरम मसाला के लिए दिए गए। रुस्तम और एयरलिफ्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।

अक्षय कुमार विंडसर विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय सिनेमा में मानद डॉक्टरेट की उपाधि और 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम श्रोताओं आज केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार पर। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं आजकल सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। हाँ, मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। ढूंढ रही हूँ उसे। दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तलाशी ली, कहीं न मिला तो आज ही थाने में जाकर रपट लिखा दी है कि प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है। हाँ, प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है एक भी पल।

कहते हैं चखे बिना तो नमक तक की परख पूरी नहीं होती, और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। हाँ, कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां। अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी तो याद नहीं रखना चाहती।

तुमसे ही की थी मोहब्बत, हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूं। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो, मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर दो चाहे। मैं भूल चुकी हूं सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार, चूमते थे मेरी पेशानी को, मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ भूल चुकी हूँ मैं अब सब, भूल चुकी हूँ मैं अब सब।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूं मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूं मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हुँ? ये न तो मांस है, न ही कोई पेय, न नींद, न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, नहीं डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूं मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूं तुम्हें मैं, हाँ फिर क्यों तुम्हें याद रखूं।

जीवन में जो आई थी उमंग, पतझड़ में जो आया था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब, और मैं भूल गई हूँ सब सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थीं। हाँ, ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं अब आजाद हूं। अब मैं अपने वश में हूं। हाँ, अब मैं अपने वश में हूं, किसी और के नहीं।

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तों तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीतां नाल सजिया प्रोग्राम सुरसांझ। ते अज दे इस प्रोग्राम विच ने कुछ पंजाबी फिल्मी गीत। ते हुण एक गीत शायर फिल्म तों सतिंदर सरताज दी आवाज़ विच।

0: ਸਰੋਤਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣੋਗੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: प्रोग्राम सरसांझ दा अगला गीता सुनदे आं मैं, विआह नहीं कराउणा तेरे नाल, फिल्म तो गुरनाम भुल्लर दी आवाज़ विच।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर

0: निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ